ये द्वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

0: अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर, हरिओम शरण, वीना सहस्रबुद्धे और MS सुबोलक्ष्मी के स्वर में भक्ति रचनाएं। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: पापा लाइए 3000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
3: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर सीवी रमन के विचार।
1: प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत के ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी नूतन उपलब्धियों से संसार में भारत का नाम विज्ञान के क्षेत्र में उजागर किया। इस महान मेधावी वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य में त्रिचुरापल्ली के निकट अय्यनपेट्टई गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। रामन की शिक्षा त्रिचुरापल्ली नगर में हुई। बालक रामन आरंभ से ही अत्यंत मेधावी थे। इन्होंने मैट्रिक, एफए और बीए सभी परीक्षाएं अत्यधिक अंक प्राप्त कर सर्वप्रथम उत्तीर्ण की थी। एमए की परीक्षा में भी इन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की। असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद पर काम करते हुए भी रामन जी की रुचि विज्ञान के शोध कार्य में ही थी। इन्होंने अपना पहला विज्ञान शोध पत्र 16 वर्ष की आयु में लिखा था जो लंदन की फिलोसफिकल मैगजीन के नवंबर 1906 के अंक में छपा। 18 वर्ष की अवस्था में ही रामन जी डिप्टी अकाउंटेंट जनरल बन गए थे। 25 वर्ष की अवस्था में इनके जीवन में नया परिवर्तन आया। इन्होंने अकाउंटेंट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया और अपने वैज्ञानिक प्रेम के कारण कलकत्ता यूनिवर्सिटी के आमंत्रण पर भौतिकी विभाग में सर तारकनाथ पालित प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लिया। उस समय तक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन विश्व में एक भौतिकी विज्ञान वेत्ता के रूप में विख्यात हो चुके थे। उनके अनेक शोध कार्य विज्ञान जगत के समक्ष आ चुके थे। डॉक्टर रामन ने 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से लंदन में हो रही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। प्रोफेसर रामन जब जहाज से भूमध्य सागर पार कर रहे थे उस समय उन्होंने भूमध्य सागर का गहरा नीला रंग देखा। लौटते समय उन्होंने उस नीलिमा पर टिप्पणी की थी कि मुझे यूरोप यात्रा में भूमध्य सागर का अद्भुत नीला रंग देखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बात असंगत नहीं लगी कि ये चमत्कार जल कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटता है। इस व्याख्या की परीक्षा के लिए ये उचित ही था कि तरल पदार्थों में प्रकाश का विस्तार करने वाले नियमों की जांच की जाए। इसी उद्देश्य से सितंबर 1921 में कलकत्ता आते ही प्रयोग शुरू किए गए। रामन ने 1928 में इस कार्य को मूर्त रूप दिया। बेंगलोर में 16 मार्च 1928 को साउथ इंडियन एसोसिएशन की सभा में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। रामन की इस प्रकाश संबंधी खोज का महत्व जर्मन वैज्ञानिक प्रिंग राइम ने पहचाना और उन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन की इस घटना को रामन प्रभाव नाम दिया। 1930 में प्रोफेसर रामन को अपनी इस रामन प्रभाव की खोज पर संसार का सर्वोच्च वैज्ञानिक नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। विज्ञान पर यह पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर रामन एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। इस प्रकार प्रोफेसर रामन विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा किया है।
0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सीवी रमन के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: AIR at 90.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं बाग लगाते समय सावधानियां विषय पर डॉक्टर विश्वनाथ से चंद्रजीत यादव की बातचीत।

0: किसान भाई देखा आप सब तरह तरह के भाई खेती करत है, बागवानी करत है। निश्चित तौर पे भाई अगर बागवानी की बात की जाए तो जवन भाई समय चलत बे इस समय में बागवानी में अगर नए नए पेड़ पौधा के आप सब रोपा तो निश्चित तौर पे भाई वो पौधा पकड़े के ज़्यादा गुंजाइश होत है और आप सबके फ़ायदा भी ज़्यादा मिले। तो भाई देखा जवन बाग बाटे ओकर जवन लगावे के बात की जात है, लगाव समय कौन कौन बातन पे विशेष तौर पे ध्यान दे चाहे का सावधानी आप सबके बरते चाहे, देखा यही विषय पे बातचीत करे के लिए आज मेरे साथे बाटे हैं डॉक्टर विश्वनाथ भैया जवन यही कुल के विशेषज्ञ हैं। भैया आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे और हम आपसे जानना चाहब भैया कि हमारे बागवान भाई कौन कौन बातन पे ध्यान दें बाग लगाव समय, का सावधानी बरतें भैया?
1: भाई वर्तमान में बागवानी बृहद व्यवसाय का रूप ले चुकी है। फल वृक्षों से गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करना शुरुआत में बाग की स्थापना पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
0: जी
1: सुविचारित तरीके से स्थापित बाग कम से कम 50 से 60 वर्षों तक उत्पादन देती है।
0: बिल्कुल भैया,
1: अतः बाग की स्थापना एक कौशल एवं विपेपूर्ण कार्य है, खास तौर से तब जब पौधरोपण का कार्य किया जाना हो।
0: जी
1: रोपण के समय की गई गलतियों का निराकरण बाद में संभव नहीं होता, क्योंकि स्थापित वृक्षों को हटाना या काटा जाना उचित नहीं है। बाग स्थापना के समय की गई गलतियों के कारण उपज गुणवत्ता एवं उत्पादन अवधि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है,
0: जी,
1: जिस कारण बागवान भाइयों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है। अतः पौधरोपण के समय बरती जाने वाली सावधानियाँ बताई जा रही हैं, बागवान भाई इस पर ध्यान दें ताकि पौधरोपण में गलती न हो और बाग लंबी अवधि तक उत्पादक बनी रहे।
0: डॉक्टर साहब ये बताओ जैसे अगर गड्ढा की बात की जाए जौने में पौधा के रोपाई करेगी किसान भाई के उनमें का कुछ ध्यान दे चाहे उन्हें?
1: बागवान भाई सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि जो गड्ढा खुद चुका है उसकी भराई हो चुकी है तो वो अच्छी तरीके से भली भांति उसकी मिट्टी बैठ चुकी है या नहीं,
0: जी।
1: क्योंकि बिना मिट्टी बैठे रोपण करने से पौधा मिट्टी सहित गड्ढे में धंस जाता है, जिससे कई समस्या उभर कर आती है।
0: जी जी
1: एक तो पौधा टेढ़ा या तिरछा हो जाता है, जिससे आगे चलकर उस पौधे का सही विकास नहीं होता और उपज प्रभावित होती है।
0: जी जी
1: दूसरी बात यह कि पौधे का ग्रैफ्ट बिंदु जहाँ पर वो कलम की गई होती है,
0: हाँ हाँ हाँ
1: जिसे कटिंग या ब्रेडिंग ग्रैफ्टिंग होती है,
0: जी जी
1: भूमि की सतह पर वो उसे करीब आ जाता है, जिससे रोगाणु के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है तथा पौधा शीघ्र मर जाता है। अतः पौधरोपण का कार्य गड्ढे की मिट्टी पूर्ण रूप से बैठने के बाद ही करें।
0: का मतलब भैया कि अगर भाई कलमी पौधा लगावत बाटे किसान भाई तो जहाँ कलम जुड़ी रहत है वो अगर माटी के नज़दीक आ जाए तो हमें किड़वा लागे की संभावना बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में उनका नुकसान हो सके।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: अब डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहब कि पौध के चयन में का कुछ सावधानी बरती चाहिए?
1: देखिए भाई पौध जब चयन करना है उसे खरीदना है तो पहली बात तो सदैव रजिस्टर्ड नर्सरी से खरीदें।
0: जी
1: जिस किसी भी फल पौधे का रोपण करना हो तो उसके लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे वो किस प्रजाति का पौधा है,
0: हाँ हाँ,
1: और पौधे की क्या उम्र है,
0: जी
1: माध्य वृक्ष की क्या दशा है,
0: जी
1: पौधा पॉलीथीन में लगा है या नर्सरी से खोदा गया है,
0: हुँ.
1: इन सब की जानकारी करना अति आवश्यक है। अतः बागवान भाई जब भी पौधा खरीदने जाएं तो नर्सरी पर एक नर्सरी रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को देखें और नर्सरी रिकॉर्ड देख करके सब पता कर लें कि पौधे की क्या स्थिति है, और प्रत्येक नर्सरी के पास ये रजिस्टर होता है जिसमें सभी बातें दर्ज होती हैं।
0: जी जी
1: और उससे सारी जानकारी हो जाती है।
0: का मतलब भैया कि मान्यता प्राप्त जो कही जाता है कि रजिस्ट्रेशन जो नर्सरी खोए भैया

0: वो नर्सरी से अगर पौध लें तो ज़्यादा संभावना होए कि जौने प्रजाति के पौधा उनसे आपको कह के मिले, जौने गुणवत्ता के मिले, वही गुणवत्ता का पौधा आपके प्राप्त हो जाए।
1: बिल्कुल सही है।
0: डॉक्टर साहब एक बात और बताऊँ, जैसे कि पौध के चयन के लिए किसान भाई अब ओका रोपण करे की बात आवत है, वैसा स्थिति में का कुछ सावधानी बरते चाहिए?
1: भाई किसान जो तैयार गड्ढा है और उसकी मिट्टी बैठ चुकी है, तो गड्ढे के बीचों बीच जो पौधा है, पौधे के पिंडी के आकार का गड्ढा खोदें,
0: जी
1: और पौधे की पिंडी जो पुआल आदि से बंधी होती है या उसमें पॉलीथीन लगी

0: आप तो जोन कही जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन जोने नर्सरी खोए भैया, वो नर्सरी से अगर पौध लें तो ज़्यादा संभावना होए कि जोने प्रजाति के पौधा उनसे आपको कह के मिले, जोने गुणवत्ता के मिले, वही गुणवत्ता का पौधा आपके प्राप्त हो जाए।
1: बिल्कुल सही है।
0: डॉक्टर साहब एक बात और बताऊँ, जैसे कि पौध के चयन के लिए किसान भाई अब ओका रोपण करे की बात आवत है, वैसा स्थिति में का कुछ सावधानी बरते चाहे?
1: भाई किसान जो तैयार गड्ढा है और उसकी मिट्टी बैठ चुकी है, तो गड्ढे के बीचों बीच जो पौधा है, पौधे के पिंडी के आकार का गड्ढा खोदें,
0: जी
1: और पौधे की पिंडी जो पुआल आदि से बंधी होती है या उसमें पॉलीथीन लगी हुई होती है,
0: जी
1: को
0: जी
1: सावधानी पूर्वक खोलें। ध्यान रखें कि पिंडी टूटना नहीं चाहिए। अब
0: अच्छा,
1: पौधे को खुदे हुए गड्ढे में पिंडी सहित इस प्रकार से रखें कि पौधा बिल्कुल सीधा हो। इस कार्य के लिए प्लांटिंग बोर्ड आता है, उसका उपयोग करें तो अच्छी बात है।
0: डॉक्टर साहब कभों कभों सही कहत बाटे, किसान भाई ध्यान ना देते हैं, जवन पुआल वगैरह भैया पिंडी के चारों तरफ लगा हो तो वैसे वो डाल देते हैं, वैसे जौन है पौध को लगा देते हैं,
1: हाँ,
0: तो ये तरीका ठीक ना हो ना?
1: नहीं, उसको हटाना आवश्यक है।
0: जी, और भैया
1: पौधों के चारों ओर मिट्टी डालकर हाथ से थपथपा दें ताकि मिट्टी बैठ जाए और पौधा सीधा खड़ा रहे।
0: जी
1: पौधा टेढ़ा या तिरछा होने पर आगे चलकर उसका सही विकास नहीं हो पाता, जिससे फसल नहीं अच्छी होती और फलत प्रभावित होती है।
0: जी
1: पौधे का रोपण के समय जो ग्रैफ्ट बिंदु है, जहाँ पर ग्रैफ्टिंग की गई है, बडिंग की गई है,
0: जी जी
1: भूमि से कम 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो।
0: अच्छा
1: ऐसा ना करने पर रोग के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। ग्रैफ्ट बिंदु पर फंगस के आक्रमण के कारण सड़न पैदा हो जाती है
0: जी
1: और पौधा शीघ्र ही मर जाता है।
0: तो उसी नुकसान हो गया भैया?
1: हाँ, बिल्कुल
0: जी
1: नुकसान। इसलिए वो 15-20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होना चाहिए।
0: अच्छा
1: रोपण के समय जो ग्रैफ्ट है या बड़ वाला हिस्सा है, सदैव पश्चिमी दिशा में रखना चाहिए,
0: अच्छा अच्छा
1: क्योंकि गर्मियों में पश्चिमी ओर से तेज हवा या लू चलती है, जिसके कारण विपरीत दिशा में लगे पौधे के कलम वाला हिस्सा,
0: जी
1: जहाँ पर जोड़ है, उस स्थान से पौधे के टूट जाने की संभावना होती है।
0: यो भैया ध्यान दें कि ऐसा स्थिति में लगाओ जिह तेज हवा से कोनो नुकसान ना हो
1: न
0: पाए।
1: हो।
0: जी
1: रुपाई के तुरंत बाद पौधे को पानी देना नितांत आवश्यक है। तत्पश्चात बरसात के अनुसार पौधे को पानी देते रहें।
0: हाँ, जैसे जरूरत हो भैया, जब देखें नमी ना बैठे तो ऐसा स्थिति में फिर सिंचाई करत रह जाए। और भैया
1: और जो पॉलीथीन में पौधे लगे हैं, उनका रोपण तुरंत किया जा सकता है,
0: जी
1: और जो पौधे नर्सरी से खोदे गए हैं, उनका रोपण तुरंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुरंत खोदे गए पौधों की जड़ें चोटहिल होती हैं
0: जी
1: और पौधा जल्दी से जड़ नहीं पकड़ता। अतः नर्सरी से खोदे गए पौधों को 3 से 7 दिनों तक छाया में रखते हैं।
0: जी
1: पिंडी को पुआल आदि से ढककर समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं।
0: जी
1: ऐसा करने से दूसरी जड़ें निकल आती हैं, तब रोपण करने से पौधा शीघ्र स्थापित हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहत बाटी, देखे में आवत भाई कि कभों कभों भाई नर्सरी से पौधा तक किसान भाई ले आवत घरे, लेकिन ओकर रोपण करे में कुछ उनका समय लग जाता है कई कारण से, तो ऐसे स्थिति में पौधा उनके घर भी सुरक्षित रहे का कुछ ध्यान दे पड़े उन्हें?
1: तो हमने भी बताया ना कि
0: जी
1: जब वो पौधा नर्सरी से ले आते हैं तो उन्हें वो छाए में रखें, और
0: अच्छा
1: छाए में रख करके उस पर पुआल घास डाल करके पिंडी को ढक दें
0: जी
1: और समय समय पर उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। ऐसा करने से पौधा लंबे समय तक जीवित रहता है,
0: जी
1: और वो आप उसे 10 दिन 15 दिन बाद भी उसकी रोपाई या रोपण कर सकते हैं,
0: जी
1: और यदि वो ऐसा नहीं करते तो पौधा सूखने लगता है।
0: एक चीज़ डॉक्टर साहब और जानना चाहत बाटी, जैसे आंवला के पौधा बा के वो किसान भाई लगावे चाहत बाटे, तो ऐसा स्थिति में नर्सरी से ले आए के बाद ओकर रोपाई करत समय का कुछ ध्यान दे जाए उन्हें?
1: देखिए भाई, इसे आंवला हुआ,
0: जी
1: बेर हुआ, इसके पौधे जैसे नर्सरी में खोदे गए
0: हाँ
1: और आप उसको ले आए,
0: जी
1: तो इन पौधों को निश्चित रूप से 1 सप्ताह तक छाए में रखना चाहिए।
0: अच्छा
1: और जब उनको छाए में रख दिया जाता है तो इस बीच उनकी पत्तियां गिर जाती हैं,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पौधा मर गया या सूख गया,
0: जी,
1: है ना।
0: हाँ
1: सप्ताह भर के भीतर उसमें से दूसरी पत्तियां निकल आती हैं,
0: जी
1: और जब दूसरी पत्तियां निकल आएं तब उस पौधे का रोपण करना चाहिए। हाँ,
0: अच्छा, ये ध्यान दे चाहे भैया कि नर्सरी से पौधा के ले आवें जब घरे तो का 1 सप्ताह तक रखे रहें, और उन्हें भैया उस समय पिंडी में पानी उनी की सिंचाई हल्की करे पड़े?
1: अरे बिल्कुल करना पड़ेगा। पानी नहीं देंगे तो पौधे में जो जड़ें हैं

0: खुराक कहाँ से लेंगी,
1: जी,
0: पानी तो उनको छिड़काव करके देने देना है।
1: तो इस तरह से अगर पौध का रोपण करी, सावधानी बरती ही किसान भाई, तो ज़रूर भैया उनका फ़ायदा होए। आप भैया आए ना और इतना बढ़िया जानकारी दें, सब जानकारी के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे बाग लगाते समय सावधानियां विषय पर डॉक्टर विश्वनाथ से चंद्रजीत यादव की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार की वार्ता, हृदय को स्वस्थ कैसे रखें।
1: हृदय की बीमारियां यूजुअली हमारे पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। यदि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, जैसे लाइफस्टाइल में सबसे पहला चीज़ आता है कि हम एटलीस्ट आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग में ना हो पाए इवनिंग में करें, लेकिन अपने शरीर को आधा घंटा तेज़ी से आप चलिए, जिससे शरीर को बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा जो है हमारे खान पान में सबसे पहली चीज़ है धूम्रपान। धूम्रपान किसी भी ढंग से, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, तंबाकू किसी भी रूप में हो, हुक्का हो, इन सब चीज़ों को ना लें, क्योंकि उससे न सिर्फ दिल की बीमारियां होती हैं बल्कि उसके अलावा लंग कैंसर, लंग की बीमारियां, पेट के अल्सर्स, अदर कैंसर्स, बहुत सारी बीमारियां धूम्रपान की वजह से होती हैं। और धूम्रपान की वजह से ना सिर्फ हार्ट अटैक होता बल्कि उसके से ब्रेन अटैक भी होता, जिसको स्ट्रोक कहते हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होते हैं। और ऐसे मरीज जिनको हार्ट अटैक हुआ हो और धूम्रपान करे तो उनमें हार्ट अटैक होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो धूम्रपान एक ऐसी चीज़ें हैं, यदि हम उसको रोक दें तो बहुत सारी हमारी जो बीमारियां हैं उसको रोका जा सकता है। तीसरा, खान पान में नमक की मात्रा खाने में ज़्यादा ना लें। सलाद में या ऊपर से लोग जैसे चटनी में नमक ज़्यादा लेते हैं तो उसको ना लें, क्योंकि ज़्यादा नमक लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। खाने में घी तेल की चीज़ें कम लिया करें। वैसे तो बोला जाता है कि जो नॉर्मल डाइट में कैलोरी फैट से 30% से कम रहनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर सैचुरेटेड फैट जैसे घी है, नारियल के तेल जो साउथ में यूज किए जाते हैं, इनमें सैचुरेटेड फैट बहुत होते हैं, तो इनका उपयोग जितना कम से कम या ना करें। डालडा है, इनका उपयोग कदापि ना करें। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सरसों की तेल है, इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, तो इसको लें, लेकिन इनकी भी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खाने में जो है हरी सब्जी की मात्रा, सीजनल फल की मात्रा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसको लें। जो भी सीजनल फल, सस्ते फल आते हैं, उनको आप नाश्ते के समय सलाद के रूप में, हरी सब्जियां हैं खाने में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे ना सिर्फ हार्ट की बीमारियां बल्कि आपको स्वस्थ रहने में बहुत ही मदद करती हैं। तीसरा जो है आप अल्कोहल, समाज में अल्कोहल वैसे हार्ट के लिए बोला जाता है कि 1 से 2 पैक लेने से हार्ट को हेल्दी रखा जाता है, लेकिन उसके बहुत सारे अदर साइड इफ़ेक्ट हैं। लीवर ख़राब होने के, फेल्योर होने के सबसे मुख्य कारण अल्कोहल हैं, तो इसलिए अल्कोहल किसी भी फॉर्म में ना लिया करें, क्योंकि इससे शरीर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तीसरी चीज़ें खान पान के अलावा, आप जो है एक्सरसाइज में हमने जैसे बोला कि मॉर्निंग वॉक के बारे में बताया, दूसरा जो योगाज हैं, अदर एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि कमर के दर्द, घुटने के दर्द, कंधे के दर्द, ये सारे बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज नहीं करने से होते हैं। आधा घंटा वॉक तो ज़रूर करें, लेकिन इन अंगों का, गर्दन का, कमर का, इनकी पर्सनल, इन अंगों की एक्सरसाइज करने से ये बैक पेन, पर्टली जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनमें बैक पेन की बहुत समस्या है, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं उनको जो है कंधे की दर्द की प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो ये लोग 5-10 मिनट यदि मॉर्निंग में कंधे की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज कर लें, तो इनसे, इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, ना सिर्फ इन प्रॉब्लम से बल्कि इससे हार्ट को भी स्वस्थ रखा जा सकता है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार की वार्ता, हृदय को स्वस्थ कैसे रखें। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात 9:30 पर आप सुनेंगे विज्ञान भारती। रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे विशेष पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम की 8वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन और दिन में 12:15 पर रामशंकर का ख्याल गान प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर पंकज श्रीवास्तव के स्वर में गीत सुनिएगा। सुबह 10:05 पर फिल्म संगीत। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे हमारे संग्रहालय से शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां से नर्मदेश्वर उपाध्याय की भेंट वार्ता। सुबह 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। 11:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में सुनिएगा ज्योति मिश्रा की कहानी मिट्टी का कर्ज।

दोपहर 2:30 पर अजय कुमार यादव और साथियों के गाए लोकगीत सुनेगा। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे सूरज कुशवाहा। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी शाम 5:35 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में रविभूषण पांडे की वार्ता सुनेगा मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों में यथार्थवाद। रात 8 बजे चित्रपट संगीत और रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

मिडवेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

लोमश ऋषि के शाप से ब्राह्मण शरीर धारी काकभुशुंडी को कौवे का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही ऋषिवर ने उन्हें राम मंत्र भी दिया। श्री राम का ध्यान करने की विधि बताकर उन्होंने श्री रामचरित सुनाया, जिसे स्वयं उन्होंने भगवान शिव से सुना था। अत्यंत प्रेम से इनके सिर पर हाथ रखकर ये वर दिया, उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त होगी और अपनी इच्छा के अनुसार वे जो भी रूप धारण करना चाहेंगे कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वरदान उन्हें ये प्राप्त हुआ कि अपना शरीर त्याग करने की इच्छा करने पर ही मृत्यु उनका वरण करेगी, अन्यथा नहीं। उन्हें कोई भी दोष कोई अवगुण व्याप्त नहीं होगा और अपनी इच्छा मात्र से ही जिस उपलब्धि की कामना करेंगे वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर काकभुशुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं यही कौवे का शरीर धारण कर 27 कल्पों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मुझे कौवे का शरीर इसलिए सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसी शरीर से मैंने श्री राम की अविचल और अखंड भक्ति पाई है।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए लगान फिल्म में उदित नारायण और लता मंगेशकर को, संगीत AR रहमान का, रचना है जावेद अख्तर की।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए सीमा फिल्म का ये भजन मन्ना डे की आवाज़ में। संगीत शंकर जयकिशन का है और रचना है शैलेंद्र की।

अभी आपने सुना सीमा फिल्म का ये भजन मन्ना डे की आवाज़ में। इसी के साथ ही फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेश व्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार। सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर टास्क फोर्स तथा उत्तर प्रदेश ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क UPTEN द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में प्रत्येक जिले तक कैंसर उपचार सुविधाएं विकसित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं व अन्य आपात स्थितियों में गोल्डन आवर के भीतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क स्थापित करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएं। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। समाचार कक्ष से रितेश।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं। उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
2: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो, ये पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मैंगो टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आम की सभी किस्मों की GI टैगिंग कराई जाएगी। महोत्सव में 50 ग्राम के अंगूर दाना आम और 5 किलो तक के वजन वाले गजानन आम आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। टैरिफ में यह छूट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। 3 दिवसीय परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि UPTET परीक्षा के अंतिम दिन आज एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर

0: और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड मिले, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
0: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने कल रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को कल लखनऊ में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1,47,00,000 लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रसार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करने जा रही है। इन चिकित्सालयों में पशु को सघन उपचार के लिए भर्ती भी किया जा सकेगा। बनने वाले प्रत्येक आदर्श पशु चिकित्सालय में 2 पशु चिकित्सा अधिकारी और पर्याप्त संख्या में अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। राज्य के कई जनपदों में कल भारी बारिश से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ जिलों में उमस भरी गर्मी का दौर बना रहा। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी की नवीन परिसर का किया लोकार्पण, कहा जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार, सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे

0: थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन, राग है चारुकेशी।

अभी आप सुन रहे थे संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन, राग था चारुकेशी। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे पंकज कुमार श्रीवास्तव। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और

0: इनों के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी औसत सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय

0: के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में

0: रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ते लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ते ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed.

रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान आज दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का इम्कान है। आईएमडी ने कल दर्ज हरारत ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक और कम से कम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की पेशगोई की है। महकमे ने जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में अगले चंद दिनों में गरज चमक के साथ औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई के साथ इक्का दुक्का मकामात पर अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने का अंदेशा जाहिर किया है। महकमे ने लोगों को नालों, झरनों और चट्टाने खिसकने के खतरे वाले इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया है। उधर केरलम में आज इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के 14 जिलों में से 11 में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फीफा आलमी कप में अमरीका के मियामी गार्डन्स में खेले गए नॉकआउट के एक सनसनीखेज मैच में इजाफी वक्त दिए जाने के बाद अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है, जबकि अमरीका के शहर एलिंगटन में खेले गए एक दूसरे नॉकआउट

0: तूफान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फीफा आलमी कप में अमरीका के मियामी गार्डन्स में खेले गए नॉकआउट के एक सनसनीखेज मैच में इजाफी वक्त दिए जाने के बाद अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है, जबकि अमरीका के शहर एलिंगटन में खेले गए एक दूसरे नॉकआउट मैच में मिस्र ने पेनल्टी शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरी T20 बैन अल-अक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था बारिश के सबब रोक देना पड़ा था। तीसरा मैच 7 जुलाई नॉटिंघम में खेला जाएगा। ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन आखिरी 2 मैचों की मेजबानी करेंगे। ये सीरीज 11 जुलाई को खत्म होगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैन अल-अक्वामी मैच की सीरीज खेली जाएगी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में होने वाली मीटिंग में हुकूमत ने 52,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दी, जिसे मुसल्ला फौज की सलाहियत बढ़ाने और उन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस करने की सम्त में बड़ा कदम माना गया है। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने खसूसी तौर पर शाये किया है। रोजाना प्रताप ने वज़ारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान को जली सुर्खी के साथ शाया किया है, जिसमें वज़ारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को 2 टोक अल्फाज में बता दिया है कि पहले दहशतगर्दी का खात्मा होगा, फिर सिंध तास आबी माहदे पर बात होगी। आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूम के आगाज़ की खबर पर आज के बेशतर अखबारों ने तवज्जो मरकूज़ की है, जिसमें शिरकत के लिए भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। आखिरी रसूम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में अदा की जाएंगी।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीन फील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एलनिनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्क साली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। लेकिन उससे पहले हम आपको जो हमें फेसबुक पर कुछ नाम और सुविचार प्राप्त हुए हैं वो पढ़कर सुना रहे हैं। कटरा चांद खान मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हमें ये नाम प्राप्त हुए हैं। अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य।

प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति, सत्येंद्र चंसौलिया पनौजिया से इन्होंने अपना नाम हमें भेजा है, और दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश और सूरज कुमार ने कहते हैं, हमें आकाशवाणी प्रयागराज के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हर व्यक्ति सुबह उठकर भगवान का स्मरण करके, पूजा पाठ करके अपने दैनिक कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से हमें जीवन में सफलता मिलेगी। नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। लिखती हैं, जीवन से पराजय शब्द पूरी तरह हटा दीजिए, क्योंकि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर पराजय एक सीख है और हर विजय उस सीख का परिणाम। बहुत अच्छा सुविचार नीरा त्रिपाठी जी ने हमें भेजा है। उत्तम सिंह जंगेल का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। कहते हैं, एक पेड़ हजारों जीवों का घर होता है, इसलिए हर पेड़ अनमोल है। बहुत अच्छा सुविचार आपने हमें भेजा है उत्तम सिंह जंगेल ने, और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आते हैं अपने विषय पर। आज का हमारा जो विषय है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। भारतीय संस्कृति समेटे है स्वयं में परिशुद्धता और शिष्टाचार का ज्ञान। वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना का यहाँ होता है सदैव सम्मान। श्रोताओं, हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ का खान पान, रहन सहन, विचार, भाषा और त्यौहार उस समाज का आईना होते हैं या हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। संस्कृति किसी भी देश या समाज की आत्मा होती है। हमारे पूर्वजों द्वारा जोड़े गए भाईचारा नैतिकता का मूल आधार है। हमारी संस्कृति केवल रीति रिवाजों, वेशभूषा या खान पान तक सीमित नहीं है, या हमारी सोचने समझने और हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों को सम्मान दें, मेहमानों का आदर करें, यह सब हमें सिखाती है। विभिन्न धर्मों और त्योहारों आपसी प्रेम, सद्भाव और उल्लास के प्रतीक है यह हमारी संस्कृति। लोक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प हमारी पहचान है। हमारी संस्कृति हमें सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता जैसे गुण भी सिखाती है। हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी गई है। हमारी परंपराएं, भाषा संस्कृत का हिस्सा हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति की पहचान है अनेकता में एकता। हमारी संस्कृति का आधार सदियों पुरानी परंपराएं हैं, जो समय के साथ बदलते हुए अपनी मूल आत्मा को बनाए रखती हैं। त्योहारों में मिलने वाली उत्सुकता, पूजा अर्चना में श्रद्धा और लोकगीतों में जीवन का आनंद हमारी सामूहिक चेतना को दर्शाता है। हिंदी सहित अनेक भाषाएँ और बोलियाँ हमारी अभिव्यक्ति की धरोहर हैं, जो विचारों को रंगीन रूप प्रदान करती हैं। योग, आयुर्वेद और गुरु शिष्य परंपरा जैसी संस्थाएं हमारी ज्ञान परंपरा की पहचान हैं।

0: हमारी संस्कृति हमारी सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि यह हमें इतिहास से जोड़ती है, वर्तमान को दिशा देती है और भविष्य के लिए क्षमता प्रदान करती है। इसे समझना, अपनाना और आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। जब हम अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए जीवन जीते हैं, तब हमारी पहचान और मजबूत होती है और समाज अधिक प्रगतिशील बनता है। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। ये कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रस्तुति थी सुंदरम तिवारी की। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। तो कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए कार्यक्रम को समाप्त करने की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: पापा। लाइए 3000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
4: हैं?
3: है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए। दीवाना फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और रचना है समीर की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अभी आपने सुना दीवाना फिल्म का ये गीत। और लीजिए अब सुनिए फिर तेरी कहानी याद आई। इस फिल्म का ये गीत है जिसे गाया है अलका याग्निक ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, रचना है कातिल शेफई की।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदर विधानसभा के ग्राम पंचायत डीह में 570 करोड़ की लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर सर्वप्रथम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया तथा बाल विकास सेवा एवं पोष्टाहार विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचकर दो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर पोषण पोटली भेंट की गई व दो नवजात शिशुओं का अनुप्राशन कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डेमोचेक प्रमाण पत्र व आवास की चाबी देकर सम्मानित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव आध्यात्मिक साहित्य व क्रांति की धरा है। उन्होंने कहा कि

0: जनपद उन्नाव हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। विकास की हर योजना उन्नाव में लागू है। आज यहां की कनेक्टिविटी हर तरफ से फोर लाइन हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उन्नाव वासी लखनऊ को बाईपास कर सीधे दिल्ली प्रयागराज जा सकते हैं। कानपुर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। उन्नाव व कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिज की भी मांग पूरी की गई है। हम उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर व गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 700 एकड़ और 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए उन्नाव जनपद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। चारों ओर रिंग रोड बनेगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी चल रही है। सरकार 100 वर्ष की कार्य योजना को लेकर कार्य कर रही है।
1: यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहाँ के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा।
0: जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड परिसर में राज्य ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा व जिलाधिकारी घनश्याम मीना की उपस्थिति में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, समाज सेवियों द्वारा सामूहिक योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को मानव जीवन में महत्व के बारे में कहा कि योग स्वास्थ्य संतुलित एवं तनाव मुक्त जीवन का आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया। जिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोरामू में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर उन्होंने निराश्रित 108 बालिकाओं से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन और उनके भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। उन्होंने बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना सरकार और समाज दोनों की ही सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने निराश्रित बालिकाओं की सुरक्षा, देखभाल और सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं के समुचित पालन पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालिकाओं को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारम्भ किया गया। जिला अस्पताल परिसर से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश दिया। जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने हाथों में संचारी रोगों से बचाव संबंधी संदेश लिखी तख्तियां ले रखी थी। उन्होंने नारे लगाकर लोगों को अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। छात्र छात्राओं ने लोगों को जल भराव से होने वाली खतरे के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि घरों के आसपास पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
2: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
3: इस सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ODOP और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन पहल के तहत हापुड़ के पेठे को आधिकारिक तौर पर शामिल किए जाने से हापुड़ के पेठा निर्माताओं और जनता में काफी हर्ष है। हापुड़ के पेठे को आगरा के समान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। वर्तमान में जनपद हापुड़ में 6 इकाइयां स्थापित हैं जो तरह तरह के पेठे बना रही हैं। सरकार की इस पहल के तहत हापुड़ जनपद में लगभग 150 नई पेठा इकाइयां लगाई जाएंगी, जिससे पेठा उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक इकाई पर 10 लाख रुपए तक का अनुदान सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब हापुड़ के पापड़ के बाद हापुड़ के पेठे को भी नई पहचान मिल रही है।
4: ये जो ODOC में हापुड़ के पेठे को जो शामिल किया गया है, इससे न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी पेठे की पहचान बनेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का, जिन्होंने हमारे हापुड़ के पेठे को भी ODOC में लिया।
3: विश्व योग दिवस के अवसर पर हापुड़ जनपद में जगह जगह योग शिविर आयोजन किए गए, जिसमें लोगों ने योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के गुर सीखे। योग क्रियाओं को करके स्वस्थ रहने और योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। हापुड़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पहुंचे, जिन्होंने योग क्रियाओं को करके योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नई पहचान दी है। वहीं हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने अवैध भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है। जिले में हजारों वर्ग मीटर में हो रही अवैध प्लाटिंग पर HPDA ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। HPDA की कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने ऐसे कॉलोनाइजर को चिन्हित भी किया है जो अवैध प्लॉटिंग कर

0: सरकार के राजस्व को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। एचपीडीए क्षेत्र में कई जगह भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और बिना मानचित्र स्वीकृति प्लॉटिंग की जा रही थी, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। साथ ही राजस्व को ऐसे भू माफिया चूना लगा रहे थे, साथ साथ लोगों को भी धोखा दिया जा रहा था, जिसकी सूचना के आधार पर एचपीडीए के अधिकारी और कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर ऐसी अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया जो राजस्व को चूना लगा रही थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी कॉलोनी या जगह पर प्लॉट न खरीदें जिसका मानचित्र स्वीकृत न हो, और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो लोग मानचित्र स्वीकृति का वादा करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने का काम करते हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह भी अपील की है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें ताकि सुरक्षित रह सकें। जनपद हापुड़ में आयुष्मान योजना लोगों के स्वस्थ रखने में वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान योजना से लोगों को स्वस्थ होने का वरदान मिला है। 15 जून से आयुष्मान कार्ड के लाभ के लिए विशेष शिविर आयोजन किया जा रहा है। जनपद में कार्ड धारक इसका लाभ ले रहे हैं। अस्पतालों में आयुष्मान वार्ड बनाए गए हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड का लाभ देकर जन जन को स्वस्थ रखने का काम किया, जिसके लिए जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रही है। हापुड़ जनपद में पल्स पोलियो अभियान के तहत 692 बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जनपद हापुड़ में जिला अधिकारी कविता मीना के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 692 पोलियो बूथ का सफल आयोजन किया गया। अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा ने बताया कि जनपद में कुल 274,600 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 15 जून से जनपद में आयुष्मान केंद्रों, सीएचसी, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत सहायकों के द्वारा ऐसे लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं जो कार्ड बनवाने से छूट गए थे। ऐसे लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जनपद हापुड़ में मुहर्रम के पर्व पर ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस निकाला गया। जनपद हापुड़ में अंजुमन हुसैनी के रजाकारों ने करबला के शहीदों को इस शहादत को याद करते हुए राजे अकीदत पेश की। आगामी मानसून एवं संभावित बाढ़ की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हापुड़ द्वारा ब्रजघाट गंगा गढ़मुक्तेश्वर में व्यापक बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना था, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में आज आपने सुनी उन्नाव और हापुड़ जिलों की खबरें। हम आकाश
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम।
1: सामीन को इरम का आदाब। आज की ये मुलाकात किसी शहर की सैर भर नहीं बल्कि एक ऐसी तहजीब से रूबरू होने का बहाना है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है, लखनऊ। जी हाँ जनाब, लखनऊ भी क्या खूब शहर है। नाम लीजिए तो यूं महसूस होता है जैसे कोई पुराना दर खुल गया हो और यादों की पूरी एक अलमारी खुल गई हो। कहीं चौक की पुरअसरार गलियां, कहीं अकबरी गेट की रौनकें, कहीं कबाब की उठती हुई खुशबू, कहीं चिकनकारी की नर्म तहें, और इन सब के दरमियान एक आवाज़ आज भी फिजाओं में तैरती हुई सुनाई देती है। जनाब पहले आप। कहते हैं कुछ शहर नक्शे में बसते हैं और कुछ लोगों के दिलों में। लखनऊ उन्हीं शहरों में से एक है। यहाँ दीवारें भी गोया गुफ्तगू करती हैं, छज्जे भी अदब से झुकते हैं और दरवाजे भी दस्तक से पहले मुस्कुरा लेते हैं। लखनऊ वालों से अदब पर गुफ्तगू करना, जबान की बात करना, सुखन की बात करना कुछ ऐसा ही है जैसे कस्तूरी मृग के सामने खुशबू का जिक्र करना, क्योंकि यहाँ जबान महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रिश्ते निभाने

का सलीका है। नवाबी दौर से चली आती ये रवायत आज भी फिजा में मौजूद है। वक्त बदला, रफ्तार बदली, लिबास बदले, बाजार बदला, लेकिन लखनऊ की असल शनाख्त, उसकी जबान आज भी वैसे ही है। और इसी दिलचस्प दास्तान के साथ आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जबान खाने वाली और बोलने वाली दोनों ही जिंदा हैं लखनऊ में। आपने देखा होगा आम शहरों में महज लोग बसर करते हैं, लेकिन लखनऊ में जनाब एक अंदाज़े जिंदगी रहता है। ये शहर महज सड़कों पर नहीं चलता, ये शहर बातों में धड़कता है। यहाँ क्या हाल है यूं ही नहीं पूछा जाता, हुजूर मिजाज़े आली कैसे हैं आप? और बस यही एक जुमला इस बात की गवाही देता है कि आपके कदम लखनऊ की सरजमीन पर है। लखनऊ की ये शीरीन जबान, जिसे जमाना लखनवी उर्दू के नाम से जानता है, उसमें सिर्फ उर्दू की नफासत ही नहीं बल्कि अवध की चाशनी भी घुली हुई है। यहाँ महज बात नहीं की जाती बल्कि लिहाज ज्यादा बढ़ता जाता है। हुजूर अगर नागवार ना गुजरे तो एक अर्ज करूं, जनाब नागवार गुजरना तो गैरों का काम है, आप तो अपने हैं। यही तो है लखनऊ का तर्ज बया। यहाँ शिकवा भी मुस्कुराकर अदब के दायरे में रहकर किया जाता है। अगर इजाजत हो तो एक इल्तिजा है, और रंजिश वो भी कुछ इस दिलकश अंदाज में बयां होती है। आपसे उम्मीद कुछ ज्यादा ही वाबस्ता कर ली थी हुजूर, यानी बात वही शिकवा वही, लेकिन लिहाज ऐसा शीरीन कि सामने वाला नाराज होने के बावजूद मुस्कुरा उठे। यहाँ बहस तलवार की मानिंद तीखी नहीं होती बल्कि रेशमी रुमाल की तरह रूह को सहलाती है। इख्तिलाफ भी तहजीब के पैराहन में लिपटा होता है। पुराने लखनऊ में खवातीन की गुफ्तगू को बेगमाती जबान का रुतबा हासिल था। इतनी साफ, इतनी नफीस की जैसे गुफ्तगू नहीं हो रही हो बल्कि इत्र की खुशबू फिजा में घुल रही हो। बेगम साहिबा अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करने की जरूरत करूं, फरमाइए। आपकी बात सराखों पर यानी घर के सहन और ड्योड़ियों में भी अदब की रवायत बरकरार रहती थी। मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठे बुजुर्ग हों या छज्जे से आवाज देती कोई अम्मा, हर पुकार में अपनायत का एक समंदर होता था, बेटा जरा इधर तो आइए, और बस इतना सुनते ही सामने वाले का दिल पसीज जाता था। यहाँ बच्चों को महज बोलना नहीं सिखाया जाता था बल्कि गुफ्तगू का सलीका और बातचीत का करीना घुट्टी में पिलाया जाता था। बरखुरदार, बड़ों की आमद पर अदब से उठकर सलाम कीजिएगा। यानी लखनऊ में तहजीब किताबों के सफ़ों से कम घर के दालान, सहन और बरामदों से ज्यादा सीखी जाती थी। तो जनाब बोलने वाली जबान का ये हसीन सफर यही नहीं रुकता, क्योंकि लखनऊ में बातों की चाशनी सिर्फ दीवान खानों तक महदूद नहीं रहती बल्कि बाजार के कूचों तक चली आती है। अब जरा रुख करते हैं सब्जी मंडी की जानिब, क्योंकि यहाँ खरीदारी नहीं होती, यहाँ तो एक महफिल जमती है। मियाँ भिंडी किस भाव दी? तो सामने से पहले एक अदब भरी मुस्कुराहट मिलेगी और फिर कुछ यूँ जवाब आएगा, जनाब पहले तौल तो लेने दीजिए, दाम आपकी मर्जी और पसंद के मुताबिक तय हो जाएंगे। और अगर आपने कहीं शिकवे के तौर पर कह दिया मियाँ कुछ महंगी मालूम होती है, तो आगे से जवाब हाजिर होगा, अरे हुजूर महंगी कहाँ, आजकल सब्जियां भी इस शहर के मिजाज की मानिंद बेहद नाजुक मिजाज हो गई हैं। बस यही तो है लखनऊ, यहाँ खरीदो फरोख्त भी एक खूबसूरत गुफ्तगू में ढल जाती है। अब जरा रुख कीजिए चखने वाली जबान की जानिब, क्योंकि लखनऊ का जिक्र हो और यहाँ के जायके की बात ना हो तो दास्तान लखनऊ अधूरी रह जाएगी। ये वो तारीखी शहर है जहाँ कबाबों की सुलगती खुशबू भी फिजाओं में अदब घोलती हुई उठती है, जहाँ शिरमाल महज एक मैदे की रोटी नहीं बल्कि मेजबान के खुलूस का खुला इकरार है, जहाँ बिरयानी सिर्फ एक पकवान नहीं अवध की पहचान बन चुकी एक मुकम्मल रिवायत है, जहाँ दावतें पेट भरने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए दी जाती है। हुजूर थोड़ा और लीजिए, आप लाख मना करेंगे? अरे जनाब अभी तो दस्तरखान की रौनकें शुरू हुई है, ये तो महज इब्तिदा है, आप फिर इनकार करेंगे? अरे हुजूर हमारी तवाजो को इतना भी कमजोर ना समझिए, जरा सा और फिर आप बखूबी समझ जाएंगे कि लखनऊ की सरजमी पर मेहमान सिर्फ मेहमान नहीं होता बल्कि खानदान का एक फर्द हो जाता है। जब शाम अवध ढल रही हो और किसी कूचे से सीख कबाब की खुशबू परवास कर रही हो तो यकीन मानिए पेट भरने से पहले यादों को लगती है। यहाँ खाना सिर्फ लज्जत नहीं देता, एक जमाना बयान करता है। हर रेसिपी के पीछे एक किस्सा है, हर दस्तरखान के पीछे एक जज्बा है,
اور ہر

वाले के साथ एक दुआ। यहाँ कई पकवान ऐसे हैं जो सिर्फ बावर्ची खाने में तैयार नहीं हुए, बल्कि सदियों की तहजीब के चूल्हे पर पके हैं। सच तो ये है कि लखनऊ का दस्तरखान जितना वसी होता है, उतना ही कुशादा इस शहर का दिल भी होता है। शाम के ढलते ही चौक के कूचों में तरह तरह के जायकों की खुशबू परवाज करने लगती है। कहीं कबाबों की महक, कहीं निहारी कुलचों की सौंध, तो कहीं शिरमाल की रंगत। हर दुकान जैसे अपने माजी की कोई दास्तान सुना रही हो। हुजूर, पहले चख लीजिए, फिर फैसला कीजिए। यानी यहाँ खाने का फैसला भी जबान करती है और बात करने का सलीका भी। जब लखनऊ के जायकों की बात हो तो मक्खन मलाई का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। सर्दियों की वो धुंधली सुबह, ओस की पाकीजा नमी और मिट्टी की सिकोरी में सजी हुई जाफरानी मक्खन मलाई, गोया किसी ने बादलों का कोई मखमली टुकड़ा जमीन पर उतार दिया हो। एक लुकमा मुंह में जाते ही यूं घुल जाता है जैसे कोई ख्वाब, और उसके साथ घुल जाती है पुराने लखनऊ की मीठी यादें। गुजरे जमाने के घरों के दस्तरखानों पर सिर्फ नेमतें नहीं चुनी जाती थीं, उनके साथ में अदब भी परोसा जाता था। नौनिहालों को तरबियत भी दी जाती थी, बेटा पहले मेहमान की खिदमत में पेश कीजिए। और यही वजह थी कि खाने वाली जबान सिर्फ लज्जत तक महदूद नहीं रही, वो रिश्तों की जबान बन गई, खुलूस की जबान बन गई, अपनापन जताने का जरिया बन गई। यहाँ किसी के घर जाना और बिना जियाफत के लौट आना तकरीबन गुस्साखी में शुमार किया जाता है, क्योंकि लखनऊ में महफिल दस्तरखान महज खाने का नाम नहीं, दिलों को जोड़ने का बहाना भी है। और अगर किसी लखनवी ने आपको एक प्याली चाय के लिए रोक लिया, तो समझ लीजिए वो सिर्फ चाय का इसरार नहीं कर रहा, वो अपने दिल का दरवाजा खोल रहा है। क्योंकि यहाँ चाय में शक्कर कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेजबान के खुलूस में कभी कमी नहीं आ सकती। हुजूर, एक प्याली और हो जाए। और बस यही ये बात वाजे होती है कि लखनऊ में चखने वाली जबान पेट से ज्यादा दिल का रिश्ता कायम रखती है। यहाँ जायका सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरता, बल्कि यादों में बस जाता है। और शायद इसीलिए जो एक बार लखनऊ की लज्जत चख ले, वो उम्र भर भूल नहीं पाता। लेकिन लखनऊ सिर्फ जायके और अदब का शहर नहीं, ये सुखन का शहर भी है, नशस्तों का शहर भी है, और अल्फाज को तहजीब का पैराहन पहनाने वाला शहर भी। तो आइए अब रुख करते हैं लखनऊ की उस सहरंगेज दुनिया की जानिब, जहां अल्फाज सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि महफिलों में तराशे जाते हैं। लखनऊ की जबान का जिक्र हो और शायरी का जज्बा अंगड़ाई न ले, ऐसा भला कैसे मुमकिन है। ये वही सरजमीन है जहां कभी शामें महज ढलती नहीं थीं, बल्कि आरास्ता हुआ करती थीं, जहां चौक की गलियारों से लेकर नवाबों की कोठियों तक गजलों की सदाएं गूंजती थीं। यहाँ लोग सिर्फ शेर नहीं कहते थे जनाब, यहाँ लोग शेर जीते थे, अर्ज किया है। और बस इस एक सदा के गूंजते पूरी महफिल खामोश हो जाती। किसी के हाथ में चाय का प्याला होता, किसी के हाथ में पान की गिलोरी, और सबकी निगाहें शायर के तर्ज बयां पर टिक जाती थी। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था। लखनऊ की यही तो खासियत रही है, यहाँ अल्फाज को भी तहजीब का जामा पहनाया जाता है। यहाँ गुफ्तगू भी एक फन है और खामोशी भी एक हुनर। कहते हैं अगर किसी को टोकना भी मकसूद हो तो लोग यूं इल्तिजा करते हैं, हुजूर एक गुस्ताखी की इजाजत चाहूंगा। यानी शिकवा वही, मगर अंदाज ऐसा कि सामने वाला नाराज होने के बजाय मुस्कुरा दे। यहाँ की महफिलें सिर्फ सुखन और शायरी की नहीं थी, बल्कि वो रिश्तों के आशियाने की भी थी। लोग एक दूसरे को पूरी तवज्जो से सुनते थे, समझते थे और फिर दिल से दाद देते थे। आज सोशल मीडिया के दौर में 2 मिनट की गुफ्तगु 2 सेकंड में खत्म हो जाती है, लेकिन उस सुनहरे दौर में महज एक अदद शेर पर पूरी महफिल घंटों तक दाद देती रहती थी। लखनऊ में अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते थे, बल्कि दिल की गहराइयों में महसूस किए जाते थे। जनाब, अगर लखनऊ की तहजीब को कहीं सबसे करीब से देखना हो तो किसी आलीशान इमारत में नहीं, बल्कि किसी नुक्कड़ की छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ जाए। वहाँ आपको पूरा लखनऊ सिमटा हुआ मिल जाएगा। यहाँ चाय सिर्फ पी नहीं जाती, बल्कि बातों की चाशनी में घोली जाती है। एक कुल्हड़ चाय और घंटों की गुफ्तगू, किसी को सियासत की तश्वीश, किसी को खेल का शौक, किसी को अपने नौनिहालों के मुस्तकबिल की फिक्र, तो किसी को गुजरे हुए दिनों की

की याद, लेकिन एक बात सब में मुश्तरका होती है, बात करने का सलीका और लहजे की नरमी। जनाबे अली, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, किसी का नजरिया जानने का भी कितना दिलकश अंदाज है। और पान, अरे हुजूर, पान तो लखनऊ का दस्तखत है, यहाँ की शनाख्त है। यहाँ पान सिर्फ खाया नहीं जाता बल्कि बेहद एहतराम के साथ पेश किया जाता है। लीजिए हुजूर, अवध की ये मखसूस गिलौरी कबूल फरमाएं, और अगर आपने कहीं इनकार कर भी दिया तो वो दोबारा पेश किया जाएगा, फिर तीसरी बार भी जोर देकर इल्तिजा

0: है। ये शहर वक्त की रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन अपने बाबा व अजदाद की विरासत को हमेशा अपने सीने से लगाकर रखता है। आज नए लखनऊ में आलीशान मॉल्स हैं, कैफे हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, जगमगाती रोशनी है और एक तेज रफ्तार है, लेकिन पुराने लखनऊ का अक्स अब भी इसके कदम ब कदम साथ चलता है। रूमी दरवाजा आज भी अपनी अजमत के साथ सीना ताने खड़ा है। इमामबाड़े आज भी गुजरे दौर की दास्तान सुनाते हैं और चौक की गलियां अब भी मुस्कुराकर राहगीरी का इस्तकबाल करती हैं। ये शहर लिबास बदलता है, मिजाज बदलता है, मगर अपनी रूह कभी नहीं बदलता। तो जनाब, लखनऊ महज एक शहर का नाम नहीं, लखनऊ तो एक एहसास है, एक दिलकश अंदाज है, एक पाकीज़ा रवायत है। फिजा में रची बसी एक सौंधी सी खुशबू है, एक मखमली आवाज है, एक लाजवाब जायका है, और इन सब से बढ़कर लखनऊ एक जीती जागती तहजीब का नाम है। यहाँ बोलने वाली जबान भी जिंदा है और चखने वाली जबान भी। यहाँ लफ्जों में शीरी बयानी है और पकवानों में बेपनाह लज्जत और मोहब्बत। यहाँ शायरी आज भी महफिलों में सांस लेती है और अदब रोजमर्रा की गुफ्तगू में नुमाया होता है। यहाँ पान सिर्फ एक गिलौरी नहीं, मेजबान की मेहमान नवाजी है। यहाँ चाय सिर्फ एक प्याली नहीं, दिलों को जोड़ने का बहाना है। यहाँ चिकनकारी सिर्फ कपड़े पर सुई धागे का हुनर नहीं, हमारी सदियों पुरानी साझी विरासत का अक्स है। और यहाँ पहले आप महज दो लफ्ज नहीं बल्कि जिंदगी बसर करने का एक मुकम्मल फलसफा है। कितना मुख्तसर सा जुमला है, पहले आप, मगर इन्हीं दो लफ्जों के साए में लखनऊ की सदियों पुरानी तहजीब सांस लेती है। दूसरों को तरजीह देना, खुलूस और अदब से पेश आना और रिश्तों को पाकीजगी से निभाना, यही इस शहर का असल हुस्न है। जब तक इस शहर के किसी कूचे में कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को दुआओं से नवाजता रहेगा, जब तक किसी आशियाने के दस्तरखान पर मेहमान की मिन्नत व असरार से तवज्जो होती रहेगी, जब तक किसी अदबी महफिल में कोई शायर अर्ज किया है कहकर आगाज गुफ्तगू करता रहेगा, जब तक किसी छोटी सी दुकान पर खरीदार को हुजूर कहकर पुकारा जाता रहेगा, और जब तक यहाँ के किसी मोड़ पर कोई अजनबी मुस्कुराकर कहता रहेगा जनाब पहले आप, तब तक हमारा लखनऊ जिंदा रहेगा, उसकी तहजीब भी, उसकी शीरीन जबान भी, उसका बेमिसाल जायका भी और उसकी ये नायाब शनाख्त भी। इसी मौके पर अवध की इस नफासत को बयां करता एक दिलनशी शेर याद आता है। इस अदा से उसने मुझे सलाम किया, इस अदा से उसने मुझे सलाम किया, एक ही आन में गुलाम किया। इसी अदब, इसी नफासत, इसी बेपनाह मोहब्बत और इसी मुनफरिद लखनवी अंदाज के साथ इरम को इजाजत दीजिए। आदाब।
1: लखनऊ की बोलने और खाने वाली जुबान, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम में। प्रेजेंटर थी इरम मिर्जा और कार्यक्रम की पेशकश थी आसिफ इकबाल की। श्रोताओं, आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से ही नशर किया जा रहा था।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आप पंकज श्रीवास्तव के स्वर में गीत सुन रहे थे। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज के सुबह की 10 बजे
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेक्षण से संबंधित है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात

0: आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, बीएमएस, ईपोक, आईआईएन और लॉसिकी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियो वेब 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का ये गीत रूप कुमार राठौर की आवाज़ में। संगीत सलीम सुलेमान का, रचना है जयदीप सैनी की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए जमाना दीवाना फिल्म का ये गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और रचना है समीर की।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए आशिकी 2 फिल्म का ये गीत अंकित तिवारी की आवाज़ में। संगीत भी अंकित तिवारी ने दिया है और रचना है संदीप नाथ की।

आशिकी 2 फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम होगा बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। श्रोताओं, आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आकाशवाणी प्रयागराज के संग्रहालय से दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। तो इस कार्यक्रम के पहले अंक में आज आपको सुनवा रहे हैं शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान से हमारे पूर्व उद्घोषक नर्मदेश्वर उपाध्याय की भेंट वार्ता। आइए सुने।
2: खान साहब जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि इस बनारस की उस सरजमी पर मैं आपसे मुलाकात करने का मौका पा रहा हूँ जो आपकी अपनी जन्मभूमि है
3: जी,
2: और जहाँ रह करके आपने अपनी ज़िंदगी और अपने फ़न की इतनी बड़ी साधना की है।
3: बेशक।
2: तो ये सचमुच बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए और हमारे रेडियो स्टेशन के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए कि उनको आपके बारे में, आपके जिस ज़माने को आपने देखा है उसके बारे में, आपका जो माहौल रहा है यहाँ घर का, परिवार का, मोहल्ले का और सारे देश का, सारी दुनिया का, जहाँ से आपको होकर गुजरने का मौका मिला है, थोड़े में बताएं कैसा वक्त था वो जब आपके बचपन के दिन थे
3: जी
2: और बड़े बुजुर्गों

0: उनकी देख रेख में आपकी ज़िंदगी शुरू हुई थी इसी बनारस शहर में, और खाक भी जिस ज़मीन का पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। तो उस बनारस शहर की इस ज़मीन की खाक को आपने अपने माथे लगाया और यहाँ का प्रसाद और उसकी महक और उसकी सारी गमक आपने सारे मुल्क को अपनी शहनाई के ज़रिए दिया, सारी दुनिया में आवाज़ फैली। तो थोड़े में बताएं कि कैसा वो वक्त था जब आपने अपनी इस साधना को, इस फन की साधना को शुरू किया था।
1: हमारा वक्त क्या है थोड़े से मैं बयान करना है आपके सामने। वो ये कि बचपन में हमारा यही मकान है कि इसके अंदर हमारे मामू, बड़े मामू और हमारे मझले मामू, हमारे छोटे मामू अली बख्श खां, ये सब के सब अपने अपने कमरे में अपनी अपनी जगह बैठे, कोई गा रहा है, कोई शहनाई बजा रहा है।
0: ये नाना जी का मकान था?
1: हाँ, हमारे नाना का मकान था ये। और उस वक्त ऐसा नहीं था, बिल्कुल मामूली सा मकान था और छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और हमारे मामू लोग अपने अपने कमरे में बैठे हैं, कभी आपस में बात भी कर रहे हैं बैठे हुए, कभी गाना बजाना कर रहे हैं। हमारा काम ये था कि हम छोटे थे और घर में इधर उधर घूम रहे हैं और उनकी शहनाई सुन रहे हैं, उनका गाना सुन रहे हैं। नतीजे के तौर पर ये होता था कि वो सुनते सुनते कान में जैसे रिकॉर्ड बस गया था। हमको कुछ मालूम नहीं था लेकिन फिर भी हम कुछ टूटा फूटा गाना शुरू कर दिया, हम भी गा रहे हैं। और उसके बाद मामू का साज रखा हुआ है तो कभी घूम के आए तो छिपे चोरी उनका भी साज उठा के फूंक रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं बिगड़ रहे, क्योंकि तो हमारा साज बजा रहे हो, क्या कर रहे हो, ख़राब कर दोगे। तो हम कहा कि नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, हमारे बड़े मामू ने कहा कि नहीं, इसको छोटा सा साज बना के दे दो, अपना खेलता रहेगा।
0: अच्छा, बचपन में किस नाम से बुलाते थे आपको?
1: हमको बचिया करके पुकारते थे, बाबू करके पुकारते थे। हाँ, और उसके बाद हमको हमारी खुशी के लिए हमको कहते थे कि भाई एक काम करो, ये गाना है इसको गाओ, कभी भी कोई राग शुरू किया जरा से कहीं ऐसे गाओ, हम भी अपना अंडरस्टैंड उसमें अपना की जरूरत है। तो बड़े खुश हो गए कि भाई एक पैसा तुमको इनाम देंगे, ये लो। तो मैं एक पैसा लेके बड़ा खुश हो जाता था, इसलिए कि एक पैसे में उस ज़माने में बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी। अधेले की लैया ले लिया तो अधेले का कुछ वो पापड़ वापड़ बिक रहा है, यही खा लिया, एक पैसे में बड़ा मज़ा आता था। तो हमारे दिल में ये रहता था कि अगर हम थोड़ा सा गाएंगे तो मामू खुश होकर हमको एक पैसे के बजाय दो पैसा भी दे देंगे। ये सब चीज़ें चलती रहती थी और नतीजे के तौर पर ये हुआ कि वो सुनते सुनते सुनते 6-7 साल की उम्र में हमारी तबीयत इस मेल की हो गई कि जैसे कोई भी गाना हो तो उसको हम ज़्यादा ख़राब करके नहीं मुँह से निकालते थे, बल्कि कुछ सुर में होता था। तो मामू ने हमारे समझा कि इसकी तबीयत जो है तो ज़्यादातर संगीत में है, तो उन्होंने हमको शुरू भी करा दिया ऐसे ही घर में बैठे बैठे। कभी कभी सरगम कहलवा रहे हैं, कभी किसी राग की अस्थाई अंतरा कहलवा रहे हैं, और उसमें एक 2-3 महीना जाते जाते नतीजा ये हुआ कि हमको याद होने लगा। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि पूरी अस्थाई याद कर लिया, और बड़े मामू से कहा कि देख भैया ज़रा देखना, ये तो अस्थाई याद कर लिया इसने। तो मामू भी सुनते थे बड़े खुश हुए, तो 2 पैसा उन्होंने इनाम दिया और उसके बाद 2 पैसा लेके मैं बड़ा खुश हुआ। ये करते करते कुछ ज़माने के बाद जबकि हम 8-10 साल के आए तो हमारे मामू ने एक बड़ा साज जो बड़े लोग बजाते हैं वैसा बना के दिया, और हमारे ख्याल में साल ही भर जाते जाते उसमें हमारी दम अच्छे किस्म की पड़ने लगी। और नतीजा ये हुआ कि 12 साल की उम्र में जाते जाते हम अच्छे खासे शहनाई बजाने में आ गए, लेकिन अभी हमको जानता नहीं था। तो नतीजा ये हुआ कि 1937 में इलाहाबाद की कॉन्फ्रेंस में हमारे मामू हम यहाँ से जब गए तो हमको भी लेके गए, तो हमको केदारे की गत चढ़ा दिया था, और वो केदारे की गत और एक दो अपनी बनारसी धुने छोटी मोटी कुछ उसे चढ़ा दिया था। वहाँ हम गए जब तो मामू के दरमियान बैठ के, और जैसे उस प्रोग्राम को हमने किया है, और जब लोगों ने सुना कि भाई इतना बड़ा बच्चा, उस वक्त हमारी उम्र ज़्यादा में ज़्यादा 13-14 साल की थी, तो जब लोगों ने सुना तो फैसला किया कि भाई तमगा था एक हमारे मामू को देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तमगे का हकदार ये लड़का है। तो हमारे मामू बड़े पसंद हुए, बहुत खुश हुए कि आपने बड़ा अच्छा इंसाफ किया, और हम ये चाहते भी थे कि अगर इस लायक ये है तो उसको मिलना चाहिए। तो बड़ी तालियां बनी।
0: उसी लड़के ने बाद में चलकर न सिर्फ उस खानदान का बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया।
1: फिर तो ऐसा हुआ कि अब धीरे धीरे करके ये चर्चा होने लगी कि भाई उनका भांजा जो है बड़ा अच्छा है।

0: का भांजा जो बड़ा अच्छा है। कहीं कहीं पर ऐसा हुआ कि राज दरबार के काम आते थे उस जमाने में स्टेट के, तो स्टेट से लिख के आता था कि खान साहब अगर आप नहीं आ सके तो उस बच्चे को भेज दीजिए।
1: ऐसा डुमराओं के महाराज के यहाँ भी तो बहुत बड़ा संबंध था आप लोगों का।
0: डुमराओं महाराज के यहाँ तो हमारे दादा परदादा सब वहीं परवेश पाए, वहीं मुलाजिम थे, बल्कि हमारी पैदाइश जो है असल में डुमराओं की। हाँ, और हम वहीं के पैदा हैं। और महाराज साहब केशव प्रसाद के ज़माने में हम बिहारी जी के मंदिर में अक्सर जाते थे, तो वहाँ पूजा जब होती थी तो वहाँ वो प्रसाद बढ़ता था, तो हम भी खड़े रहते थे वहाँ, सब दुनिया प्रसाद लेती थी, हम भी प्रसाद लेते थे। तो महाराज का आर्डर ये हुआ कि नहीं, एक लड्डू इसको रोज़ दे दिया जाया करे। तो वो लड्डू कितने का होता था? सवा शेर का होता था। बिहारी जी गाए वो एक लड्डू हम लेके आते थे, तो उसमें हम भी खाएं, हमारे भाई भी खाएं, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे दादा सभी खाते थे और रोज़ मिलता था। अरे महाराज अब क्या बताएं, वो सब टाइम हमारे लिए ऐसा था कि यकीन मान लीजिए अब तो ख्वाब में भी नज़र नहीं आता। यानी दो पैसा हमको मिल जाए तो हम ये अपने आप को सोचते थे कि हमारे पास बहुत पैसा हो गया, और उसमें कई चीज़ें लेके खा लेते थे।
1: और उस वक्त दो पैसे की बहुत बड़ी कीमत थी।
0: कीमत भी थी बिल्कुल।
1: तो आगे ये फिर सिलसिला चलता रहा।
0: आगे चलता रहा, फिर नतीजा ये हुआ कि फिर कॉन्फ्रेंसें शुरू हो गई, और फिर हम कलकत्ते गए कॉन्फ्रेंस में 1937 में। उस ज़माने में ये था कि शहनाई की कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा राज दरबार में था। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस में शुरू किया हमारे मामू थे, तो उस वक़्त ऐसा प्रोग्राम हुआ है कि प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद 2-3 घंटे तक तो ये मालूम होता जैसे सबके कान में शहनाई बज रही है, और जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें ज़रा कमी मालूम हो कि शहनाई बोल रही है। ये करते करते नतीजा ये हुआ कि 3-4 साल के बाद तो कलकत्ते में ये हो गया कि हमको लास्ट प्रोग्राम देने लगे कि नहीं पहले शहनाई नहीं बजेगी, और अगर पहले शहनाई बज गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा,
1: शहनाई
0: गुजती रही। तो फिर लास्ट में होने लगा, और आज मालिक की मेहरबानी से कि तमाम यूरोप, तमाम अमरीका, तमाम हिंदुस्तान कोई तरफ बाकी नहीं है, हर जगह जाते हैं, और 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम करना। और वो 1-1.5 घंटे में लोग कहते हैं खासा मालूम था कि 10 ही मिनट तो प्रोग्राम हुआ। हम कहा प्रोग्राम का मतलब तो यही है कि 4 घंटा भी सुनते जाइए, लेकिन आपको ये मालूम हो कि बहुत कम टाइम लगा है।
1: न सिर्फ संगीत की बल्कि पूरे शहनाई की, और बहुत बड़ी इज्जत आपने उसको दी और उसको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसमें मतलब हर आदमी इस बात को माथा झुका के मानता है। एक बात हमें बताएं कि इसके लिए रियाज का सिलसिला आपका कैसा रहा? बचपन से कितना वक्त आप दे पाते थे? और घर गृहस्थी की भी जिम्मेवारी रहती रही होगी, दुख सुख भी चलता रहता रहा होगा ज़िंदगी में, तो घर परिवार और सारी परेशानियां और सुख दुख सब झेलते हुए भी इसको कैसे संजो करके रखा आपने, इसकी लौ कैसे जगाई रखी, ये बताएं।
0: इसका देखिए आपको मैं बतला दूँ, ये एक बहुत ज़माने के परंपरा की चीज़ है, बुज़ुर्गों का कहा हुआ है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, हाँ ये हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है। इसके अंदर बहुत बड़ा समुंदर है, इसको सोचना पड़ेगा। जब हम एक काम को किसी हद तक पहुंचा लेंगे तो हम हर काम को उसी तरीके से लेके जाएंगे, वरना हम थोड़ा सा पढ़ लिया और थोड़ा सा संगीत सीख लिया और थोड़ा सा हमने इंजीनियरिंग सीख लिया तो किसी में भी हम आए नहीं। तो इसीलिए बुज़ुर्गों ने कहा कि एक करे एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। तो हमने
1: हर फन हर बात नहीं बनती है,
0: तो हमने बचपन से सिर्फ संगीत लिया। स्कूल में पढ़ाने बैठे वहाँ जाते थे, और रास्ते में अगर कहीं कोई अच्छे सरोद बजाने वाले मिल गए या कोई उनका प्रोग्राम हो रहा तो स्कूल नहीं गए, हम वहीं खड़े खड़े सुन रहे हैं। स्कूल टाइम ख़त्म हो गया, वहाँ से जब आते थे मामू ने पूछा कि पढ़ाए, हमका जी हाँ पढ़ाए। जब स्कूल से रिपोर्ट जाती थी कि नहीं लड़का नहीं आया तो हमारे मामू बिगड़ते थे। आखिर में हमारे मामू ने हमको ये सोच लिया कि ये पढ़े वढ़े का नहीं, इसको खाली संगीत की लगन है, और संगीत हम अपना करते रह गए।
1: बनारस में तो मोहल्ले के मोहल्ले साज और संगीत से गूंजते
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग हाँ सब लोग आके बैठते थे सुनते थे यार, अच्छे किस्म के लोग थे।
1: कंठे महाराज और रसूल भाई का भी यही
0: हाँ हाँ हाँ क्या कहना है, वो ज़माना तो ऐसा था। वो ज़माना तो ऐसा था कि हमारे कंठे महाराज जी हैं, हमारे ये रामदास जी थे, बड़े रामदास जी, छोटे रामदास जी, और ये अपने विद्याधरी जी, ये सब हमारा बचपन था। लेकिन इन लोगों का ऐसा था कि उस ज़माने में इन लोगों का जो रियाज होता था, कभी कभी जाते थे ये लोग चमकार के बैठालते थे और सुना देते थे कि बच्चा है ज़रा सुन रहा है इसको सुनाओ, और बड़े खुश रहते थे। वो ज़माना हम लोगों का इस किस्म का था कि हम सही मानों में पूछे तो हमको कोई फिक्र नहीं थी घर में क्या पकेगा क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं, खाली संगीत है। और बस रियाज का कायदा ये था कि सुबह उठते थे, और सुबह उठने के बाद मुँह हाथ धोने के बाद

पहले साज लेके बैठते थे और घंटा भर साज बजाने के बाद वो भैरव बजाते थे, सिर्फ एक राग भैरव, दूसरा कोई नहीं। सुबह हर रोज भैरव, और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर नाश्ता पानी होता था। नाश्ता पानी के बाद फिर हम जाते थे गंगा जी, और वहाँ हम नहाते थे। नहाने के बाद तब फिर हम 12:30 बजे अपने बालाजी मंदिर में जाते थे। बालाजी मंदिर में हमारे मामू हमारे नाना मुलाजिम थे, महाराज ग्वालियर के रहते, तो वहाँ पर वो आरती उरती होती थी, वहाँ पर अपना बजता था, तो वो डेली वहाँ जाना पड़ता था। हम वहाँ जाके फिर एक घंटा पर वहाँ रियाज कर रहे हैं। फिर शाम को 7 बजे से हम बैठते थे 11 बजे रात तक। तो ये पहले की तमाम चीज़। हमारे मामू वहाँ 18 बरस तक रियाज किया था बालाजी मंदिर में, 18 साल तक हटे नहीं वहाँ से। और वहाँ बजाने के बाद उन्होंने क्या क्या भावनाएँ देखी हैं वो सब हमें बताया उन्होंने, और हमने उसको ऐसा किया कि उसको लिए हुए थे और उसे ही रियाज करते थे। लेकिन हमारे मामू ने कहा कि अगर कोई बात देखना तो कहना मत। लेकिन बचपन का आलम था, हमने मामू से बता दिया कि मामू ऐसा ऐसा हुआ, एक साधु बाबा आ गए हमारे सामने बजाते बजाते, और उन्होंने कहा कि बजा बेटा, तुम्हें तो डर गया 11 बजे रात को। आखिर नतीजा ये हुआ कि वो हंसते हुए चले गए।

0: तो वहाँ पर वो आरती होती होती थी, वहाँ पर अपना बजता था, तो वो डेली वहाँ जाना पड़ता था। हम वहाँ जाके फिर 1 घंटा पर वहाँ रियाज कर रहे हैं, फिर शाम को 7 बजे से हम बैठते थे 11 बजे रात तक। तो ये पहले की तमाम चीज़। हमारे मामू वहाँ 18 बरस तक रियाज किया था बालाजी मंदिर में, 18 साल तक हटे नहीं वहाँ से। और वहाँ बजाने के बाद उन्होंने क्या क्या भावनाएँ देखी हैं वो सब हमें बताया उन्होंने, और हमने उसको ऐसा किया कि उसको लिए हुए थे और उसे ही रियाज करते थे। लेकिन हमारे मामू ने कहा कि अगर कोई बात देखना तो कहना मत। लेकिन बचपन का आलम था, हमने मामू से बता दिया कि मामू ऐसा ऐसा हुआ, एक साधु बाबा आ गए हमारे सामने बजाते बजाते, और उन्होंने कहा कि बजा बेटा। तो मैं तो डर गया 11 बजे रात को। आखिर नतीजा ये हुआ कि वो हंसते हुए चले गए, बेटा ज़रा मज़ा करेगा। अब जो मैं दौड़ के जाता हूँ कि बाबा हैं कि कौन है फ़कीर, इनसे दुआ लेना, तो गायब हो गई। तो हमारे मामू को जो बतलाया तो दूसरे दिन उन्होंने हमको बहुत डांटा, अब देखना तो मत कहना, कतई मत कहना किसी से भी। तो उसके बाद महाराज, मैं क्या हाथ बताऊँ कि 2 वाक़ा और है, लेकिन हमने बताया नहीं, आज तक कहीं किसी से नहीं बताया। वो उन लोगों के आशीर्वाद हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे बनारस का जो ढंग है रियाज करने का वो एक दूसरे ढंग का है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि रियाज करते वक्त ज़रा कुछ नशा लेते हैं और ज़रा ये करते हैं, होता है जिसका भी जैसा। लेकिन हमारे यहाँ का कायदा ये है, हमारे और भी बुजुर्ग बनारस के बहुत से लोग, ये लोग नशा वशा नहीं करते। अगर बहुत कुछ नशा किया तो थोड़ा सा भांग बूटी ज़रा सा ले लिया हल्का सा, और उसको करने के बाद ये बैठते थे रियाज करने, और किसी नशे में नहीं। तो वो हम लोग हमेशा करते आए। आज मालिक की मेहरबानी से कि वो 7 बजे शाम का रियाज और 11 बजे रात तक का रोज़ का रियाज और बरसा बरस हमने किया, जिसका नतीजा ये है कि आज देखिए कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती, और मालिक की मेहरबानी से तमाम दुनिया घूमते हैं। हाँ, एक एहसान ज़रूर है कि अगर रेडियो में हम लोग प्रोग्राम न किया होता तो दुनिया न जानती, ये इतना ज़रूर है कि रेडियो के ज़रिए से ये ज़रूर हो गया कि जो नहीं जानते थे, हिंदुस्तान के लोग बहुत से नहीं जानते थे कि शहनाई क्या है। वो तो जब हमने पहले यहाँ लखनऊ में 1938 में प्रोग्राम किया है, यानी 16 और 18 अप्रैल 1938 यहाँ से शुरू किया हमने, तो उस वक्त जो बम्बई के लोगों ने सुना तो वो अशश करने लगे कि भाई ये शहनाई में क्या है, इसमें तो गायकी भी मालूम हो रही है, इसमें तो तंत्र भी मालूम हो रहा है, इसमें तो हर चीज़ मालूम हो रही है।
1: और आज तो हुजूर उत्तर भारत के सभी रेडियो स्टेशन का आगाज ही आपकी आवाज़ से होता है।
0: ये तो एक बड़ी खुशकिस्मती हम अपने को कहेंगे, लेकिन एक और भी साथ साथ ये है कि आज से नहीं, ज़माने कदीम से ही ऐसा है कि जब कोई खुशी का काम हुआ है तो बनारस के अंदर क्या हिंदुस्तान भर में शहनाई पहले बजी है, कोई दूसरा साज नहीं आया है। ये इसको एक फजीलत, बड़ी बहुत बड़ी फजीलत है कि और किसी साज कोई ऐसा नहीं है, बल्कि शहनाई कोई भी खुशी, गरीब से गरीब आदमी है उसके यहाँ छोटी सी शादी है तो भी मामूली से शहनाई बुला लिया उसने, अपने दरवाजे पर शहनाई भजवा दिया उसने।
1: गंगा की पूजा है। अच्छा, ये शंकर जी का शहर रहा है
0: जी,
1: विश्वनाथ जी का।
0: हाँ हाँ।
1: और भैरवनाथ यहाँ के दरोगा हैं, गंगा मैया की कृपा है पूरे शहर पर। तो इस पर भी कुछ मन में आपके लौ पैदा होती है कि इनका भी प्रसाद आपके साथ रहा होगा?
0: अरे बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है, इसको तो दिल गवारा करता है, ईमान जो है उस पर ये है। इसलिए कि ये सब अब के ज़माने में तो हम नहीं कह सकते भाई, लोगों का ख्याल दूसरे किस्म का हो रहा है, लेकिन पहले के लोग ये जानते थे कि हमारे देवताओं के पास बैठने से, वहाँ पूजा करने से, वहाँ कोई रियाज करने से ज़रूर कुछ मिलता है। और हमारे घराने के लोग जितने भी थे वो हमेशा यही करते थे। अभी हमने आपको बताया था, इसके पहले मंगला गौरी मंदिर में हमारे मामू का रियाज होता था, और बिहारी जी के मंदिर में हमने खुद रियाज किया है डुमराओं में। तो ये सब परंपरा से चली आ रही है ये चीज़ें, और करते चले आए। आज भी इस वक्त हालत है हम लोगों की, जब कभी से बाहर से घूम के आते हैं, जैसे फर्ज कीजिए अमरीका निकल गए, फ्रांस है, जर्मनी है, और वहाँ से आए, तो कभी कभी दिल चाहता है कि मंदिर पर जाके किसी को सुना के नहीं, अकेले,
1: हाँ
0: अकेले 10 मिनट जाके वहाँ हाजिरी दिया और हाजिरी देकर चले, और बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी तबीयत खुश हो गई, यहाँ आज हमने कुछ काम किया।
1: और कभी किसी ऐसी यात्रा पर जाने लगे तो उनका आशीर्वाद भी लेते गए?
0: बिल्कुल, वो तो होता है जाने से पहले, यानी यहाँ से जा रहे हैं उस वक्त, जाते वक्त सुमिरना पड़ता है और कुछ नहीं, वहाँ कुछ चढ़ाना नहीं पड़ता कि कुछ 2 रुपया पैसा, ऐसा कुछ नहीं, वो तो दिल की बात है। अब गए वहाँ, हाथ जोड़ के अपने आँख बंद किया और धीरे से कह दिया कि बाबा हम यहाँ से जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, बड़ी दूर जा रहे हैं, बस वहाँ से हम आए हंसी खुशी के साथ और
1: इज्जत रखे। तो उनका आशीर्वाद भी साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और खान साहब, मेरा ख्याल है कि

0: अलाउद्दीन खान साहब भी कहा करते थे
1: हाँ
0: कि संगीत ही ये जो हमारा फन है, यही हमारा मजहब है, हमारी इबादत है, यही हमारी पूजा है, सब कुछ वही मानते थे। तो संगीत जो है आपका, वो भी एक इबादत तो है ही है।
1: ऐसी वैसी इबादत नहीं है, अब हमसे सुनिए। जहाँ तक मैंने सोचा है, दुनिया का हर मजहब अपने अपने ढंग पर है, वो सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा संगीत का मजहब एक मजहब है, और उसका सबूत ये है। आज हम कहते हैं कि साहब हम मुसलमान हैं, यो फलां हैं, वो फलां हैं, लेकिन हम कहते हैं कि साहब सात सुर है, खरज रिखब गंधार मध्यम पंचम देवत निखात। तो दुनिया का कोई आदमी तो कहे कि आठ भी है या नौ है, या कोई कहे कि छः है, सभी सात मानेंगे। हम कहते हैं पाँच ही कोमल उसमें हैं, तो दुनिया के लोग यही कहेंगे। तो कितना अच्छा संगीत ये है कि अगर तेताला शुरू हो गया तो सोलह मात्रे का, तो दुनिया सोलह मात्रे मान रही है। सात सुर मानते हैं तो तमाम दुनिया वाले सात सुर मान रहे हैं, बारह सुर मानते हैं तो तमाम दुनिया वाले बारह सुर मान रहे हैं। कितना अच्छा मजहब ये है, ये हमारा एक मजहब है।
0: इंद्रधनुष के सात रंगों की तरह सात सुर जो है सारी दुनिया बांधे हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: एक सूत्र बांधे हुए हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत,
1: कहीं भी हो, ये हमारे खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं, मैं पूरे दुनिया को चैलेंज, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी में है सब। अब रहा ये कि अपनी अपनी स्टाइल है, जैसे हमारी बोली है, अब हम हमारे बनारस के बोले कहा भैया कहाँ से आवत हुआ, कहाँ जात हुआ, यहाँ एक जगह ऐसे बोलते कहिए जनाब कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं, कहाँ जाएंगे। तो इसी तरीके से दुनिया की बोली अलग अलग है, लेकिन ये कहिए कि जो हमारे सुर हैं वो अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है, सुर तो एक ही है।
0: और सुर में आदमी को रहना चाहिए,
1: रहना चाहिए। वो बकौल शख्स से किसी ने खूब कहा है, बड़ा मज़ा लेता हूँ कि भाई अगर तुम हमको 1000 गाली दो तो सुनने के लिए तैयार, लेकिन सुर में क्या अच्छी बात कही है, सुर में दो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन बेसुरी बात भी कहोगे तो नहीं सुनते, कुछ ऐसा है,
0: कोई नहीं सुनेगा।
1: हाँ।
0: तो आप कैसा महसूस करते हो कि आपने जो वक्त देखा
1: जी,
0: वो बहुत शानदार वक्त था,
1: बड़ा अच्छा वक्त था महाराज, मैं आपसे क्या बताऊं कि वो ऐसी चीज़ थी कि फिक्र नहीं रहती थी, महंगाई ज़रूर, वो पैसे नहीं थे इतने, लेकिन किसी जगह भी ऐसा नहीं था, खाने पीने का बड़ा ऐश व आराम, और असली चीज़ खाते थे, बढ़िया बढ़िया घी खा रहे हैं, असली दूध खा रहे हैं, बालाई खा रहे हैं, और कोई मेहमान आ गया तो बड़ी खुशी हो जाती थी कि अगर आ गए हैं भाई तो चलो बैठ जाएँ, ज़रा कुछ खाना वाना पकवा के खिला दें। और रियाज़ करने का तो इतना अच्छा टाइम मिलता था, कोई फिक्र ही नहीं थी, कहीं जाना ही नहीं था, घर में बैठे हैं। और जब कभी राज दरबार में कोई काम वाम पड़ता था तो हमारे मामू जाते थे, ये दरबार गए, वहाँ गए, वहाँ गए, और जो यहाँ अपना बैठे हैं, महाराज के यहाँ से तनख्वाह मिल रही है, वो हो रहा है। और अब हालत ये हो गई है कि बात तो सब वही है, लेकिन अब ज़रा भाग दौड़ करनी पड़ती है प्रोग्रामों के लिए, जल्दी जल्दी भाई प्रोग्राम करो, बाल बच्चों का साथ है, और सिखाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब उस वक्त हमारे मामू लोग आज़ाद थे, बैठे थे, हमको दौड़ के बाहर जाना पड़ता, हम गए 2 महीने का टूर किया, 2.5 महीने का टूर किया, 15 दिन का गए, तो बीच में हो जाता है गैप।
0: नहीं तो आप ये सोचते नहीं हैं कि मामू की दी हुई चीज़ और बिस्मिल्लाह खान साहब ने जिसको इतने तक सजो कर रखा है
1: जी,
0: उससे आगे के लोग कैसे रखेंगे, उसकी भी कुछ फिक्र कर रहे हैं।
1: उसकी फिक्र हमारे पास रास्ते बता देने के है, पर हम खुद कैसे कर पाएंगे, हम बता देते कि भाई रियाज करना है, इस ढंग से रियाज करो, इसमें जैसे रोज़मर्रा का खाना पीना है कि खाना छूट नहीं सकता, खाना खाना ही पड़ेगा, वैसे इसको भी ले लो कि हमको रोज़ रियाज करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। और रियाज करने के भी कुछ थोड़े तरीके होते हैं, एक तो ये है खाली राग में याद हो जाए जल्दी जल्दी, और तो राग आप याद कर लीजिए, ताल याद कर लीजिए, उस सुर में तासीर कैसे पैदा हो गई ये ज़रा मुश्किल की बात है। वो फिर वही बात आती है कि एक राग को ले कर आज उसका रिकॉर्ड कर लीजिए, बजा लीजिए, और उसके बाद 8 दिन के बाद फिर उसी राग को लेकर चलिए, यानी 8 दिन बराबर चला वो, अब मुकाबला कीजिए, फिर महीने भर के बाद मुकाबला कीजिए, फिर साल भर के बाद, तो यकीन मान लीजिए कि फिर वही चीज़ आई, एक साधे सब सजे, सब साधे सब जाए, उसने एक ही राग को साल भर ऐसा किया है कि अब उसके जैसा वो राग करने वाला ज़रा कम नज़र आएगा। ये सब रियाज के कायदे हैं हमारे यहाँ,
0: वही तो बात है कि वो केदार, वो
1: जी हाँ
0: जयवंती, वो मालकोंस जो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपके सांस पर चढ़कर आता है, वो
1: हमारे बुजुर्गों का कौल था कि अगर उन रागों का एक सुर भी तुम लेके चले हो तो उस सुर पर खाली टिक जाना ये साबित कर दे कि हाँ धर्म का सुर बोल रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है, और तुम सुनने वाली ये सोचे कि भाई यही चीज़ बार बार आती रहे तो ज़रा और मज़ा आता रहे, ये वो रियाज का कायदा है। उसमें ये बात पैदा होती कि एक ही सुर ले लिया है, एक सुर से दूसरे सुर बढ़े तो वहाँ चैन मिलता जा रहा है।
0: अच्छा एक बात और बताइए
1: जी,
0: कि आप

0: क्लासिकी शास्त्रीय संगीत की चीज़ें तो बजाते ही हैं
1: जी जी।
0: आप जब अपनी लोक धुने जब आप शहनाई को उतारते हैं
1: जी,
0: तब कैसा आपको लगता है?
1: उस वक्त देखिए बात यह है कि ये छोटी चीज़ें जिसको हमारे यहाँ बनारसी धुन कहते हैं, कजरी की धुन कहते हैं, चैती कहते हैं, होली कहते हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि नाम तो है लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जो एक सुकून पैदा होता है और इसके करने में कोई राग का कैद नहीं है कि इसमें फला राग होने ही चाहिए। इसमें तो मिश्र मेल के जितने भी राग चाहें, एक नहीं चार आठ दस राग मिला दें, लेकिन खूबसूरत ढंग से आना चाहिए। वो कायदा हमारे बनारस का अभी तक तो बाकी है।
0: तो अपनी खूबी और अपना कर्तव्य जो है उसमें दिखाने का भी मौका उसमें
1: बिल्कुल बिल्कुल हमारे बनारस में देखिए ना, अभी जैसे गिरजा देवी वगैरह हैं, ये लोग अपना जो गाती हैं पुराने ढंग का, हमारे बनारस का ढंग का, तो अभी भी देखिए वो है तो छोटी चीज़ चैती, लेकिन जब कहा आप सुनेंगे तो कैसा सज सजा के उसको गाएंगी कि आपको एक आनंद मिलता जाएगा कि भाई ये भी कोई चीज़ है। हमारे बनारस का ये खास कायदा है, वैसे तो हर जगह होता रहता है।
0: अच्छा, मंदिरों में भी पहले लोग गाना बजाना किया करते थे?
1: मंदिरों में तो अपने आप जाके करते थे, यानी वहाँ ये नहीं कि अपने आप जाते थे, खाली इसलिए कि हम जाएंगे वहाँ और बाबा से, महाराज से, देवता से आशीर्वाद लेंगे और हम अपना जो कुछ भी वहाँ पेश करेंगे, 10 ही मिनट प्रोग्राम करेंगे, लेकिन हमको वहाँ से कुछ मिलेगा। तो वो मिलने मिलाने का भी सवाल ऐसा था कि ज़रूर मिलता था, लेकिन जैसे देवता लोग आँखी से दिखाई नहीं देते वैसे वो दे भी देते थे और पता नहीं चलता था कि क्या मिल गया इसको, ऐसा होता था, हर मंदिर पर प्रोग्राम होता था।
0: अच्छा, बाहर भी आपको मुल्क से बाहर भी जाने का मौका मिला?
1: जी हाँ।
0: और हिंदुस्तान के भी कोने कोने में आप बराबर बड़े बड़े शहरों में जाते रहे, कस्बों में जाते रहे, बड़े बड़े परिवारों के साथ भी उठने बैठने और बजाने गाने बजाने का, बड़े बड़े संगीतज्ञों के साथ भी मौका मिला। तो कैसा अनुभव किया आपने कुल मिला करके, आज का जो वक्त है और आने वाला जो वक्त है वो कैसा आपको नज़र आता है, ख़ासतौर से संगीत की दुनिया?
1: देखिए, संगीत की दुनिया में वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो उस ज़माने के लोग थे, हमारे बचपन के बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, उन लोगों के संगीत में जो बातें पैदा होती थी उसमें ऐसा मालूम होता था कि जैसे फैयाज़ खान साहब गाते थे, अब ऐसा जम जमा के गाते थे, हमारे ओंकारनाथ जी पंडित जी मरहूम अब्दुल करीम खान साहब गाते थे, अल्लाह दिया खान साहब गाते थे, ये सब जितने भी ऐसे लोग थे उसमें हमने अक्सर ये देखा कि इन लोगों के गाने में घबराहट नहीं थी, यानी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी तैयार हो जाए नहीं, बड़े इत्मीनान से चलते थे और उसका बड़ा लुत्फ लेते थे हम लोग। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि एक एक राग को लोगों तीन तीन चार चार घंटे तक वही गा रहे हैं और मालूम हो रहा है कि अभी अभी शुरू हुआ है, बिल्कुल समा बना जा समा बन जाता था,
0: मंत्रमुग्ध लोग सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे बड़ा मज़ा आता था महाराज। वो कहाँ है, बहरहाल अब भी जो हैं मालिक उनको अच्छा रखे, मैं सबके लिए ये दुआ देता हूँ कि अब भी जितने हैं सब अच्छे हैं, लेकिन है क्या, उस ज़माने में हम लोगों को फिक्र नहीं थी इतनी कि हम अपने बाल बच्चों को कैसे पालने, हालांकि पैसा कम था,
0: और
1: अब ज़माने में ये है कि ज़रा सा फिक्र लगी है कि बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को सिखाना भी है, अपने को प्रोग्राम भी करके पैसा भी लाना है।
0: तो ऐसा आप महसूस करते हैं कि जो फन में लगा हुआ आदमी है, आर्ट में लगा हुआ आदमी है, उसके लिए थोड़ी सी बेफिक्री का भी बात होना चाहिए?
1: मैं तो हम ये कहूँ
0: ऐसा इंतजाम होना चाहिए,
1: होना चाहिए
0: कि थोड़ी बेफिक्री हो और वो लग करके अपना काम करें,
1: बस
0: और मुल्कों में समझता हूँ इसके लिए काफ़ी कुछ है,
1: बहुत है। और दूसरे मुल्कों में तो ऐसा है साहब कि वो कलाकारों के लिए इतनी फैसिलिटी उनको दे दी है कि वो अपना खाएं, अपने मूड अपने बनाएं, रियाज करें और दूसरों को रियाज कराएं। ये चीज़ अगर हो जाए थोड़ी सी भी हमारे यहाँ, तो उससे हम कहते हैं हज़ार नहीं, अगर उसमें से दो चार भी निकल गए तो वो दो चार हज़ार को बता सकते हैं, और उसको वो ज़रूरी है, और कुछ खर्च नहीं है, सिर्फ एक ख़ानदान या दो ख़ानदान जिसमें कि ऐसा है यहाँ ये आदमी इसको लेके चलेगा, उसके लिए थोड़ी सी मदद मिल जाए कि उसको फिक्र ना हो और अपना थोड़ा सा वो गाना बजाना संगीत शुरू करा दे कि भाई ये चलो, उसको ये फिक्र नहीं कि हमको रोज़ खाने के लिए बाज़ार से सामान लाना, ये करना वो करना पकवाना है।
0: यानी संगीत के विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, सब चलते रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आर्टिस्ट जो है
1: जी जी
0: उसको भी थोड़ी
1: होना चाहिए,
0: थोड़ा सुकून उसको मिलना चाहिए, थोड़ी सी बेफिक्री हो,
1: बिल्कुल
0: वो अपना काम करे।
1: ये है एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर इस पर ध्यान दे दिया जाए थोड़ा सा, ये हम नहीं कहते कि 200-400 आदमी को इकट्ठा, अरे भाई 2-4 आदमी को, पूरे हिंदुस्तान में 2-4 आदमी को ऐसा कर लीजिए और उनको छोड़ दीजिए कि भाई आप अपना इस काम को देखिए, आपको कोई फिक्र नहीं है, तो आप देखिए और टाइम लगा दीजिए कि आज साल भर में हम इनको क्या देखा था, साल भर बाद क्या देख रहे हैं, देखिए क्या होता है। और वो उसका सबूत तो ये हो जाएगा कि पहले शुरू करने के पहले जो कुछ थोड़ा सा है उसका रिकॉर्ड कर लीजिए और साल भर बाद फिर रिकॉर्ड मिला लीजिए, पता चल जाएगा क्या हुआ कि नहीं हुआ, और होगा क्यों नहीं, कार्य कसरत करना चाहिए, जो करेगा उसका होगा।

0: लोग कहते हैं कि करता उस्ताद ना करता शागिर्द, यानी जो करेगा वही उस्ताद है असल में, और उस्ताद होकर अगर नहीं करता तो वो तो शागिर्द हो गया।
1: तो खान साहब, मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ आपने अपने बारे में, अपने ज़माने और अपने माहौल, अपने वक्त के बारे में बहुत कुछ बताया, अपने फ़न के बारे में, और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके, अपने सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मैं साहब आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग कम से कम ये तो कर रहे हैं कि कलाकारों की ज़बान को दुनिया को सुना रहे हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान से हमारे पूर्व उद्घोषक नर्मदेश्वर उपाध्याय की भेंट वार्ता। ये थी हमारे संग्रहालय कार्यक्रम की पहली कड़ी, प्रस्तुति थी आकाशवाणी प्रयागराज की। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी 11 जुलाई सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार पंडित रघुनाथ सेठ से आकाशवाणी प्रयागराज के पूर्व प्रोड्यूसर और प्रसिद्ध साहित्यकार केशव चंद्र वर्मा की भेंट वार्ता। तो सुनना मत भूलिएगा हमारा कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से।
3: एहसास की धूप छाओं में, हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
4: साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
3: पेशे खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार। आज एक कलाकार में बातें होंगी बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार, पटकथा लेखक और निर्देशक विशाल भरद्वाज की।

विशाल भारद्वाज वो नाम जिसने संगीत भी रचा, कहानी भी गढ़ी, किरदार भी ढाले और पर्दे के पीछे खड़े होकर एक ऐसी दुनिया बनाई जो बरसों से दर्शकों के दिलों पर बसी हुई है। एक ऐसा नाम जिसकी धुनों में सादगी भी है, लोक संगीत की खुशबू भी और आधुनिकता का तड़का भी।

विशाल भारद्वाज इनका जन्म 4 अगस्त 1965 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। सपना था क्रिकेटर बनने का, लेकिन किस्मत में संगीत लिखा था। 1996 में फिल्म आई माचिस। गुलजार के लिखे गीतों को जब विशाल भारद्वाज ने संगीत से सजाया तो हर सुनने वाला अपने शहर की गलियों, अपने बचपन में जैसे खो सा गया था।

श्रोताओं, विशाल भारद्वाज केवल संगीतकार ही नहीं बल्कि एक शानदार निर्देशक भी हैं। उन्होंने शेक्सपियर की तीन महान कृतियों मैकबेथ, ओथेलो और हैमलेट को भारतीय परिवेश में उतारकर मकबूल, ओंकारा और हैदर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। और जब बात लोक रंग की हो तो ओंकारा का नाम जरूर लिया जाता है। वो फिल्म जिसकी कहानी उत्तर भारत की मिट्टी की खुशबू की चादर में लिपटकर जैसे लोक संगीत के सागर में डूब जाना चाहती हो।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत एक ही कलाकार, जो केंद्रित है गीतकार, संगीतकार, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज पर। आपके बारे में बातें और भी होंगी, गाने और भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी।

0: 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत एक ही कलाकार में। हम बात कर रहे हैं विशाल भारद्वाज की। श्रोताओं, विशाल भारद्वाज को राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा उनकी फिल्मों, उनके संगीत या फिर कहानी के लिए न जाने कितने पुरस्कार मिले। शेक्सपियर का नाटक के हैमलेट पर आधारित हैदर से विशाल भारद्वाज ने दिग्गज फिल्मकारों को भी अपना मुरीद बना लिया। यही वो फिल्म थी जिसने 5 राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए थे। और फिर इश्किया का वो गीत भला कौन भूल सकता है, जो रिलीज होते ही हर उम्र के लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। राहत फतेह अली खां की आवाज और विशाल भारद्वाज का संगीत, क्या कमाल का संगम था।

कच्चा है जी। बताओ, विशाल भारद्वाज की फिल्मों में आपको एक जैसा फॉर्मूला नहीं मिलेगा। हर कहानी एक नए अंदाज में कही जाती है और वैसे ही ढल जाता है उसका संगीत, वो संगीत जो धीरे से कहीं दिल में जगह बना लेता है। जी हाँ, उसी विशाल संगीत संग्रह में से ये गाना हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें शरारत भी है, नटखट अंदाज भी है और संगीत का अलग रंग भी है।

श्रोताओ, विशाल भारद्वाज उन नामों में से एक हैं जिन्होंने ये साबित किया कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कहानी कहने का सबसे प्रभावशाली माध्यम भी हो सकता है। उनकी धुनों में कभी गांव की मिट्टी महकती है तो कभी शहरों का अकेलापन खामोशी से चीखता सुनाई दे जाता है। कभी प्रेम का एहसास तो कभी समाज की बेचैनी भी हमें बेचैन कर जाती है।

0: सचमुच में तुम्हें भैंस दिखती हूँ?
1: राजा दिल सांड हो ना, तो हर लड़की भैंस दिखाई देती है मेरी।
2: श्रोताओं, इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। मिलते रहेंगे कुछ और कलाकारों के साथ, उनकी कहानियों के साथ, उनके गीत और संगीत के साथ। तब तक के लिए अतुल यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपक कुमार राय। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेशे खिदमत है प्रोग्राम फिल्म संगीत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल यादव और इस प्रोग्राम फिल्म संगीत में अगले आधे घंटे हम सब रहेंगे ढेर सारी बातों और कुछ प्यारे प्यारे नगमों के साथ। फिलहाल अगर इस वक्त आप किसी हाईवे पर दौड़ा रहे हैं अपनी गाड़ी, तो खिड़की से आती ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और आगे लंबी सड़क है। साथ में अपने यार दोस्त और दिल में बस एक ही ख्याल कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत ये सफ़र है।

और इस सफर में आप हैं अतुल यादव के साथ, और म्यूजिक होगा इस सफर में। एक्सीलेटर पर पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं, लेकिन उन्हें रोक के रखिएगा, क्योंकि याद रखिए रफ्तार का मजा तभी है जब सफर सुरक्षित हो। तो सीट बेल्ट कस लीजिए, म्यूजिक थोड़ा तेज कर लीजिए और चल पड़िए इस सफर में।

जी हाँ श्रोताओं, हमें पता है कि आपकी गाड़ी भी स्पीड पकड़ चुकी है और मूड भी पूरी रफ्तार में है, लेकिन याद रखिए सड़क कोई रेस ट्रैक नहीं है। अगर कोई आपको ओवरटेक करके निकल जाए ना, तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि जीत मंजिल पर पहुंचने की होती है, किसी को हराने की नहीं। बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गाना जो हर लॉन्ग ड्राइव की जान है।

अगर आपका भी कहीं ना कहीं गोल मिशन कश्मीर है तो ज़रा सा रुक जाइए, अगर कहीं ढाबा दिख जाए सामने तो एक ब्रेक तो बनता है भाई, थोड़ी चाय, थोड़ी हंसी, दो चार सेल्फीज़ और फिर वापस उसी जोश के साथ सड़क पर। लेकिन खाने के तुरंत बाद बहुत तेज़ ड्राइविंग से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि नींद के आगोश में हम चले जाते हैं, या फिर यूँ कह लें कि आलस हमारे पर हावी होने लगता है और वो हमें कहीं ना कहीं ड्राइविंग स्किल्स को थोड़ा सा लो लेवल पे ले जाने की ओर बढ़ा चलता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बीट्स को थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं।

अगर इस वक्त आप ही नहीं बल्कि कार में बैठे आपके साथी भी आपके साथ में गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तो समझ लीजिए कि सफ़र यादगार बनने वाला है। बस एक छोटी सी बात कि कई बार हम क्या करते हैं कि गाड़ी ड्राइव करते समय मोबाइल पर वीडियो बनाते रहते हैं, और ख़ास तौर से रफ्तार तेज़ हो और यंगस्टर्स का साथ हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन साथियों, अगर हम न्यूज़ देखते हैं या हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो कई बार ऐसी ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं कि मन विचलित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल पर वीडियो बनाते समय ड्राइव बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि रील बाद में भी बन जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में कोई रीटेक नहीं होता। अब हो जाइए तैयार आज के एक और एनर्जेटिक सॉन्ग के लिए।

और साथियों, बाहर निकलते समय, घर से बाहर निकलते समय, चाहे आप शॉर्ट ड्राइव पे जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर आप किसी लंबे टूर पे निकल रहे हो कि आप तो पूरा हिंदुस्तान घूम के लौटेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आपके साथ आपकी गाड़ी में सारे के सारे कागजात ज़रूर रहने चाहिए। उसका कारण ये है कि जैसे ही आप अपने प्रदेश की सीमा से बाहर निकलते हैं, ख़ासतौर से जिस स्टेट में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होती है उससे बाहर जब आप निकलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक स्टेट में रजिस्टर्ड गाड़ी, वहां से आप एग्रीमेंट के तौर पे एक बार ले करके चले जाते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में अगर एक तय समय सीमा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आपकी गाड़ी सीज भी की जा सकती है। फिलहाल ये तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन की बात, लेकिन हम बात जब रफ्तार की कर रहे थे, हमें पता है कि जब म्यूज़िक का तड़का लगता है आकाशवाणी की ओर से, तो हमारे जो साथी, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ख़ासतौर से जो ड्राइविंग मोड में रहते हैं, ख़ासतौर से जो ज़्यादातर सफ़र में अपना करियर को लेकर के समय बिताते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये भी ख्याल रखते हैं कि हम आपको इंटरटेनमेंट भी देते रहें, आपको हम इंफॉर्मेशन भी देते रहें, आपको हम आज की नई जनरेशन की जो एनर्जी है उसके साथ हम तादाद में बिठाने में भी मदद करते रहें, लेकिन साथ ही साथ आपकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए बीच बीच में हम आपको ये बताते रहते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं ट्रैफिक्स की, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं उनको रूल्स फॉलो करने की। हालांकि हम ये जानते हैं कि हमारे जो सुधी श्रोता हैं वो खुद भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हाईवेज पर चल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी किस स्पीड में चल रही है और जिस लेन में आप चल रहे हैं वो उस स्पीड लिमिट के लिए है कि नहीं है। क्योंकि हाईवेज पे एक बहुत बड़ा कारण ये बनता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस लेन में किस स्पीड से चलना चाहिए, और जब कोई दूसरी गाड़ी हमें ओवरटेक करती है और हम लेन में बिना इंडिकेटर दिए इस लेन से दूसरी लेन में शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि जितने एक्सप्रेसिव वेज बन रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, उन पर स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। सड़कें अच्छी होती हैं, जाहिर सी बात है रफ्तार भी होगी, लेकिन कहते हैं ना कि समझदार के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अगर किसी भी शस्त्र का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको चलाने का गुण भी उसके पास होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है गाड़ियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, हाईटेक गाड़ियां मार्केट में आ चुकी हैं, और अच्छी से अच्छी गाड़ी हमारे युवा साथी से लेकर के हमारे जो मेच्योर्स हैं वो सबके सभी से लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इनके सिस्टम को भी अच्छी तरीके से समझें, और न केवल समझें बल्कि उन्हें

बिल्कुल दोस्तों, अब तो लगता है कि पूरी कार ही मिनी डांस फ्लोर बन चुकी होगी, लेकिन लेकिन लेकिन हमारे जो साथी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं उनके लिए सिर्फ एक संदेश और एक गुजारिश कि डांस सिर्फ दिल में कीजिए साहब, स्टीयरिंग पर दोनों हाथ बनाए रखिए। रात का सफर हो तो हाई बीम हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी है दोपहरी तो रफ्तार पे अपना कंट्रोल रखें। सामने वाले की आंखों का भी ख्याल रखें, क्योंकि जितनी तेज आपकी है जरूरी नहीं कि उसकी भी हो। और अब इस प्रोग्राम का फाइनल धमाका।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने उनके नाम तो आपको बता दें कि पहली थी ये जवानी है दीवानी, फिर मिशन कश्मीर, धूम, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, हाउसफुल और अब खाकी।

तो दोस्तों, इस आधे घंटे के सफर में हमने सिर्फ गाने ही नहीं सुने, हमने रास्तों की खूबसूरती भी महसूस की, दोस्तों की हंसी सुनी और ये भी याद रखा कि कोई भी मंजिल इतनी जरूरी नहीं होती कि उसके लिए अपनी या किसी और की जिंदगी दांव पर लगा दी जाए। इसलिए सीट बेल्ट हमेशा लगी रहे, स्पीड लिमिट का सम्मान करें, ड्रिंक एंड ड्राइव कभी नहीं, और अगर थकान महसूस हो तो थोड़ा रुक जाएं। याद रखिए, सच्चा ड्राइवर वही है वो जो सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि अपने साथ बैठे हर इंसान की जिंदगी भी संभालता है। इसी दुआ के साथ आपका हर सफर सुरक्षित हो, मुस्कुराता हो और यादगार बन जाए। मैं लेता हूं अतुल यादव आपसे इजाजत, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुरक्षित चलते रहिए। हैप्पी जर्नी, मिलते हैं अगले सफर में। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति

0: चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुकिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The inauguration of the new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The bilateral investment agreement, or BIA, between India and Israel came into force today. The agreement was signed in September last year in New Delhi. The finance ministry said that the BIA is a landmark step towards strengthening bilateral economic relations and ensuring a secure and predictable investment climate. The ministry noted that the BIA is expected to contribute to increased cross-border investment activity and further deepen the economic partnership between India and Israel. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tributes to Swami Vivekanand on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Radhakrishnan described Swami Vivekanand as a great patriot, philosopher and spiritual visionary. He said that Swami Vivekanand rekindled India's civilizational consciousness and carried the timeless wisdom of the country to the world. Prime Minister Modi said that Swami Vivekanand's spiritual teachings will continue to provide the nation with renewed energy and direction in achieving the vision of a Viksit Bharat. Venezuela's Foreign Minister Juan Gil has expressed gratitude to the Government of India and Prime Minister Narendra Modi for their timely support and assistance in helping the victims of the devastating earthquake. Mr. Gil today visited the Indian Military Field Hospital established under Operation Amistad for providing treatment to those affected by the earthquake. It is providing free round-the-clock medical services to the people of Venezuela. Speaking on the occasion, Venezuela's foreign minister said that more than 400 people are treated daily at this field hospital. In Iran, preparations are underway for the 6-day state funeral of the former supreme leader, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, which will begin in Tehran today. Senior Iranian leaders, military commanders and foreign dignitaries paid their respects to Ayatollah Ali Khamenei at Tehran's Grand Musalla. Among those present were President Masoud Pezeshkian, Parliament Speaker Mohammad Bakhar Khalibaf, Foreign Minister Abbas Araghchi and Revolutionary Guards Commander Ahmed Vahidi. India was represented by Governor of Bihar,

1:15 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम पनघट होगा, जिसमें आज का आकर्षण ज्योति मिश्रा की कहानी मिट्टी का कर्ज, धरती के गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे। कलाकार होंगे सूरज कुशवाहा। उसके पहले बता दें लोकगीतों का ही एक और कार्यक्रम होगा 2:30 बजे से, जिसमें आज आप सुनेंगे अजय कुमार यादव और साथियों के गाए लोकगीत। इसके अलावा युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह 5:15 पर होगा, जिसमें आज का आकर्षण आज की शाम आपके नाम, जो केंद्रित होगा परेश रावल पर। साढ़े 6 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में परिवार कल्याण की बातें होंगी, साथ ही ग्रामीण भाई आनंद लेंगे अजय कुमार यादव और साथियों के गाए लोकगीतों का। हिंदी कार्यक्रम 7:31 पर होगा, जिसमें आज रविभूषण पांडे की वार्ता मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवाद। सात बजकर 45 मिनट पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें आज कलाकार होंगे नितिन कुमार श्रीवास्तव। रात 8 बजे चितपट संगीत और 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सबरस। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में आपको सूचना दे दें,

सबसे पहली सूचना इस प्रकार है। उमा देवी पत्नी रामजनम, उम्र 28 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, चेहरा गोल है, रंग गेहुआ है। ये 17 मई 2026 को ग्राम रामपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। रामजनम मुंगारी, थाना औद्योगिक क्षेत्र, जनपद प्रयागराज। अगली सूचना इस प्रकार है। विलुप्त व्यक्ति का नाम विनोद, पुत्र भुल्लन, उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, इकहरा बदन, रंग सांवला है और चेहरा लंबा है। ये दोनों आंखों से अंधे हैं। इन्होंने फुल शर्ट और काले रंग का लोअर पहना हुआ है। ये 7 जनवरी 2025 को शेरडी से लापता हो गए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 8090046 7241। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 8090467241। इस वक्त की जो आखिरी सूचना है गुमशुदा व्यक्ति के संदर्भ में वो इस प्रकार से है। कमल स्वरूप शर्मा, पुत्र स्वर्गीय दुर्गा शरण शर्मा, उम्र 55 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, इकारा बदन, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। ये 6 मई 2026 को शाम 5:15 के आसपास ग्राम कठौली थाना मेजा से लापता हो गए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 9264962258। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9264962258। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राम शंकर का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रामशंकर का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूँ मधु, आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों को लेकर। अपना नाम बता दीजिए।
1: हेलो
0: हेलो, अपना नाम बताइए।
1: हाँ जी, मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी, अपना नाम भी
1: बताइए। मनोहर लाल मेहर
0: जी। मनोहर लाल जी हमारे साथ हैं लाइन पर, तो बताइए मनोहर जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: वो गाना है राम तेरी गंगा मेली, एक राधा एक श्याम एक मीरा।
0: अच्छा, एक राधा एक मीरा। लता जी की आवाज में ये गीत है, और मंदसौर से हमारे पास इस गाने की फरमाइश आई है जो मनोहर लाल जी ने की है। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम नितीश आर्या है
0: जी। नितीश आर्या जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: संत का नाम है अस्तित्व।
0: अस्तित्व जी?
1: जी मैम, गाने बोल हैं चल मेरे संग।
0: ओह, सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना
0: बहुत
1: है।
0: गाना तो वाकई में बहुत अच्छा गाया है सुखविंदर सिंह जी ने। और फरमाइश भी देखिए, बहुत दिनों के बाद, क्या मैं तो कहूँगी पहली बार फरमाइश आई है इस गीत की। और वो भी
1: गाने
0: पसंद किया है नितीश
1: रात
0: जी
1: के
0: ने।
1: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: जी जी, इसका मतलब आप बहुत ध्यान से सारे कार्यक्रम सुनते हैं। नितीश जी, आपने कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया है कि आप क्या करते हैं, कुछ बताएंगे आज?
1: जी जी अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा
1: जी, अभी हमारा 9th फाइनल हो चुका है। 9th में थे पर हमने कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लिया है।
0: अच्छा,
1: अभी पढ़ाई हम करेंगे आगे भी।
0: नहीं बिल्कुल करिएगा, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पढ़ाई करके अपने पाँव पर खड़े होइए, उस फिर उसकी बात ही कुछ और रहती है।
1: जी जी, और आकाश बारिश बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, युवाओं के लिए युवाणी कार्यक्रम भी आता है और भी प्रेरणादायक कार्यक्रम होते हैं जिनसे आपकी जनरल नॉलेज भी बहुत बढ़ती है।
1: जी जी, तो इस तरह सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है नितीश जी। और कार्यक्रमों के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी करिए और सुनिए हेलो फरमाइश कार्यक्रम जो आकाशवाणी

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: पवन निषाद, निजी कला बनपुकरा से।
0: जी पवन जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: बेटा फिल्म का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: कोयल की तेरी बोली।
0: कोयल सी तेरी बोली।
1: हाँ हाँ।
0: तो पवन जी की पसंद का ये गाना अब हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: पवन निषाद निजी कला पंचपुखरा से
1: जी। पवन जी कौन सा गीत सुनेंगे?
0: बेटा फिल्म का।
1: गाने के बोल बताइए।
0: कोयल की तेरी बोली।
1: कोयल सी तेरी बोली।
0: हाँ हाँ।
1: तो पवन जी की पसंद का ये गाना अब हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय चल रहा है आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूँ मधु आपके गीतों के साथ। अब देखते हैं हमारे साथ कौन से कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: रेखा यादव पुनः हंडिया प्रयागराज से बोल
0: जी। रेखा यादव फ्रॉम हंडिया हमारे साथ हैं। तो भाई रेखा जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम फिल्म का नाम है काम चोर
0: जी,
1: और गीत का नाम है तुमसे बढ़कर इस दुनिया में दूजा कोई, जो गीत की बात आ गई।
0: राकेश रोशन और जया प्रदा के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जुबा पर आज दिल की बात आ गई। बहुत बढ़िया गाना।
1: रेडियो से बढ़कर कोई नहीं है।
0: ये बात तो सही है भाई, जो रेडियो के साथी हैं पुराने, उनको तो रेडियो ही अच्छा लगता है और वहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम भी अच्छे लगते हैं। तो रेखा जी, चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी,
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं।
0: जी जी रोशनी जी तो हमारी नियमित श्रोता हैं, बहुत ध्यान से कार्यक्रम सुनती हैं और कभी मिस नहीं करती हैं सुनना।
1: जी मैम, ये तो आपका प्यार है और आकाशवाणी प्रयागराज का कमाल है।
0: जी रोशनी जी, तो आज आपने कौन सा गाना सुनना चाहा है? दीवाना। अच्छा, गाने के बोल बता दीजिए।
1: तेरे दर्द से दिल आवाज रहा,
0: कुछ भूल गए कुछ याद रहा।
1: जी
0: तो चलिए आपकी इस पसंद को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं दीवाना फिल्म का ये गाना।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। एक बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
4: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श

0: Public mourning will continue for 40 days thereafter. The Democratic Republic of Congo has reported more than 1,500 confirmed Ebola cases, including nearly 500 deaths, as the WHO warned that the outbreak remains serious. The outbreak continues to spread in the eastern provinces of Ituri and North Kivu. WHO says insecurity and armed conflict in affected areas are hampering case detection and contact tracing. The Inter Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Odisha for today. The weather agency predicted heavy rainfall conditions over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gangetic, West Bengal, Chhattisgarh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Marathwada, West Rajasthan and southern parts of the country as well. Indian Grandmaster R. Pragyananda produced a stunning finish to the rapid section of the Croatia Grand Chess Tour. He won all three of his matches yesterday to tie for the lead with Francis Ali Reza Firozia. Pragyananda defeated Ivan Šarić, Bogdan Daniel Dak and Anish Giri to climb to the top of the standings ahead of the Blitz section. And in men's cricket, the second T20 international between India and England will be played in Manchester today at 7 p.m. IST. The opening game of the five-match series was abandoned due to rain at Chesterler Street. And that is the end of this news bulletin.
1: Shwani Lucknow hai. Ilaqai khabrein Deeba Hashmi se. बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दो रोजा दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। जनाब नवीन रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी के साथ हवाई अड्डे से बीजेपी के रियासती दफ्तर तक रोड शो कर रहे हैं। पार्टी कारकुनों ने मुख्तलिफ मकामात पर उनका इस्तकबाल किया। नई रियासती बीजेपी टीम की तश्कील के बाद ये उत्तर प्रदेश का उनका पहला दौरा है। इस दौरे के दौरान वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और अहदेदारों से कई तंजीमी मुलाकात करेंगे। वो बीजेपी के अवामी नुमाइंदों और एनडीए कायदीन से भी बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दौरान बीजेपी सदर तंजीम को मजबूत बनाने के लिए मुनक़दा शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। जनाब नवीन रियासती कोर कमेटी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कल दोपहर वो प्रेरणा स्थल में शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महकमे सेहत और तिब्बी तालीम और मुख्तलिफ माहरीन के साथ एक आला सतही मीटिंग की और उत्तर प्रदेश स्टेट कैंसर टास्क फोर्स और उत्तर प्रदेश ट्रामा एंड एमरजेंसी नेटवर्क UPTEN की तरफ से पेश किए गए एक्शन प्लान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के हर जिले में कैंसर के इलाज की सहूलियात की तरक्की और सड़क हादसा और दीगर हंगामी हालात में सुनहरी घड़ी के अंदर इलाज को यकीनी बनाने के लिए रियासत गिर मरबूत ट्रामा और एमरजेंसी नेटवर्क कयाम की हिदायत दी। एक रिपोर्ट।
2: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाए। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में तीन रोजा मैंगो फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में आम की सयाहत को फरोग दिया जाएगा। इसे हासिल करने के लिए आम की तमाम इकसाम के लिए GI टैगिंग लगाई जाएगी। मेले में 50 ग्राम अंगूरदाना आम और 5 किलोग्राम वजनी गजानन आम तवज्जो का मरकज रहे। इस दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
3: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
1: वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर ज़रा शिवराज सिंह चौहान ने कल एक जायजा मीटिंग की, जिसमें अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों पर मामूल से कम बारिश और उसके असरात से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली के हवाले से सूरत

0: हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। उन्होंने वजारत ज़राअत और तमाम मुतालिका वजारतों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल कायम करें ताकि किसानों को मुनासिब फसलों की बुआई के बारे में मशवरा दिया जा सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पीर 6 जुलाई 2026 को अपने अराकीन की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई अहम इंतजामी और माली मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात की गिनती की जांच करने वाली खसूसी तहकीकाती टीम SIT के नतायज भी शामिल हैं। 8 जून 2026 को जारी करदा एक सरकारी नोटिस के मुताबिक ट्रस्ट के सदर की मंजूरी से खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी की तरफ से इजलास बुलाया गया है, क्योंकि इन मसाइल पर बहस और फैसले की जरूरत है। ये मीटिंग दोपहर 3 बजे मनी रामदास छावनी अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में होगी। एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से जमा कराए गए इस्तीफों पर गौर करना शामिल है। इस नोटिस में स्पीकर की इजाजत से किसी दूसरे मामले पर बहस का भी बंदोबस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET का दूसरा दिन कल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। 3 रोजा इम्तिहानात के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। इम्तिहान के दौरान एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से AI कैमरों का इस्तेमाल करते हुए तमाम इम्तिहानी मराकज की निगरानी की। कमीशन के चेयरमैन डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि UPTET इम्तिहान के आखिरी दिन आज एक ही शिफ्ट में इम्तिहान लिया गया। और श्री अमरनाथ यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल रास्तों से शुरू हुई। तीसरा जत्था हफ्ते की सुबह यानी आज जम्मू के भगवती नगर में वाकई यात्री निवास से रवाना हुआ। कल रियासत के कई जिला में भारी से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ जिला में मरतूब गर्मी जारी रही। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मशरकी हिस्से के कुछ जिला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। मगरबी जिला में गरज चमक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम पनघट।

0: जमुना, अरे ओ जमुना बहनी, हम कहाँ तो से राम राम।
1: राम राम चंपा बहनी, और पनघट कार्यक्रम सुने बैठी सभी श्रोता बहनी हरन के
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: जमुना बहनी,
1: का बहनी
0: हम देखे तार गटैया कुछ बैठा बैठा लागत बा।
1: कारण ई हवे ना चंपा,
0: हाँ
1: कि एक दिन वहां हम जौनबा बहनिया के खेतवा में गए रहे,
0: अच्छा।
1: तो गए तो झूरे झूर गए, और जब वहां पहुंचे बहनी तो वहां पानी बरसे ही लगा,
0: अच्छा,
1: और जब पानी बरसे ही लगा तो हम भीज ही गए,
0: हाँ घर से निकलो देखो मौसम सही हो तो छाता तला नहीं गयो।
1: लाइन आ ही गए, और वह गए
0: हाँ
1: बहनी भीज गए। जब भीज गए तो धोती भी जौन भीजी गई, तो काफी
0: हाँ
1: देर तक हम
0: भिजले
1: वैसे
0: में,
1: भिजले में रह
0: हाँ
1: गए, तो वही से बहनी हमारे सर्दी जुकाम हुई है।
0: ठंडा गरम से तबीयत
1: हाँ
0: खराब
1: हाँ
0: हुई
1: हाँ
0: है।
1: हाँ हाँ हाँ अब ये देखा, यह समय तो मौसम भी चलाता है कि हर घर में एक दो मनाई बीमारियां
0: मारे हैं।
1: बटबई की हैं, काहे कि देखा कभो पानी बरसा था, कभो घाम हो जाता, कभो तपई लगा था, तो जब ये दो
0: बिल्कुल
1: दशा महीना हो जाता ना, तो इनमें हो
0: ठंड,
1: था
0: हाँ
1: ठंडा
0: ठंडा
1: गरम।
0: गरम से हो ही जाते।
1: हाँ। और बताओ।
0: और तो बढ़िया है बहनी।
1: सब मैंने ये कहा था कि सब तो बढ़िया है चंपा, और देखा चंपा दऊ राजा कितना मैंने नीक मौसम के हैं, कभी तो बरसत हैं कभी ना ही
0: हाँ
1: बरसत
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही कहा थे
1: हाँ,
0: बहनी,
1: लेकिन जब बरसत हैं तब तो बड़ा मजा आवत है, और जब निकल जाते हैं और
0: तब
1: रच के पानी जौन
0: तो
1: बात छिचकार के चला जाते हैं,
0: तब तो
1: तब
0: और
1: ऐसा
0: मस होए
1: लगा था
0: लागल
1: कि
0: है।
1: और उमस होई लगा था।
0: बिल्कुल सही कहा थे बहनी। और देखा जाना थियो
1: हाँ
0: कि एक पल में काव
1: हाँ
0: से काव हो जाए, ई केहू नाही जानत,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: चाहे
1: बिल्कुल
0: वो व्यक्ति के हुए, चाहे जानवर के हुए, चाहे कोनो जीव जंतु के हुए।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा था चंपा। और देखा कहा भी गवा बटे ने कि समय और ज्वार केहू के प्रतीक्षा नहीं करत।
0: बिल्कुल सही कहा था जमुना बहनी। इता कहे कि एक लिए एक छोटा सा

0: शब्द है,
1: हाँ, हाँ,
0: एक वाक्य है,
1: हाँ,
0: ना ये जीवन के बहुत बड़ी सच्चाई के भी बतावत है।
1: बिल्कुल बहने,
0: कहें कि संसार के सबसे जन मूल्यवान संपत्ति अगर है कुछ,
1: हाँ,
0: तो है समय।
1: समय
0: क्यों, जैसे समय है कि वापस नहीं आवते, एक बार खोई जा ले।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: और देखा अगर कोनो व्यक्ति के तबीयत खराब है तो दवाई कई के ओका ठीक कई जा सकत
1: हाँ
0: है,
1: हाँ हाँ
0: मगर जो एक बार समय खोई जाता है वो
1: वापस
0: दोबारा
1: लौट के
0: वापस नहीं मिलत।
1: बिल्कुल नहीं आवत। और चंपा देखा, जब ये सब हम सब इस समय कैसे बात करत रहे, तो हम सोचत रहे कि कसना आज जब समय का बात होता तो आज यही से संबंधित चला, समय का सदुपयोग कैसे करे, यही पर जोन बा बत कही करी जन,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: नेकी या पूछ पूछ
1: तो देखा चंपा, मनुष्य के जीवन की सबसे मूल्यवान जनर संपत्ति का है समय।
0: समय,
1: और धन पद और प्रतिष्ठा खो जाए पर उन्हें दोबारा हम प्राप्त कर सकी थे। मुला एक बार बीता हुआ समय कभी भी लौट के नहीं आवत। यही लिए कहा भी गावना कि समय ही
0: जीवन
1: जीवन है।
0: है।
1: जे व्यक्ति समय का सम्मान करत है, समय भी ओकर सम्मान करत है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: और जीवन में चंपा सफलता, उन्नति और सम्मान प्राप्त करे के लिए समय का सदुपयोग करना बहुत ही जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा तू जमुना बहनी।
1: हाँ।
0: और समय का सदुपयोग का मतलब है कि हर क्षण के लिए,
1: हाँ, हाँ.
0: हर क्षण कौनो ना कौनो उपयोगी कार्य में लगावे के चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे विद्यार्थी के लिए सही समय का उपयोग, नियमित अध्ययन करब होत है,
1: हाँ हाँ
0: अभ्यास करब,
1: हाँ
0: खेल कूद, व्यायाम और अच्छा संस्कार
1: हाँ
0: अपनावे में है।
1: हाँ हाँ
0: इससे जौन विद्यार्थी समय पर पढ़ाई करत हिन वो परीक्षा के समय तनाव से
1: से
0: बचत हिन,
1: बचा रहत हैं।
0: हाँ, और अच्छे अंक भी अर्जित करत हिन।
1: हाँ, और
0: और
1: जे
0: एक,
1: पढ़बे ना करे।
0: हाँ, एक विपरीत जोन होते हैं, आलस करत हैं, जोन बच्चा टाल मटोल करत हैं,
1: हाँ हाँ हाँ
0: निरर्थक कार्य में अपन जोन समय है उसका नष्ट
1: बिताओ
0: करत
1: ला।
0: हैं,
1: हाँ हाँ
0: तो का होता है बाद में पछतावे से उन्हें कुछ नहीं मिलत कि काश वास्तव में हम पढ़ लिए हुए।
1: हाँ कि
0: जब उनके
1: भाई
0: परीक्षक परिणाम उनके सामने होते हैं तब उनके पछतावा होते हैं, काश वास्तव में हम पढ़े
1: तो
0: हुए,
1: वही
0: मेहनत
1: होता ना
0: किए हुए,
1: कि अब पछताए होत के जब
0: जब
1: चिड़िया
0: चिड़िया
1: चुगा
0: चिग गई
1: चुगे
0: खेत।
1: खेत। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा था वो जोन बचंपा। और आज के आधुनिक युग में जैसे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम और मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं, एकर सीमित और आवश्यक उपयोग लाभदायक हो सकत है। मूल इन पर अत्यधिक समय बिताना समय का बर्बादी होत है।
0: बिल्कुल,
1: हाँ,
0: सबके लिए, लड़का
1: सबके लिए,
0: गदेल सयान
1: बूढ़
0: सबके
1: पुरानिया सबके
0: सबके
1: लिए।
0: बड़े।
1: हाँ, अगर हम अपने दिन का योजना बनाए के आवश्यक कार्यों में लगाई तो कम समय में अधिक सफलता हम प्राप्त कर सके थे।
0: बिल्कुल सही कहा थी जमुना बहनी। समय के सदुपयोग खाली पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं होता है,
1: हाँ,
0: अपने परिवार के साथ ही समय बितावें, अच्छी पुस्तक पढ़ें और नई नई बात सीखें, योग व्यायाम करें, समाज सेवा करें और अपनी प्रतिभा यानी कि योग्यता के विकसित करें।
1: हाँ, निखार रहे।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: इस समय के जो है श्रेष्ठ उपयोग उपयोगी कहलात है।
1: अच्छा,
0: ये कार्य ना केवल हमारे व्यक्तित्व के निवारण करत है
1: हाँ,
0: बल्कि हमें मानसिक शांति
1: शांति
0: और
1: आत्मविश्वास
0: आत्मविश्वास
1: से
0: भी
1: भी।
0: प्रदान
1: हाँ
0: करत
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था। और देखा चंपा, प्रकृति हमें समय का महत्व का सबसे बड़ा संदेश देता है। ये जो
0: बिल्कुल सही,
1: प्रकृति हवे
0: हाँ,
1: वो हमें जोन बटे समय के महत्व का सबसे बड़ा संदेश देता है। देखा, सूर्य प्रतिदिन निश्चित समय पर उदय होता है
0: बिल्कुल,
1: और अस्त होता है। ऋतु अपने निर्धारित क्रम में आवतहीन और जातहीन।
0: बिल्कुल सही कहा तू
1: पृथ्वी
0: बहनी।
1: भी बिना रुके अपनी गति से घूमता है। यदि प्रकृति समय का पालन न करे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाए ना।
0: बिल्कुल सही कहा तू
1: तो
0: बहनी,
1: यही तरह से मनुष्य का जीवन भी तभी व्यवस्थित और सफल बनत है जब वह समय का सही उपयोग करना सीखत है।
0: बिल्कुल सही कहा तू जमुना बहनी। अब समय प्रबंधन के लिए जमुना बहनी हमें कुछ अच्छी आदतन के अपनावे के चाहिए,
1: जी।
0: जैसे कि प्रतिदिन के लक्ष्य बना लें,
1: हाँ हाँ कि हमें
0: निर्धारित
1: का
0: समय के
1: करना
0: लिए,
1: व का नहीं
0: हाँ,
1: करना व।
0: कि हमें
1: हाँ
0: काव करे खाए, समय से उठे के बाय, और कार्य के सूची बनाए लें अपने,
1: हाँ हाँ हाँ
0: और आलस्य हमें दूर रहे के बाय,
1: हाँ हाँ
0: और अनावश्यक बातन में समय व्यर्थ नहीं करे के बाय।
1: बिल्कुल। हाँ,
0: छोटी छोटी आदतन के धीरे धीरे बड़े परिवर्तन के कारण बनत है।
1: बिल्कुल सही कहा था। और सच्चे कहूँ चंपा, और समय ईश्वर का दिया भवा सबसे अनमोल उपहार है।
0: बिल्कुल,
1: समय का सदुपयोग वाला व्यक्ति सफलता, सम्मान और संतोष प्राप्त करता है, जबकि समय के व्यर्थ गंवावे वाला व्यक्ति अवसरों से वंचित रह जाते हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: इसलिए हमें प्रत्येक क्षण का महत्व समझे के चाहिए और यह संकल्प लेवे के चाहिए कि हम अपने समय का सदुपयोग ज्ञान, परिश्रम, सेवा और आत्म विकास में करी।
0: बिल्कुल,
1: समय का सम्मान ही सफलता का पहला कदम है चंपा, काहे से कि बीता समय फिर कभी वापस
0: नहीं।

0: बहुत
1: बिल्कुल सही बात
0: देखा, बत कही तो हम सब करते ही रहा।
1: हाँ,
0: अब सोचा था कि अपने बहनी हरन के और तोहके भी एक ठे जौन बा संदीप वर्मा बहनी से जौन
1: दादरा सुन लिया जाए,

0: चंपा,
1: आज हम
0: देखा
1: नवीनी
0: संदीप वर्मा बनी दादरा कितना नेक
1: बहुत
0: सुनाए,
1: नेक
0: अनारदार बगिया
1: ना
0: नाचे
1: जाई
0: वे राजा।
1: राजा।
0: हाँ तो देखा गीत गौने ही तो होते रहे।
1: जब तक गीत गाने पनघटे सुन सुन लागत है
0: हाँ
1: एकदम
0: भाई
1: ना,
0: देखा जब से अपने पनघटे पर ढोल मंजीरा नाई ठनका तब से अपन पनघट बड़ा सुना सुना लगल
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो अब हम सोचते रहे ना कि आज अपने
1: हाँ
0: बहनी हिरन की एक ठे हम कहानी सुनाए वाई दी, और कहानी सुनाओ थे बहनी ज्योति मिश्रा, तो तू सुना और बहनी हिरन भी
1: चला
0: सुना।
1: सुन लिया जाए।
2: गांव में उस दिन कोई त्योहार नहीं था, लेकिन बोधन के दरवाजे पर सिलसिले से खाटे बिछी थी। उन पर पड़ोसियों से मांग कर गद्दे और चादर बिछाए गए थे। कुछ कुर्सियाँ स्टूल वगैरह भी स्कूल से मंगा कर रख दी गई थी। दरवाजे पर गांव और जवार के कुछ लोग भी इकट्ठे होकर अमराई की छांव कच्ची सड़क पर टकटकी लगाए किसी के आने की बाट जो रहे थे। इनमें जवार के कुछ मानिंद पैसे वाले खेतिहर और विद्यार्थी व्यापारी भी थे जो बरदेखुआ के तौर पर आए थे। जवार में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि बोधन का छोटा बेटा सुमित इंदौर से प्रबंधन की डिग्री अव्वल नंबर से पास होकर लौट रहा है। उसे अब कम से कम 30-35 लाख रुपए सालाना की नौकरी मिलेगी। वह देश विदेश में कहीं भी ऊंचे ओहदे पर नौकरी कर सकता है। दरवाजे पर एक कोने में सुमित के बाबा बूढ़े रामानंद बैठे थे। उन्होंने सारी उम्र पढ़ाई करने और स्कूल में मास्टरी करने में गुजार दी थी। उनका इकलौता बेटा बोधन तो पढ़ाई में नील बटा सन्नाटा निकला, लेकिन वह टेम्पो चलाकर चार बेटों का पालन पोषण करता रहा। उसके तीन बड़े बेटे गांव में मजदूरी खेती और साइकिल की मरम्मत करते थे, लेकिन सुमित अपने बाबा अध्यापक रामानंद की डगर पर चलकर पढ़ने लिखने में तेज निकला। जवार में सुमित का नाम पत्थर की खदान में निकले चमकते हीरे जैसा मशहूर हो गया। बरदखुआ भी इसी गरज से गरीब बोधन के दरवाजे आए थे कि सोने जैसी फसल पक गई है, अब कटाई में देर नहीं करनी चाहिए। बाट जोहने का समय पूरा हुआ। अमराई की छांव पसरी कच्ची सड़क पर एक जवान पीठ पर बैग लादे आता दिखाई पड़ा। बोधन दौड़कर उसके पास गया, बोला, बेटवा मैंने तो तुम्हारे लिए स्टेशन पर टेम्पो भेजा था और तुम पैदल आ रहे हो। सुमित ने हंसकर पिता के पैर छुए, दादा आपने टेम्पो क्यों भेजा? मैं तो हर साल कॉलेज से घर लौटता हूँ तो पैदल ही आता हूँ। गांव का बेटा गांव में सिर झुका कर चले, यही हमारे घर की शोभा है। सुमित के सवाल का कोई जवाब बोधन को नहीं सूझा। दरवाजे पर सबसे पहले सुमित ने अपने बाबा के पैर छुए, बड़ों का आशीर्वाद लिया और एक स्टूल पर बैठ गया। बदकही होने लगी। जवार के सबसे ज्यादा मालदार व्यापारी जगन्नाथ सिंह से रहा न गया। उन्होंने पूछ लिया, सुमित बेटा अब तुम्हें कितनी पगार मिलेगी? सुमित छूटते ही बोला, अगर मैं नौकरी करना चाहूँ तो 30-35 लाख सालाना मिल सकते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे? लोग नौकरी के लिए ही तो पढ़ाई करते हैं। आपके इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, कभी मौका आने पर जवाब दूंगा।

अभी फिलहाल मुझे कुछ सोचने का समय दीजिए। सुमित का जवाब एक पहेली थी जिसका हल गांव वालों के पास भी नहीं था। बोधन भी बेटे के जवाब से चकराया, लेकिन बूढ़े अध्यापक रामानंद के झूठीदार चेहरे पर चमक भरी मुस्कुराहट साफ दिखाई दी। उनकी बूढ़ी आंखों में अजीब सी चमक नजर आई। अगले दिन बड़ी भोर सुमित ने गांव के किसानों को पंचायत घर में इकट्ठा किया। उसने कहा, आप लोगों के पास 2, 4, 6 बिस्वा खेत है। इसमें गेहूं धान की फसल लेने से गरीबी कभी दूर नहीं होगी। अगर आप लोग मेरी बात माने तो 1 साल में आपकी आमदनी 4 गुने से 8 गुनी हो सकती है। गरीब किसानों को सुमित की बात समझते देर नहीं लगी। आखिर ये बात उनके गांव के गरीब घर का पढ़ा लिखा बेटा कह रहा था। सुमित ने अगले ही दिन खेती की योजना बना ली। शहर की सब्जी मंडी के थोक व्यापारी से वह मिला। उसने कहा कि वो 3 महीने बाद ताजी हरी सब्जियां सीधे मंडी तक पहुंचा सकता है। इन सब्जियों को उगाने के लिए कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जाएगा, रासायनिक खाद का नहीं। लेकिन इस सौदे में बिचौलियों का हाथ नहीं होगा। सिर्फ 10% मुनाफे पर ये सब्जियां ग्राहकों को मिलनी चाहिए। व्यापारी राजी हो गए। उसी दिन सुमित ने जिले के DM साहब से मुलाकात की और उन्हें अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताया। DM साहब की आंखें अचरज से फैल गईं। उन्होंने सुमित के बारे में अखबारों के जरिए जानकारी हासिल कर ली थी। वे बोले, आपकी योजना जरूर सफल होगी। गांव की मिट्टी से जुड़े पढ़े लिखे जवान अगर गांव की भलाई के लिए काम में लग जाएं तो देश की तरक्की होते देर नहीं लगेगी। मैं आपके गांव को हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूं। गांव को बैंकों से रियायती दर पर कर्ज भी मिलेगा। सुमित की योजना 3 महीने बाद रंग लाई। गांव की ताजी हरी सब्जियां शहर पहुंचने लगी। दुधारू पशु पालने के लिए कर्ज मिलने लगा। मुर्गी पालन और मछली पालन का धंधा भी शुरू हो गया। गांव की माँ बहनें स्वयं सहायता समूह बनाकर पापड़, अचार, मुरब्बा और बढ़िया बनाने लगी। गांव के हर घर में शौचालय बन गया। सूरज की रोशनी से बिजली पैदा की गई। रोशनी से हर गांव घर जगमगा उठा। किसान आमदनी बढ़ाने के लिए मक्खी पालन भी करने लगे। गांव की सड़क पक्की हो गई। सड़क के किनारे बिजली के बल्ब जगमगाने लगे। लेकिन गांव की तरक्की से बोधन का चेहरा मुरझा गया। सिर्फ बूढ़े अध्यापक रामानंद इस परिवार में अकेले थे जो सुमित के काम से खुश थे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। पड़ोस के गांव ने भी सुमित को अपना सलाहकार बना लिया। DM साहब हर हफ्ते समय निकालकर इस गांव का दौरा करने लगे। गांव का चौतरफा विकास सुमित कर रहा था और शोहरत जिले तक फैल रही थी। बोधन और उसकी घरवाली दोनों उदास थे। परिवार में एक ही लड़का होनहार निकला, वह भी घर के काम ना आया। वह तो घर के बजाय सारे जवार को अपना परिवार मानकर चल रहा था। बोधन गांव वालों से माथा ठोक कर कहता, सारा गुड़ गोबर कर हो गया। लेकिन गांव वाले खुश थे। उनके कच्चे मकान पक्के हो रहे थे। कुछ महीने बाद राजकोट की रत्ना भी सुमित के गांव आ गई। सुमित और रत्ना का परिचय इंदौर में पढ़ाई के दौरान हुआ था। दोनों ने जीवन भर का साथ निभाने का वादा किया था। सुमित ने नौकरी का इरादा छोड़ दिया तो रत्ना भी नौकरी से इस्तीफा देकर उसके पास पहुंच गई। गुजरात की यह बिटिया गांव की महिलाओं के लिए आंखों का तारा बन गई। 3 साल सुमित और रत्ना ने गांव की तरक्की में लगा दिए। एक दिन दोनों ने विवाह के बंधन में बंधने का इरादा जाहिर किया तो जवार की खुशी का ठिकाना न रहा। इस ब्याह में इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि तिल रखने की जगह भी नहीं बची। गांव के मालदार व्यापारी जगन्नाथ को भी मन मार कर समारोह में शामिल होना पड़ा। उनकी बिटिया के लिए अच्छा वर तो हाथ से निकल गया था, लेकिन पंचायत चुनाव में बढ़त बनाने के लिए उन्हें बोधन के दरवाजे आना ही पड़ा। सुमित ने उनसे कहा, दादा, आपके सवाल का जवाब तो उस दिन मैं नहीं दे सका, अब जवाब आपके सामने है। बूढ़े अध्यापक रामानंद छूटते ही बोले, सुमित, तुमने गांव की मिट्टी का कर्ज चुका दिया। मेरा परिवार धन्य हो गया। खेत का पानी गांव में अधूरी बात है। गांव के होनहार पढ़े लिखे जवान पैसे के लिए गांव छोड़ जाएंगे तो मिट्टी का कर्ज कौन उतारेगा? शादी समारोह में DM साहब भी आए।

0: ने यह खुशखबरी दी कि सरकार ने सुमित और रत्ना को गांव विकास समिति का सलाहकार बना दिया।
1: देखा जमुना बहनी, कहानी रही मिट्टी का कर्ज। कितनी नीक कहानी रही है।
2: अब यही बात पे चला, हम सोचे थे कि अपने बहनी हरण के एक थे जो अनुभव फिल्मी गाना सुनाई गंगा यमुना से,
1: चलो
2: मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में
1: चला सुन लिया जाए।

0: जब ना
1: जब
0: बनी
1: कैसन को नहीं लगी,
0: बहुत नीक रही है
1: हम
0: एकदम
1: देखा ना कि तू एकदम
0: मन
1: जोन पर तो हर हाथ पर ही लत
0: हाँ, बिल्कुल
1: रहा। अच्छा ये बताओ,
0: हाँ
1: गौने ही तो जोन पर तो हैं, इतनी अच्छी सुनवाई दी है,
0: हाँ
1: तो ये बताओ कि आज रसोई घर में हमारे बहनीरन के लिए तू का लेके आए हो?
0: आज हम लेके आए रसोई घर से अमरूद के चटनी।
1: क्या बात
0: देखा
1: है।
0: कैसे मैं अमरूद देखा पेड़ में
1: हाँ,
0: तैयार है ही
1: पेड़न
0: के
1: पे हाँ तैयार है ना,
0: बाटा।
1: वो हमें देखे तो दिलाए तोड़ तोड़ खाए लगाए। हाँ, तो बताओ
0: देखा
1: कैसे जौन बा बनावत हुए के।
0: देखा सामग्री पहले नोट करे बनी अरे
1: हाँ,
0: 2 ठो पका हुआ अमरूद ले लें,
1: हाँ
0: मतलब
1: हाँ
0: परिवार के हिसाब से बनावे
1: परिवार के हिसाब
0: चाहत
1: से। हाँ हाँ
0: हुए।
1: हाँ
0: 2 पका अमरूद ले लें और 8 से 10 हरी मिर्च ले लें।
1: अच्छा
0: अब 8-10 कली लहसुन का ले लें
1: हाँ हाँ
0: और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का ले लें।
1: अच्छा
0: अब 1/2 कप धनिया पत्ती ले लें।
1: हाँ हाँ
0: अब 1/2 चम्मच भुना जीरा
1: अच्छा
0: और 1/2 चम्मच
1: नींबू का
0: नींबू
1: रस।
0: का रस
1: हाँ हाँ
0: और नमक ले लें स्वाद के अनुसार अपने।
1: हाँ भाई, नमक तो डालना जरूरी पड़ेगी,
0: हाँ
1: है बिना नमक के तो फिर चटनी के कोनो मजे नहीं।
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: और थोड़ा सा काला नमक ले लें।
1: अच्छा हाँ,
0: अब देखो
1: अब
0: बनावे की विधि,
1: हाँ बताओ।
0: पहले अमरूद के अच्छी तरह से धुल के छोटा छोटा टुकड़ा हम काट लें।
1: हाँ
0: अब बीज को का

0: पत्ती ले लें,
1: हाँ,
0: अब आधा चम्मच भुना जीरा
1: अच्छा
0: और आधा चम्मच
1: नींबू
0: नींबू
1: का
0: का
1: रस।
0: रस,
1: हाँ,
0: और नमक ले लें स्वाद के अनुसार अपने।
1: हाँ भाई नमक तो डालना जरूरी पड़ेगी,
0: हाँ
1: बिना नमक के तो फिर चटनी के कोनो मजे नहीं।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: और थोड़ा सा काला नमक ले लें।
1: अच्छा, हाँ
0: अब देखो
1: अब
0: बनावे की विधि,
1: हाँ बताओ।
0: पहले अमरूद के अच्छी तरह से धुल के छोटा छोटा टुकड़ा हम काट लें।
1: हाँ,
0: अब बीज को, अगर बीज टाइट हो तो का निकाल दें,
1: अच्छा मैंने
0: अब
1: अगर
0: पके बाद थोड़ा
1: वो
0: टाइट हो जाए बीज तो
1: हाँ,
0: का,
1: जैसे ज़्यादा मोटा है जैसे हो जाए तो के
0: हाँ
1: निकाल
0: जैसे
1: देते हैं।
0: चटनी तो बनावे पता एकदम
1: हाँ
0: बढ़िया रही पतला पतला
1: नहीं
0: ना।
1: तो पता चला कि अगर ना निकलूँ तो दांते में जाके फंस जाते।
0: हाँ अगर ना
1: हाँ
0: उकटा सही से।
1: हाँ हाँ
0: अब मिक्सर जार में अमरूद और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, हरा धनिया पत्ती, भुना जीरा, नमक, काला नमक सब डाल के थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डाल दें,
1: हाँ
0: बारीक पीस लें।
1: अच्छा
0: अब चटनी के एक ठो कटोरी में निकाल लें
1: हाँ
0: और उसमें नींबू का रस डाल के मिलाए दें।
1: हाँ
0: अब चाहे तो हमें ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर, हरी धनिया पत्ती बारीक
1: अच्छा
0: कटी हुई
1: हाँ
0: डाल
1: हाँ
0: के सजाए दें तो और
1: अच्छा
0: निकला कि देखूँ मैं।
1: हाँ भाई सजाए पर तो
0: हाँ
1: भाई
0: और हर चीज़
1: हाँ
0: सजा अच्छा
1: लोग कहते
0: लगा
1: हैं ना कि लीपी पोती डेरी ओढ़े पहरे मेहरी
0: था बिल्कुल।
1: है
0: और देखा अगर गदेली चटनी ना ही खाते हैं,
1: हाँ
0: कि तीखा हो जाए मिर्ची पड़ जाए,
1: हाँ
0: तो का ओकरे बारे का करें, थोड़ा सा तो चीनी डाल दे या फिर गुड़
1: हाँ
0: डाल दे तो खट्टी मीठी चटनी बन जाए। और
1: हाँ
0: गदेलो खाई है और
1: और
0: सबे खा रही, सबके नीक लागी। और
1: बिल्कुल
0: देखा एक चटनी से खा चाहे, अरे चटनी से खाती पराठा से खा, चटनी
1: हाँ
0: पूड़ी से खा,
1: चाहे रोटी से
0: दाल
1: खा।
0: चावल हाँ रोटी से खा, कुछ उसका पकौड़ी से खा तो कितना नीक लागी
1: हाँ तो तू देखा बोला था वो तोहरे मुँह में पानी भी आवत है। तो
0: बिल्कुल।
1: देखा जौन बचंपा, ई तो तू बताऊ कि एकर अमरूद का चटनी
0: हाँ
1: और देखा इमे फायदा का काबा।
0: वो का बता
1: तो
0: दो
1: अब
0: आप।
1: देखा अमरूद देखा एक पौष्टिक फल तो हबे की है और इमे विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई आवश्यक खनिज मने में पावा जाते हैं।
0: हाँ
1: और एक फायदा का हो कि ई जौन बटे मने रोग प्रतिरोधक क्षमता जौन बा बढ़ावत है।
0: बिल्कुल
1: अमरूद में जौन विटामिन सी संतरे से भी अधिक मात्रा में पावा जाता है।
0: बिल्कुल
1: हाँ और यह शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करे में मदद करत है। एकरे साथे साथे इमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जौन कब्ज की समस्या के कम करत है
0: बिल्कुल
1: और पाचन के जौन बा बेहतर बनावत है। एकरे साथे साथे जो मधुमेह देखे आजकल लोग ओके जौन बा डायबिटीज कहते हैं है ना, तो ओमे भी जौन बा बहुत
0: फायदा करत है।
1: फायदा करत है। तो ई जौन बटे अमरूद का ई कुल जौन बा फायदा हुआ
0: और
1: इमें।
0: देखा कहते ना खांसी वासी अगर आवत है तो अमरूद भून के खा लो,
1: हाँ
0: कच्चा
1: हाँ
0: अमरूद
1: हाँ
0: तनी
1: हाँ
0: एकदम घुला ना रहे थोड़े कम रहे
1: हाँ हाँ
0: ओका भून के खा लो तो खांसी में भी फायदा मिलत
1: चलो
0: है।
1: ये तो हम भाई देखा तू तो हमें नई चीज बताऊ। हमरे हल्की
0: बिल्कुल
1: खांसी भी आवत रही तब हम चला थे अपने पेड़े से जौन बा तोड़ब भूनब और खा लेबे।
0: अब चला तू है एक ठो नीक के हम फिल्मी गीत सुनवाई दी नदिया के पार से,
1: हाँ
0: चला तू सुना बहनिया रे भी सुने
1: और आवाज हवे हेमलता
0: हेमलता।
1: जी के।

0: जमुना बहनी
1: हाँ बहनी
0: कितना नीक गाना रहा।
1: हाँ गाना देखे शादी ब्याह का गाना जब जले लगत है ना,
0: कितनो बार देखो सुन ले शादी ब्याह गाना तो मन कहता और सुना करी।
1: हाँ मैंने सुनते जाई सुनते
0: मन
1: जाई
0: हुआ कुछ हाँ। गाना होता ना हम सुन ले मन उब जाता
1: हाँ, बिल्कुल।
0: लेकिन ये कुल सुना करो कितनो सुनो मन ना हुआ
1: बिल्कुल। तो चला जौन बटे गाना तो भाई सुना गया तो चला एक ठे अपने बहनी हरन के संदेश सुनवा दिया जाए।
0: चला सुन लिया जाए।
2: जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है बहनी हरिन। हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमारा ईमेल एड्रेस है
5: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGAT

0: GHATPROGRAMME@gmail.com પનઘટ પ્રોગ્રામ એટ ધ રેટ ઓફ gmail.com. એમાં કોનો પ્રકાર કે કોઈ સ્પેસ ન હોઈ, સારી અક્ષર છોટી એવી સીડી યા સ્મોલ લેટર મેં હોઈ હૈ.
1: હમાર વોટ્સએપ નંબર હૈ 800-4926-250. તો સખિયન દેર કોને બાત કે, તુરંત ઉઠાવાએ આપન મોબાઈલ ઓર ભેજ દે અપને મન કે બાત, યા તો લિખ કે યા અપની આવાજ મેં રિકોર્ડ કરકે. આપકે સંદેશ કે હમ સબ કે
2: બેસબરી સે ઇંતજાર રહી.
3: संदेश तो सुन लिया गया
4: बिल्कुल.
3: लेकिन एक चीज कहे चाहत रहे चंपा तो से कि एक दो महीना तो इतना बढ़िया सुवान है.
4: हाँ?
3: लेकिन बहनी तो उसे का बताई.
4: अच्छा, जब से स्कूल खुला
3: 2 जुलाई से स्कूल लड़कन के जो खुला.
4: हाँ?
3: तो अब सोचो जरा कि भोरहिया में कितनी अच्छी नींद लगा.
4: बहुत नीक नींद लगा था.
3: लेकिन नींद लगा था लेकिन मजबूरी के नाम लोग कहते ना कि
4: उठे के पड़ा था
3: चंपा उठी थे तो हर बैठी थे तो हर बैठी थे. अब गदेला है अब सोवत है तो उनके सबको देखा टिफिन तैयार करे, एक बाद उनका बोतल भरे, बस्ता सही करे, कपड़ा
4: स्कूल के कपड़ा,
3: एक बाद फिर उनके उठाए के फिर उनके नहवाव धोआव, एक बाद उनके नाश्ता करावा. एक बाद अगर तोहरे दरवाजे पे बस गाड़ी आ जाता तो ठीक बटे, और ना ही तो कतौ तो हम अब
4: छोड़ जाए
3: छोड़ जाएगा. तो समझ ले कि यहाँ समय जब स्कूल ले
4: जाओ 2 घंटा सवेरे लगभग 1.5-2 घंटा एकदम मतलब वही काम में लगा रहा हूँ लड़कन के पीछे.
3: हाँ, आराम से. और एक बात फिर सुन, अब लड़का जैसे गए आए,
4: जब तक आवे टाइम में काम अपन नहीं खत्म हुई तब तक लड़के स्कूल से आ
3: जाते हैं. अब आ जाते हैं तो देखा उन्हें सबके जौन बटे गृह कार्य कुल मिला रहे.
4: हाँ.
3: अब देखा 2 महीना से जब स्कूल बंद बाहर आ, अब खुला बाटे तो अब 4-6 दिन मने पर उनकर सबके जौन बच कक्षा चले, एक बाद टेस्ट लेवे लगी.
4: हाँ.
3: है ना, तो टेस्ट लेवे लगी तो एक बाद उनमें होता कि हाँ लड़कन की यो पढ़ाई दे वो पढ़ाई दे
4: कुल पढ़ा.
3: तो मने लड़कन का भी देख घर का भी देख का करे बताओ.
4: बिल्कुल सही कहा तू बहनी.
3: तो यही से कहा ना कि जौन बा देखा ऐसा में चंपा की लड़कियाँ हमारे भविष्य हैं.
4: बिल्कुल सही कहा तू बहनी. तू
3: आज अगर हम सब पढ़ा लिख लड़कन के पढ़ाई लिखाई न दे भाई, अब देखा काहे के होते कि जैसे लड़की जो लड़की जाते होती थी.
4: हाँ?
3: वो एक घर नहीं दो दो घर
4: घर उन्हें संभाले रहा था.
3: दो घर के तारे के मतलब बहनी कि जौन बटे अगर हम अपने बिटियन के जौन पढ़ाई लिखाई देते.
4: हाँ?
3: तो अपने जैसे नैहरे में है तो अपने छोटे भाई बहन के पढ़ावे थे, और जब वो शादी करके चली जाते हैं अपने ससुराल.
4: हाँ?
3: तो हुआ जाते हैं तो पहले तो अपने देवर ननद के जौन पढ़ाई.
4: हाँ, फिर उनके
3: एकरे बाद जब भावी माँ बनत थी.
4: हाँ?
3: तो एकरे बाद अपने लड़कन के जौन पढ़ावत लिखावत थी और पढ़ाई लिखाई है तब है जब वो पढ़े लिखे रहे.
4: बिल्कुल सही कहा है
3: ना. तो इसलिए जौन बट पढ़ाई लिखाई जौन बहुत ही जरूरी होता है. और कभी ई न कहे कि नहीं हम जौन बहुत देखो पहले के जमाने में बहुत बुढ़ऊ लोग रहते रहे कहे कि अरे का करें घरे के काम तो
4: करेंगे
3: का करें पढ़ लिख के. लेकिन ई नहीं सोचते हैं कि पढ़ लिख के आदमी बहुत कुछ कह सकता है. और आज देखा कि लड़की या चाहे लड़किया कहाँ पर नहीं पहुँचा है पढ़ लिख
4: हर जगह जहाँ देखा वहाँ हर जगह लड़कियों है लड़कों है.
3: हाँ, मैंने लड़कन से लड़की कोनो मामला में
4: कम नहीं है.
3: देखा उन्हें जहाज उड़ावत है और देखा क्रिकेट खेलत है, डॉक्टर इंजीनियर पायलट हर चीज जोन बटे
4: हर क्षेत्र में.
3: हाँ,
4: तो कंधे से कंधा मिला के चलत.
3: हाँ, कंधा से कंधा मिला के चलत है. तो ये कहे के मतलब बटे कि अगर हम अपने लड़का लड़की के पढ़ाई लिखाई बराबर से कराओ तो कतो जायज
4: ना जाए.
3: लेकिन घड़ी सारा करता कि अब बहनियर से विदा लिया जाए तो राम राम बहनियरन.
4: राम राम बहनियरे.

0: पनखट। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi dedicates India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra, Rajasthan. Also inaugurates new terminal building of Jodhpur Airport. Home Ministry designates 23 Pakistan-based individuals as terrorists under UAPA. Centre issues notice to Telegram messaging app over widespread piracy reports. Asked to submit report within 15 days. Bilateral investment agreement between India and Israel comes into force today. IMD says southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during the next 4 days. And in men's cricket, India to face host England in second T20 international in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi dedicated, inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees at Balotra, Rajasthan. These projects spanned multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister dedicated India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Speaking on the occasion, Mr. Modi said this refinery will provide employment to thousands of young people.
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: Prime Minister Modi also laid the foundation stone for phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. Under phase 2, a 41-kilometer north-south metro corridor will be developed from Prahladpura to Todi Mod, connecting the industrial and residential areas of Sitapura and Vishwakarma industrial area through 36 stations. We now take you live to the Prime Minister's address in Balotra.
2: Yahi बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है साथियों। राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है।
1: Earlier, Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that no matter how big or unexpected the challenge may be, the new India neither retreats from its resolve nor slows down its pace. The Prime Minister also inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. In a major boost to the aviation sector, with a particular focus on regional connectivity, Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. This marks a significant leap forward in the country's civil aviation landscape and will further

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का

0: आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना

0: प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत। लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं अजय कुमार यादव और साथी इनके स्वर में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये देवी गीत।

और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं गंगा गीत, कलाकार अजय कुमार यादव और साथी।

लोकगीत कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अजय कुमार यादव और साथियों के स्वर में ये निर्गुण।

इस निर्गुण के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज कलाकार थे अजय कुमार यादव और साथी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ।

धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती के गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहां से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
1: तो ये कब शुरुआत की आपने?
0: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले। और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल ने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
1: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
0: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
1: जी,
0: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
1: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
0: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
0: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अगर भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृ शक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
1: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें, पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अगर भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में

0: था, वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर। जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई। जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा। अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है। और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है, तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हमें पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है, तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले, एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है, एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग, भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति, एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है, उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं, उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला। और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए, और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गाँव अपना परिवार की तरह है, और पूरा देश अपना एक मातृभूमि, अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृ शक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूँ, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की, तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है, और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा हुआ विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई, और पूरे संसार को जिसने, प्रत्येक मनुष्य की मन

0: को विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहनें युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य हैं उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं बहने बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश हो के देश के।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर

0: 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथीन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों का प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनैलिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनैलिटी है, एक इंटरनल पर्सनैलिटी एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गाँव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो अपना जीवन में, पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने का प्रयास करें। जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है।
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने, और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा

0: से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हो, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता, गांववासी को जोड़ा जाता है कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है ऑक्सीजन बाग की, और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमरता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया, और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालू मर्दा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए, और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना, और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा मानें।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast@airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, मेरा नाम है पूजा यादव और मेरे साथ
1: सुधांशु।
0: हम दोनों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम युवानी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी शुरुआत ही चर्चा के विषय से करते हैं, तो आपको बता दें आज का हमारा चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को ये मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में सहकारी समितियों के योगदान को रेखांकित करने और समाज में उनके महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
1: दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रगति का प्रतीक है। एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये मूल मंत्र है सहकारी आंदोलन का। सहकारी समितियां केवल व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह लोगों का एक ऐसा समूह है जो समान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। वैश्विक स्तर पर इसी भावना को सम्मान देने और इसके प्रसार के लिए हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, बात करें इसकी शुरुआत की तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का इतिहास काफी पुराना है। इसे पहली बार साल 1923 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी ICA द्वारा मनाया गया। बाद में इसकी महत्ता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने एक प्रस्ताव पारित किया कि इसे आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाने लगा।
1: इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना था, लोगों को सहकारी समितियों के काम करने के तरीके और समाज में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना था। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, जैसे कि वैश्विक सहकारी आंदोलन और इसके मूल्य समानता, एकजुटता और ईमानदारी को बढ़ावा देना था। सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहकारिता के योगदान को रेखांकित करना है। सहकारिता का महत्व तो आर्थिक और सामाजिक स्तंभ, सहकारी समितियाँ दुनिया भर में आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन का एक बड़ा जरिया रही है।
0: अगर इसके लाभ की बात करें तो समावेशी विकास यानी सहकारिता समाज के सबसे निचले तबके, विशेषकर किसानों, महिलाओं और छोटे कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
1: रोजगार के अवसर प्रदान करना, इसके साथ संकट में मदद करना। दोस्तों, भारत के संदर्भ में भारत में सहकारिता का इतिहास बहुत समृद्ध है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ सहकारिता ही तो है।
0: भारत सरकार ने सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय भी गठन किया है, जिसका विजन है सहकार से समृद्धि। ये जमीनी स्तर पर पूंजी और संसाधनों को सही इस्तेमाल का बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल, और पूजा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़े आर्थिक और सामाजिक संकटों का समाधान निकाला जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ये दिन केवल जश्न मनाने का नहीं है, बल्कि एक न्यायसंगत, टिकाऊ और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण का संकल्प लेने का दिन है। सहकारिता ही वह माध्यम है जिससे सबका साथ, सबका विकास का सपना सच होता है।
0: क्या बात है सुधांशु, वैसे ये हमारा चर्चा का विषय था। सुधांशु, अब बारी है कि हम अपने प्रेरणा पुंज पर बात करें।
1: हाँ दोस्तों, सोचिए कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने किसी वाद्य यंत्र को बजाने का तरीका और उसका पूरा पूरा चरित्र ही बदल दिया। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर एन राजम।
0: उन्होंने अपनी अद्भुत तकनीक से एक पश्चिमी वाद्य यंत्र यानी वायलिन को इस कदर ढाला कि वो शुद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य हिस्सा बन गया।
1: डॉक्टर एन राजम का जन्म वर्ष 1938 में चेन्नई के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता विद्वान ए नारायण अय्यर से ली। हालांकि उनका परिवार मुख्य रूप से कर्नाटक संगीत यानी कि साउथ इंडियन म्यूजिक से जुड़ा हुआ था, लेकिन राजम का झुकाव उत्तर भारतीय यानी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तरफ हुआ।
0: आपको बता दें कि आगे चलकर उन्होंने बनारस यानी वाराणसी का रुख किया और ग्वालियर घराने के दिग्गज गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की शिष्या बनी। एक गायक के सानिध्य में रहने के कारण ही उनके भीतर वायलिन का एक नया रूप देखने को हमें मिला।
1: गायकी अंग की खोज, वायलिन जब गाने लगा डॉक्टर राजम के

0: सबसे बड़ी देन वायलिन में गायकी अंग, जिसको इंग्लिश में हम कहें तो वोकल स्टाइल की शुरुआत करना है। इससे पहले वायलिन पर सिर्फ गत यानी इंस्ट्रूमेंटल धुनें बजाई जाती थी।
1: उन्होंने अपनी कठिन साधना से एक ऐसी तकनीक विकसित की जिससे वायलिन इंसानी आवाज निकालने लगा।
0: दोस्तों, जब वह वायलिन पर धनुष चलाती थी तो उसमें से निकलने वाली मीड यानी माइक्रोटोन्स तान और खटका सुनकर ऐसा लगता था कि कोई ख्याल गा रहा हो।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने साबित किया कि वायलिन सिर्फ एक साज नहीं है बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने वाली एक मुकम्मल आवाज है।
1: उनकी इन्हीं संगीत साधना के लिए भारत सरकार ने उन्हें तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। तो एक संगीतकार के बारे में जानना यकीनन बेहद एक अच्छा अनुभव है हमारे लिए।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
7: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
6: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
7: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
6: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
8: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है शनिवार और आज हम लेकर आते हैं आज की शाम आपके नाम।
9: जब भी भारतीय सिनेमा में एक ऐसे अभिनेता की बात होती है जो होती विलेन के रूप में डरा भी सकता है, गंभीर भूमिकाओं में रुला भी सकता है और कॉमेडी से पेट हंसा हंसा कर दुखा भी सकता है, तो जहन में सबसे पहला नाम परवेश रावल का ही आता है।
8: लगभग 4 दशकों से अपनी कला का लोहा मनवा रहे परेश रावल सिर्फ एक अभिनेता नहीं है बल्कि अभिनय की चलती फिरती पाठशाला है।
9: 30 मई वर्ष 1955 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में जन्मे परवेश रावल को बचपन से ही अभिनय का शौक था। नरसी मोजी कॉलेज से पढ़ाई के दौरान उन्होंने इंटर कॉलेज ड्रामा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और फिल्मों में आने से पहले उन्होंने बैंक में नौकरी भी की, लेकिन उनका दिल हमेशा रंगमंच के लिए ही धड़कता था। गुजराती नाटकों में उनके शानदार काम ने उन्हें पहचान दिलाई और यहीं उनके बॉलीवुड के सफर की नींव बनी।
8: विलेन से लेकर बाबू भैया तक का सफर, परेश रावल ने 1980 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और ब्लॉकबस्टर फिल्म नाम में उनके एक विलेन किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद कई फिल्मों में हमें उन्हें विलेन के रूप में देखने को मिला।
9: लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी रही है। इसमें धोती कुर्ता और चश्मा पहने मराठी लहजे में बात करने वाले बाबू राव गणपत राव आपटे यानी कि बाबू भैया के किरदार को उन्होंने अमर कर दिया। आज भी मीम्स की दुनिया और दर्शकों के दिलों में बाबू भैया का किरदार उतना ही ताजा है।

0: परेश रावल को किसी भी एक जॉनर में बांधना नामुमकिन है। उनके करियर में हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनके फिल्मों में हम देख सकते हैं, जैसे कि वो बायोपिक जैसी फिल्में करते हैं। फिल्म सरदार में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के अभिनय ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। कल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना, तेजा का कैरेक्टर हो या हंगामा, हलचल, मालामाल वीकली या वेलकम में डॉक्टर घुंघरू का कैरेक्टर हो, उनकी कॉमेडी टाइमिंग बेजोड़ रही। और सामाजिक फिल्मों की बात करें तो ओएमजी जैसी फिल्में दर्शकों की आज भी पसंद है।
1: दोस्तों, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ इनकी जुगलबंदी आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। कंटेंट और सामाजिक सरोकार वाली फिल्में, एक समय के बाद परवेश रावल ने ऐसी फिल्मों को भी चुना जो मनोरंजन के साथ समाज को एक बड़ा संदेश देती हैं। अंधविश्वास और धर्म के नाम पर चलाने वाले के खिलाफ खड़े एक आम इंसान के किरदार को उन्होंने इतनी संजीदगी और तर्क के साथ निभाया कि दर्शकों ने उनकी बातों को गहराई से महसूस किया। सहकलाकारों को स्पेस देना, एक महान अभिनेता की पहचान यह भी होती है कि वह पर्दे पर अकेले चमकने की जगह अपने साथी कलाकारों को भी उभरने का मौका दे। चाहे वेलकम में नाना पाटेकर और अनिल कपूर के साथ का सीन हो या अंदाज अपना अपना में आमिर और सलमान के साथ, परवेश रावल कभी दूसरों पर हावी होने की कोशिश नहीं करते थे।

0: दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम अपने कार्यक्रम में प्रश्नावली का भी सेगमेंट लेके आते हैं, तो हमारा कल का प्रश्न था कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की शुरुआत किस युग से हुई थी, जिसका उत्तर है भारतेंदु युग।
1: और बात करें आज के सवाल की, तो आज का सवाल है चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। सवाल एक बार फिर से, चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है।
0: दोस्तों आप हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे yuvvaniald@gmail.com पर, और आप हमें हमारे नंबर पर भी अपना उत्तर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 800-492-6250।
1: नंबर एक बार फिर से 800-492-6250।
0: दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, क्यों पूजा?
1: बिल्कुल।
0: और आज हम अपने सेगमेंट में आज की शाम आपके नाम लेकर के रूप में परवेश रावल को भी लेकर आए थे, और साथ ही साथ हमने सहकारिता दिवस की भी बात की, फिर हमने संगीत, शास्त्रीय संगीत, इन सारी चीज़ों पर भी बात की। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने कार्यक्रम में बहुत सारी वेराइटीज़ लेके आते हैं। तो दोस्तों
1: इसी के साथ मुझे यानी पूजा यादव को
0: और हमें यानी के सुधांशु को
1: दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का

0: लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नजर। आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। रात 9:30 बजे आप सुनेंगे विज्ञान भारती। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे रवि भूषण पांडे की वार्ता, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवाद। शाम 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में नितिन कुमार श्रीवास्तव के गाए गीत और भजन होंगे। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8 बजे। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नज़र। कल प्रातः 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण चरण से बातचीत होगी। विषय होगा जैविक खेती से लाभ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:45 पर आप सुनेंगे डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता, वर्षा ऋतु में बच्चों की आंखों में होने वाला सामान्य संक्रमण। 7:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन होगा। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में अर्पित मिश्रा के गाए गीत और भजन होंगे। 10:05 पर लोक माधुरी कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे संगीता मिश्रा, त्रिभुवन लाल यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत।

बच्चे अपना बाल संघ कार्यक्रम सुनेंगे 11:15 पर, जिसमें कल कल्पना सहाय की वार्ता होगी। समझे अपनी भावनाएं, संवारे अपना भविष्य। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन होगा। दिन में 2:30 आप सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगे मोहनलाल कांसेकार और उनके साथी संगीता राय और सरोज सिन्हा। बाल गोपाल कार्यक्रम में शाम 5:00 बच्चे सुनेंगे नीता श्रीवास्तव की वार्ता, ग्रामीण बच्चों में खेल और रचनात्मकता का विकास। युवा श्रोता अपना युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:15। शाम 6:30 ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम होगा पंचायत घर। शाम 7:31 से आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 6:20 होने को है। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: श्रोताओं, अभी आप

अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने एकदशांशोत्तर शून्य पंच लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयेन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः त्रयोविंशति जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारत सर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। भारत इज़राइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश संधिः अद्यारभ्य आधिकारिक रूपेण प्रवृत्तो जातः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्य भागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृत स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया टी ट्वेंटी अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। अथ

0: वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लाख कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां ऊर्जायां परिवहने उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
1: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः। पूर्वं भारतं 25-26 देशेभ्यः ऊर्जा आयातं करोति स्म, इदानीं तत् 40 देशेषु विस्तारितम्। सः सबलं प्रावोचत् यत् वैश्विकोत्पाते अपि सर्वकारेण वातिन्धनस्य मूल्यं 2,000 रूप्यकाणां स्थाने केवलं 50-900 रूप्यकेषु नियन्त्रितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया युक्रेन संघर्षैः समुत्पन्ने वैश्विक उर्वरक संकटे अपि यूरिया मूल्यं 3,000 रूप्यकाणां स्थाने कृषकाणां कृते 300 रूप्यकेषु एव सुरक्षितम्। अनेनैव सह जोधपुरतः आरब्धया उड़ान योजनया लघु नगराणां सुदूर क्षेत्राणां च कृते वैमानिक संपर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु च नियुक्तानां 450,000 युवकानां कृते नियुक्तिपत्राणि अपि प्रधानमन्त्रिणा वितरितानि। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। एते सर्वे जैश ए मुहम्मद, लश्कर ए तैयबा इत्यादिभिः आतंकवादी संगठनैः सह सम्बद्धाः आसन्। मन्त्रालयेन निगदितं यत् देशस्य नागरिकाणां सुरक्षायै सर्वकारः प्रत्येकं आतंकवादी संजालं विनष्टुं कृतसंकल्पः वर्तते। अद्य उद्घोषितेषु 23 आतंकवादिषु 17 पाकिस्तान देशस्य नागरिकाः, 6 च भारतीय नागरिकाः सन्ति। परञ्च साम्प्रतं इमे पाकिस्तानात् पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीराच्च आतंकवादी गतिविधीन् संचालयन्ति। एते आतंकवादिनः भारत विरोधी कृत्येषु, शस्त्रास्त्र तस्करेषु, निधि संग्रहादिषु संलग्नाः सन्ति। अस्याः घोषणायाः परं राष्ट्रियान्वेषण अभिकरणेन एतेषां वित्तीय स्रोतांसि अवरोद्धुं शक्यन्ते, सम्पत्तिश्च स्वायत्तीकर्तुं शक्यते। अवधेयमिदं यत् 21वीं शताब्द्याधिक 2000तमे वर्षे UAPA अधिनियमे संशोधनस्य कार्यान्वयनानन्तरं केन्द्रीय सर्वकारेण 80 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। व्यापक रूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्र वञ्चना वृत्तमाधृत्य

0: पंचो राम राम। कहो चन्नर भाई, का होत बा इस समय खेती किसानी?
1: भैया हो देखा खेती में तो भाई अब खरीफ के मौसम ही बाटे ये में। अब भाई देखा नर्सरी जोन है कुछ पहले डाल दे रहे तो तैयार हो गई रही लगाओ लायक तो का लगवाओ जात भाई।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: और कुछ नर्सरी भैया थोड़ा सा देरम डाले रहे कि भाई पता ना सही आवे कि नहीं आवे पहले वाली। तो भाई देखा कुल मिलाए कि भाई हम किसान भाई इसमें तो भाई यही धान करो पाई में लगा बाटी।
0: बिल्कुल हो सही कह गए भैया, जो नर्सरी की बात करें ना, देखा अब की जोन बा मौसम जोन है तापमान बहुत ज़्यादा रहा।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
0: तो भैया देखा जोन पंच भैया अरे

0: नर्सरी पहले डाल दे रहे ने,
1: हाँ
0: देखा
1: हाँ
0: उसका जमाव जोन है कम है,
1: बिल्कुल
0: तो ये लिए जोन है कुछ किसान भाई बाद में जब देखें कि जमाव कम होत बने, तो भैया देखा जे सजग और सचेत रहा
1: हाँ
0: वो, तो भैया देखा ले आई के बीज जोन है दोबारा डाल दे,
1: जरूर
0: और डाल दे तो भैया देखा वो अब धीरे धीरे तैयार होत बाटे।
1: औधो हो। देखा भाई देखा, अबो तो मौसम कुल मिलाई जुलाई के पहले ही जैसन बा,
0: बिल्कुल
1: थोड़ा
0: बिल्कुल
1: सा भैया परिवर्तन ही भा कि छिटपुट बारिश होत बा अब, लेकिन मानसूनी बारिश समझ में नहीं आवत भाई। तो भाई देखा जौन नर्सरी बाद में लोग भाई डारेन ओ पे सचेत रहें कि
0: बिल्कुल
1: भाई
0: बिल्कुल
1: देखा घामे सिंचाई न करी ओका, रात में भैया देखा हल्की सिंचाई लगातार करत रहन है, जौन से भाई नर्सरी कुछ हद तक ठीक आएगी बाटी। तो भाई अगर हम समझते हैं कि पहले वाली अगर ना साथ देत बा, तो भाई बाद वाली से कुछ न कुछ उसी सुधार करके अपन ओकर रोपाई कर सकें।
0: बिल्कुल भैया देखा हो, हम तो कहब देखा कुछ किसान भाई हरे हैं जो प्रगतिशील हैं जागरूक हैं,
1: हाँ
0: वो तो भैया देखा सीधे बुवाई करत बाटे
1: हाँ हाँ
0: और इसे फायदो बा हो। चन्नर भाई हम कहब देखा राम अभिलाग भैया बाटेन हमरे पड़ोसी ने हो,
1: हाँ
0: देखा वो तो भैया अपन रोपाई ना कराए के सीधे जौन है भैया देखा खेत में ओकर धान का बुवाई कह देते हैं।
1: तो भैया वो भी पले वाला लगाए के अपन जो ना
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: छीट
0: हाँ
1: दे तो ही धान।
0: बिल्कुल भैया देखा छिटको विधि से बोत हैं, और कुछ तो भैया देखा एक मशीन बाटे जौन है अपन सीड ड्रिल से जौन है इहू से अपन बुआई करावत हैं
1: सीधे धान के
0: सीधे धान का भैया, तो उसे फायदा ही रहा था ना हो कि देखा अपन लाइन से लाइन रहा था भैया, और खरपतवार नियंत्रण में भी उसका सुविधा होता है वहाँ।
1: बिल्कुल भाई, ये तो भाई जैसे गेहूं बुवाई होत रही हो वही तरह बतावता है। तो भाई ये तो लाइन से अगर धान के भी बुवाई हो जाए, सीधे बुवाई हो जाए, तो हम समझते हैं कि भाई इन नर्सरी के डाले के झंझट भी खत्म हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जौन नर्सरी में भैया एक संकट ही रहा था भैया, तमाम तरह के रोग लागे के नर्सरी के भाई जल जाए के, तो ये कुल समस्या से भी बचा जा सकत है।
0: बिल्कुल वो भैया अपन धान का देखा जोन खेती बा भैया एहमा जोन है बहुत विशेष रूप से ध्यान देवे के पड़त है, ओकर नर्सरी डालें नर्सरी के भी देख रेख है अच्छे तरीके से करे के चाही, कि अगर नर्सरी देखा गड़बड़ाई के तो भैया खेती जोन है फिर मन समस्या होता है।
1: अवधू देखा कुछ किसान भाई तो भाई एक तरह से भाई नर्सरी के पैदा करके दूसरे के बेच के कुछ आय भी ऐसी कमाते हो
0: बिल्कुल
1: कि
0: बिल्कुल
1: भैया अच्छी प्रजातियन के अलग अलग प्रजातियन के नर्सरी डाल लही और तैयार कर लही। तो भाई जेकर नर्सरी कमजोर आए बे ना आए बे, या कुछ लोग नर्सरी ना डाल पाए कोनो कारण से, तो ऐसे लोग ले के उनसे 2 पैसा कमा लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया हो देखा अपन जोन है खेती किसानी के साथे साथे एक बात और हम कहे जब कि
1: ओ
0: भैया
1: का
0: देखा अपन ये जोन बरसात का समय अब आई बाटन हो,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: एमन भैया देखा वृक्षारोपण करब भी किसान भैया हरन के जरूरी बाटे।
1: बिल्कुल भैया देखा जे सचेत रहें भाई, गर्मी में गड्ढा के खुदाई ओकर भराई कई दे बाटेन।
0: बिल्कुल
1: अब
0: बिल्कुल
1: उनका का करेगा कि माटी जब बैठ जाए ना, चाहे भैया बरसात के पानी से चाहे अपने पानी डाल के ओका जब मिट्टी बैठ जाए, तो हमें पौध के रोपण भैया कर ही हो।
0: बिल्कुल भैया देखा पौध का रोपण करें ये जरूरी भैया देखा, जौन पुरान पेड़ कटत हैं
1: हाँ हाँ
0: उनके जगह पे जौन है नया पेड़ तो जरूर लगावे के चाहिए,
1: बिल्कुल भैया
0: और
1: बिल्कुल
0: साथे साथे भैया देखा अपन पेड़ पौधा लगा रही तो अपन हरा भरा रहे, और हरियाली के साथे साथे अपन पर्यावरण भी जौन है सुरक्षित रहे जौन है।
1: औधू हो। देखा भैया कही आते ना कि भाई धरा पे जितने ज्यादा हरा पेड़ पौधा रही
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उतने ज्यादा भाई वातावरण भी साफ सुथरा रहे, और ये जो मौसम में भाई अनियमितता आएगी वह कि भाई गर्मी के बरसात के ठंडी के जौन समय में जौन बदलाव आए बे, या कम ज़्यादा जौन होत बे, हम समझते भैया साल के 8 महीना तो गर्मी पड़त है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वह 4 महीना में ठंडी भी बा बरसात भी बाटे, ती जौन असंतुलन पैदा भव। तो निश्चित तौर पे भाई अगर सब लोग सहयोग करें, सब पंच भाई ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण पर अगर ध्यान दें, ती जौन असंतुलन पैदा होगी वह भैया ये सुधार हो जाए, तो ऐसी सब लोग खुशहाल रहेंगे।
0: बिल्कुल हो चन्नर भाई देखा बात बत कही तो होत रही मुला, आज पंचायती में का सुनो बत ओके बताओ पंच भैया हरिन के।

0: देखा आत भाई शनिवार आए तो परिवार कल्याण के बात के दिन आए तो पे बातचीत बा कि आयोडीन की कमी से जौन रोग होते हैं स्वास्थ्य पे का कुछ प्रभाव पड़त है तो एका सुनवाओ, लेकिन सोचत है कि भैया एक गौनई पहले सुनवा दे।
1: तो भैया सुनवा दा जौन है अजय कुमार संघाती के जौन है एठे विकास गीत बाटे तो हूँ सुना पंच भैया रे भी सुने।
0: बिल्कुल भैया सुनाओ।

0: देखा हो अजय कुमार और संघातिक गायक गौने ही तो होगी। अब जो उन कहत रहे भैया ना कि देखा परिवार कल्याण के बाद के दिन बाद तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है और जो स्वास्थ्य होता भैया इस विषय पे डॉक्टर आविदा अकमल से प्रवीण मिश्र भैया बतियार बाटे तो आवाए का हम से सुनी और पंचो सुनी।
1: बिल्कुल भैया सुनवा जा।
2: किसान भाई हम कहीं देखा दैनिक जीवन में खेती किसानी एक ऐसा काम है जब कुछ न कुछ हमेशा लगा ही रहता है और यह काम काज के बीच अपने स्वास्थ्य की भी देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण बाटे। खास करके खान पान अगर सही न हो तो तरह तरह के बीमारी होता है। खान पान में देखा भाई एक आयोडीन एक ऐसा तत्व शरीर के जिसके अगर कमी हो जाए तो तमाम तरह की बीमारी उत्पन्न होता है। तो अपने शरीर में आयोडीन की कमी से का रोग हो सकता है साथ ही साथ एक कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह विषय के जानकार हैं आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर आविदा अकमल जी। आप यह विषय के जानकार वरिष्ठ सलाहकार केंद्रीय चिकित्सालय में कार्यरत हैं। आपका मेरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। सबसे पहले अपने किसान भाई के लिए ये जानब की जो आयोडीन बाटे ये का बाटे और एक अपने स्वास्थ्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान है।
3: हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे किसान भाइयों को और दूसरे श्रोता गणों को ये बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि आयोडीन का क्या महत्व है। और चीज़ों की तो सभी को जानकारी है पर आयोडीन का क्या महत्व है खाने में वो लोगों को पता नहीं है, खास करके जो गांव में रहते हैं। तो आज मैं आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियाँ बताना चाहूँगी। तो आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो कि मिट्टी में मिलता है और समुद्री जो पदार्थ होते हैं उसमें मिलता है। तो अगर आयोडीन हम नहीं खाते हैं जितना हमें चाहिए उससे क्या होता है कि हमारी थायराइड एक ग्रंथि होती है जो कि गर्दन के सामने होती है उसमें एक हार्मोन बनता है जो कि हमारी जीवन के लिए अति आवश्यक है। वो हार्मोन हमारे जो हम खान पान खाते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है वो अगर हार्मोन ना रहे तो वो ऊर्जा नहीं मिल सकती है। तो इससे ये दिक्कत होगी कि आपका शरीर ना आप बिल्कुल थके से रहेंगे, आप मोटे हो जाएंगे क्योंकि आप क्या है ये हार्मोन ही आपके खाने पाने से ऊर्जा देता है खान पान का। तो ये सारा खान पान ही आपके बॉडी में आपके शरीर में जमा होने लगेगा, आपको मोटापा हो जाएगा, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आयोडीन जिन तत्व मिलता है वो आप लिया करें। तो मैं बताना चाहूँगी कि आयोडीन सबसे पहले तो ये जानकारी नहीं थी इसीलिए सरकार ने इसके लिए आयोडाइज्ड नमक आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वो आयोडाइज्ड होता है आयोडीन उसमें होता है तो केवल उसी का सेवन करें आप लोग। बहुत से लोग सेवन करते हैं सेंधा नमक केवल खा रहे हैं तो सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता है। तो आपसे विनती है कि ये खाएं लेकिन आपको ये भी बताना बहुत अति आवश्यक है कि किन किन खानों में ये आयोडीन मिल सकता है। जैसे आपको सब्जियों में हरी सब्जियां में मिलता है, बीन्स होती हैं उसमें मिलता है ये, फिर ये डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध मिलता है, दही होती है और चीज़ होता है। गांव में अगर चीज़ नहीं है तो दूध और दही का सेवन कर सकते हैं। अंडे में बहुत अधिक मात्रा में ये आयोडीन मिलता है। कुछ फलों में जैसे कि सेब में है, नाशपाती आप खाते होंगे, स्ट्रॉबेरी तो अगर नहीं खा पाते हैं तो सेब और नाशपाती में ये मिलता है।
2: डॉक्टर साहब हम अपने किसान भाई से सबसे पहले तो जानना चाहब कि देखा ऐसे नमक अगर बात आवत हो तो भाई गांव गिराव में देखा जाता है कि भी अभी भी लोग भाई जो खड़ा नमक होता है वो कर इस्तेमाल करते हैं पीस के जौन है और भाई अब तो पीसा पिसान भी नमक आ तो जो खड़वा नमक बटे ये कितना लाभप्रद है अपने किसान भाई के लिए।
3: मैं ये कहना चाहूँगी कि ये खड़ा नमक अभी भी

0: लोग खा रहे हैं, परंतु ये खारा नमक ना खाएं, ये केवल आयोडीन युक्त नमक। जाएं दुकानदार से ये बोलें कि मुझे आयोडीन युक्त नमक चाहिए। अगर आयोडीन नहीं है तो अपना शरीर नहीं है और जीवन ही नहीं होगा अगर आयोडीन नहीं है।
1: तो भाई जो प्रमुख सब्जियां हैं जहाँ अधिक से अधिक मात्रा में तत्व पावा जाता है ओके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
0: हाँ, बात यह है कि सब्जियां जिसमें कि अधिक मात्रा में ये पाया जाता है वो सब्जियां हैं बीन्स। बीन्स में हर तरह की, आप बीन्स सेम हो गई, फ्रेंच बीन्स हो गया, बोड़ा हो गया, ये सब आपको खाना चाहिए। फिर पालक हो गई, ये बहुत ही कॉमन सब्जी है, तो ये आप खा सकते हैं, इसमें मिलता है ये।
1: आयोडीन जो तत्व बाटे जैसे अब कोनो आदमी के कोई किसी भी व्यक्ति में अगर एकर कमी होत बाटे तो कैसे एकर लक्षण बाटे कि पता लगावा जा सकत कि व्यक्ति के अंदर जो है आयोडीन की कमी बा और उसे का का कमी से ओके समस्या उत्पन्न हो सकत है, एक बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे किसान भाइन के बताओ।
0: हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि समय रहते लोगों को पता चल जाए कि उनके शरीर

0: जानकारी दें।
1: हाँ, बात यह है कि सब्जियां जिसमें कि अधिक मात्रा में ये पाया जाता है वो सब्जियां हैं बीन्स। बीन्स में हर तरह की, आप बीन्स सेम हो गई, फ्रेंच बीन्स हो गया, बोड़ा हो गया, ये सब आपको खाना चाहिए। फिर पालक हो गई, ये बहुत ही कॉमन सब्जी है, तो ये आप खा सकते हैं, इसमें मिलता है ये।
0: आयोडीन जो तत्व बाटे, जैसे अब कोनो आदमी के कोई किसी भी व्यक्ति में अगर एकर कमी होत बाटे तो कैसे एकर लक्षण बाटे कि पता लगावा जा सकत कि व्यक्ति के अंदर जो है आयोडीन की कमी बा और उसे का का कमी से ओके समस्या उत्पन्न हो सकत है, एक बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे किसान भाइन के बताओ।
1: हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि समय रहते लोगों को पता चल जाए कि उनके शरीर में आयोडीन की कमी हो रही है। तो इसके लक्षण, सबसे पहले तो लक्षण है कि गर्दन के सामने की जो ग्रंथि है वो थोड़ा सूजन उसमें आने लगता है। जैसे ही सूजन आपको दिखे तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाएं और इसे दिखाएं। तो ये तो हो गई आपको देखने वाली बात, लेकिन यदि आप उस पर नहीं ध्यान देंगे तो ये ग्रंथि बढ़ती जाएगी और आपका शरीर मोटा होता जाएगा और आपको क्या, बिल्कुल थकान, काम में मन नहीं लगना, दिन भर पड़े रहना, फिर आपके बिल्कुल शरीर में सूखापन आ जाएगा, बाल बिल्कुल रूखे सूखे बेजान हो जाएंगे। और प्रायः ये रोग स्त्रियों में अधिक होता है, तो मैं स्त्रियों को कहना चाहती हूँ कि यदि अगर वो गर्भवती हैं तो ये सबसे पहले जाके ये जो ग्रंथि है थायराइड की, उससे निकलने वाले हार्मोन हैं उनका, गर्भ की अवस्था, जैसे ही वो गर्भवती हों जाएं अपने पास के अस्पताल में और इनका अब जांच सारे डॉक्टर करवाते हैं, तो वो हार्मोन की जांच कराना है। यदि गर्भवती महिलाएं, बहुत सी मैं देखती हूँ कि वो जाती नहीं हैं, अगर उनको खून की कमी हो जाएगी तो भरपूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तो आती है उसमें भी, लेकिन आयोडीन की कमी हो गई तो उनका बच्चा ऐसा होगा कि वो बच्चा दिमागी तौर से हमेशा के लिए वो उसकी दिमागी कम हो जाएगा दिमाग, और वो बच्चा आगे पढ़ लिख नहीं कुछ सकेगा। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है स्त्रियों से, खासकर वो आयोडीन पर ध्यान दे ताकि अपना जांच समय रहते करा ले, ताकि वो डॉक्टर आपको बता सके कि हाँ भाई कभी आयोडीन की कमी है तो उस समय जब गर्भवती हैं तो उस समय इनको थायरोक्सिन की एक टैबलेट आती है उस हार्मोन की, तो उस टैबलेट को देने से आपका जो गर्भ में पल रहा बच्चा, केवल आपको ही नहीं आपके बच्चे को भी आयोडीन की बहुत अति आवश्यक है, और आयोडीन की मात्रा गर्भ अवस्था में अधिक लेनी चाहिए। जैसे आप गर्भवती नहीं हैं उससे अधिक आयोडीन चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा भी, वो गर्भ में पल रहा बच्चा आयोडीन है। तो वो मानसिक रूप से अगर बिल्कुल ही आपने नहीं दिखाया तो एक ऐसा रोग होता है जिसको क्रिटिनिज्म कहते हैं, तो वो बच्चा तो दिमागी तौर से तो ही बिल्कुल कम रहेगा, कम दिमाग का बिल्कुल होगा, शारीरिक तौर से भी वो बड़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल छोटा रहेगा, शारीरिक भी ग्रोथ उसका नहीं, शरीर भी नहीं बढ़ेगा। तो अतः मुझे ये, बस मैं ये कहना चाहती हूँ गर्भवती महिलाएं जैसे ही पता चले कि वो गर्भवती हैं तो वो चिकित्सक के पास जाएं, वो आपकी ये जांच कराएंगे और समय रहते आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। और साथ ही जो बड़े लोग हैं वो, उनको अगर ये सब लक्षण आ रहे हैं, बाल सूखे रूखे बेजान हो रहे हैं, मोटापा आ रहा है, बिल्कुल थकान लग रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो तुरंत जाएं अपने पास के चिकित्सालय में, अपने थायराइड ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है वो आपका चिकित्सक आपका चेक जांच करेगा, फिर उसका आपका इलाज हो जाएगा। यदि आप नहीं जाते हैं तो ये समस्या बढ़ती जाएगी और अंत में आपको क्या होगा, बहुत ही कठिनाई का सामना, क्योंकि बिना इस हार्मोन के जीवन ही नहीं संभव है।
0: जी, हम जानना चाहें कि जैसे आप बताएं कि थायराइड की समस्या जो है आ सकता है आयोडीन से जो है, अगर केहू की इस तरह के समस्या थायराइड का आ गया बाटे
1: जी
0: तो खान पान से एका कितना नियंत्रण किया जा सकता, खासकर जो आयोडीन युक्त जो पदार्थ हैं जो भोजन है ओके माध्यम से।
1: पहली चीज तो अगर किसी को समस्या आ गई, जांच हो गई, तो भोजन के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। आयोडीन का सप्लीमेंट मिलता है बाजार में, डॉक्टर आपको बताएंगे विटामिन की टैबलेट में भी आयोडीन होता है,

0: और ज़रूरत पड़ने पर वो थायरोक्सिन की टैबलेट भी देंगे कि आपका भरपूर थायरोक्सिन जब हो जाएगा, क्योंकि ग्रंथि को आयोडीन से हार्मोन बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए आपको आयोडीन की सप्लीमेंट दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आयोडीन युक्त नमक खाएं, प्लस बाहर से आयोडीन के सप्लीमेंट, जैसे बच्चों के लिए भी आता है, जैसे आपका बच्चा 1 साल के नीचे है उसके लिए भी बाज़ार में मिलते हैं आयोडीन सप्लीमेंट खाना, तो उसको भी आप घोल के खिला सकते हैं बच्चे को। बड़े लोग हैं उनके लिए भी आयोडीन सप्लीमेंट आता है, आपके चिकित्सक आपको बताएंगे क्या क्या खाना है। साथ में आपको थायरोक्सिन की कमी अगर चिकित्सक देखते हैं तो वो हार्मोन की टेबलेट भी देंगे।
1: बिल्कुल, ये तो महत्वपूर्ण बात बताएं। एक चीज़ जानना चाहूँ, देखो बच्चों में अगर इस तरह की समस्या है, तमाम तरह देखा प्रचार प्रसार भी चला था कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो तमाम तरह समस्या हो सकता है, बच्चा मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकता है। अगर इस तरह की कोनो समस्या छोटे बच्चे में पाई जाती बटे तो उसका किस तरह से आगे चल के सुरक्षित किया जा सका, तो ओके बारे में थोड़ा बताऊँ किसान भाई के।
0: हाँ, सबसे पहले तो पहला है कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसका जो थर्ड जो अंतिम के 4 सप्ताह या 6 सप्ताह होते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसके मस्तिष्क का, दिमाग का विकास होता है उसी समय। तो सबसे पहला तो ध्यान गर्भवती महिला, बच्चा जब होता है उसके बाद उसकी जांच करनी पड़ती है कि उसके अंदर आयोडीन की कमी है या नहीं। उसके लिए थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उसकी जांच की जाती है। आप तुरंत अगर बच्चे की जांच करा लेंगे उसके जन्म के बाद, तो भाई बच्चा आपका बच सकता है, उसकी मानसिक नहीं स्थिति कम होगी।
1: बिल्कुल
0: परंतु आप समय रहते नहीं कराएंगे तो फिर वो हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए मंद बुद्धि का हो जाएगा।
1: बिल्कुल, एक चलत चलाते एक अंतिम सवाल ही बाटे कि
0: जी
1: देखे पुरुष और महिला का जो मात्रा में अगर कमी से महिलाओं में ज़्यादा अगर थायराइड पाया जाता है पुरुषों में कम, एकर का भ्रांति बाटे कि कमी से का पुरुषों में कम होता है या महिलाओं में।
0: हाँ, महिलाओं में ये अधिक होता है। कारण ये भी है कि पुरुष तो खाना भोजन सही रूप से ले लेते हैं, महिलाएं सही ढंग से खाना लेती नहीं है। पहले पूरे घर वालों को खिला लेंगी, उसके बाद खुद खाएंगी। दूसरी बात ये है कि ये आनुवांशिक होता है कि महिलाओं में ये अधिक पाया जाता है, ये तो जानी मानी बात है। इसलिए महिलाओं से खास विनती है कि महिलाएं अधिक ध्यान दें इस पर।
1: किसान भाई देखा आयोडीन के कमी से का रोग हो सके तो इसे कैसे पूर्ति की जा सके थे कि बिना इतनी बढ़िया जानकारी डॉक्टर आबिदा अकमल जी ने निश्चय रूप से लाभकारी है आपके हमारे कार्यक्रम में जानकारी दे खातिर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद श्रोता गणों, आपको भी धन्यवाद।
2: हाँ भैया,
1: भैया।
2: देखा परिवार कल्याण के बात में आयोडीन की कमी से होने वाले रोग एवं स्वास्थ्य, ये विषय पर डॉक्टर आविदा अकमल से प्रवीण मिश्र भैया बतियात रहे हैं। तो भैया देखा कितना नीक बत कही रही, कितना ज्ञानवर्धक बत कही रही।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अगर एका किसान भाई सुने हुई ही तो निश्चित तौर पर गुणे भैया एका, और इस तरह के कोनो भी समस्या ना होए ओकरे लिए बहनी जैसे बताई हैं खान पान पर ध्यान दें, विशेषकर भाई जवन आयोडीन युक्त नमक की बात किया जाते कि भाई देखा जवने नमक में आयोडीन होए वो नमक के इस्तेमाल अगर किसान भाई करही तो निश्चित तौर पर इस तरह के जवन पूर्णता रोग हो जाते हैं,
1: बिल्कुल
2: कमी
1: बिल्कुल।
2: से जवन रोग हो जाते हैं, इनकर होए की संभावना बहुत कम हो जाते हैं।
1: बिल्कुल
2: कहाँ से
1: बिल्कुल।
2: भाई देखे में ये आवत है कि भाई बहुत सुधार होगी, लेकिन अब भी गांव देहात में वो खड़ा वाला नमक तो होत ना कि भाई वो भी अब भाई अभी कुछ लोग जो बना इस्तेमाल कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर भाई देखा इस तरह के खड़ा नमक के इस्तेमाल से बचे परे, और जो आयोडीन युक्त नमक जो पैकेट वाला नमक आवत है ना भाई वही नमक के इस्तेमाल करी तो इस तरह के समस्या से काफ़ी सुधार हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, यानी कि इलाज से ज़्यादा बढ़िया बचाव होता है।
2: बिल्कुल।
1: तो अगर भैया देखा जागरूक रही हैं कोनो भी चीज़ के प्रति जोन है, अपने स्वास्थ्य के प्रति, चाहे भैया देखा खेती किसानी के प्रति जोन है, अगर जागरूक हैं और सचेत हैं भैया, तो हर चीज़ हर काम जोन है समय से और बढ़िया तरीके से होता रहेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया। कुछ तू सचेत कह ना कि भैया किसान भाई सचेत रही तो हर चीज समय से होए।

0: बिल्कुल
1: कोनो या कुछ कहत रहे कोनो सूचना उचना हो बतावे
0: बिल्कुल हो भैया देखा ये सूचना जवन बा भैया ने देखा खेती किसानी से जुड़ा बा और भैया सरकार भी अपन हम किसान भैया बहनी बदे जौन है समय समय पे तरह तरह के योजना परियोजना लाया होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब मुला जरूरत बा भैया की एक जानकारी हो
1: बिल्कुल
0: बिना जानकारी के भैया एकर फायदा न मिले
1: ना।
0: तो किसान भैया हरन के लिए जौन है देखा सरकार जौन है अपन किसान आईडी फार्मर आईडी जौन बा भैया देखा ये समय जौन है भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार भैया देखा हर किसान भैया हरन के जेकरे नाम से खतौनी बा
1: अच्छा
0: ओकर भैया देखा फार्मर आईडी बनत बा
1: हाँ।
0: और इसे भैया देखा तरह तरह तमाम किसान भैया हरे के फायदा बाटे उसे उनका खाद भी मिले जौन है
1: हाँ।
0: साथे साथे भैया देखा जौन सरकार के द्वारा कृषि विभाग में भैया योजना चलाई जात बाटे
1: हाँ भाई छूट पे बीज वगैरह भी आवत रहा
0: था बिल्कुल भैया बीज है यंत्र है दवा है ये सब भैया देखा उनका जौन है अपन किसान आईडी बनवाए लें और भैया देखा एक बनवावे में बहुत सरल तरीका बा
1: हाँ।
0: अपन खतौनी और आधार और मोबाइल नंबर
1: अच्छा
0: भैया ले आए के हर ब्लाकन में जौन है राजकीय कृषि बीज भंडार बाटे
1: हाँ।
0: वहाँ देखा कृषि विभाग के कर्मचारी लोग बैठत हैं भैया
1: उन्हों
0: से बनवाए सकत हैं और साथे साथे भैया देखा जितना भी सीएससी सेंटर चलत बाटे वहूँ भैया ये सुविधा बा किसान भैया हरे अपन खतौनी और आधार और मोबाइल नंबर ले आए के भैया वहाँ अपन किसान आईडी यूनिक कोड बा भैया एक बनवाए सकत हैं।
1: भैया ये बताओ कि जैसे जौन जनसेवा केंद्र तरह तरह बाटे जगह जगह पे खुला बाटे
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: हम समझते हैं भाई जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी अपन वो किसान आईडी बनवाए सकत हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल अपन किसान आईडी बनवाए सकत हैं जनसेवा केंद्र पे जाके।
1: एक चीज जौन बताया ना कि खतौनी चाहे आधार जौन बाटे ओकर भाई चाहे और मोबाइल नंबर जौन भाई उनका समय समय पे कोनो भी अगर सूचना बात उनका दिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया वो मोबाइल पे ओटीपी जात है
1: हाँ।
0: ओटीपी उनका बताए दी है तो उनका फार्मर आईडी जो है
1: हाँ।
0: वो बन जात है।
1: तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात बा हम समझते हैं कि भाई जवन खाद वगैरह के लिए किसान भाई के समय समय पर समस्या हो जाता है तो अगर ये आईडी बन जाए तो उनका से के खाद के लिए में भी सहूलियत मिले।
0: बिल्कुल भैया खाद के सुविधा रहे जौन है और साथे साथे जौन कृषि यंत्र हैं भैया देखा और उहो के उनका जौन है उनका फायदा मिले और साथ बीज भी है उनका फायदा मिले जौन है।
1: काहे मतलब कि भाई अब खेती बाड़ी करत बाटे तो अपन एक किसान के जौन है आईडी बन जाए तो भाई देखा वो आगे बहुत तो काम में आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ये बात पे भाई देखा किसान भाई चेतें और उनमें कोनो तरह का लापरवाही न करें समय पे अपन आईडी बनवा ले ही तो एक काम से मुक्ति मिल जाए और समय समय पे एकर जगह जगह पे जरूरत पड़े
0: बिल्कुल
1: तो भाई ऐसा जगह पे जाए के अपन आईडी बता दे ही तब उनका जाए के जौन भी सरकारी सुविधा बाटे वो मिल पाए।
0: बिल्कुल भैया जौन है जैसे अब किसान क्रेडिट कार्ड किसान भाई हरन के बनवावे के है तो उन्हों भी जौन है उनका फार्मर आईडी के जरूरत पड़त है।
1: अच्छा
0: तो भैया ऐसे अपन किसान आईडी बनवाए ली हैं तो उनका केसीसी लेवे में भी सुविधा हुई
1: हाँ।
0: और साथे साथे जौन भैया देखा अपन कृषि यंत्र भी ले सकत हैं उहो अपन जौन है किसान भाई हरे की सुविधा मिलत रहे।
1: भैया हो देखा जैसे एकदम खूब भाई रहा ना कि आधार कार्ड बनवावे के रहा तो लोग जौन है जल्दी जल्दी आधार कार्ड बनवा ले हैं तो ओकर सुविधा मिलत है वैसे ही किसान के जौन आईडी बतावता है ना अगर ही बनवा ले ही तो कतौ भी कोनो भी बैंक में सुविधा ले चाहिए तो भाई अगर खेती बाड़ी संबंधित सुविधा ले चाहिए जैसे बताए ना केसीसी तो भाई एक अगर लाभ ले के बाद तो किसान आईडी हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ तो भाई हमें कोनो तरह की लापरवाही न करें कहें से भाई अगर देर करें तो उनका नुकसान हो सकत है।
0: बिल्कुल भैया जौन है एका जितना भी कृषि विभाग में योजना चलत है
1: हाँ हाँ
0: किसान बदे
1: हाँ
0: उसे भैया देखा ये फार्मर आईडी से जोड़ देते हैं और साथे साथे भैया देखा अपन जितना भी रकबा बाय
1: हाँ
0: वो भैया जौन है वो आईडी में जौन है जुड़ी जात बा
1: अच्छा
0: हमारे
1: अच्छा
0: आधार से भी लिंक हो जात बा हमार खतौनी
1: हाँ हाँ
0: तो भैया ये बहुत अच्छी चीज़ बा सरकार का बहुत बढ़िया पहल बा कि अपने किसान के

0: जवन भैया देखा अपन फार्मर आईडी बनवा ली हैं, किसान आईडी, तो उनका तरह तरह के विभाग द्वारा जवन भी समय समय पे योजना परियोजना चलत बाटे ओकर फायदा उठा सकत हैं।
1: हम समझते हैं कि भैया जैसे इसे आईडी से पता चल जाए कि कौन किसान भाई के कितना रकबा बा,
0: बिल्कुल
1: कितना भैया उन्हें बीज के कितना खाद के जरूरत पड़े, तो वही हिसाब से भाई एक तरह से विभागीय जोन कृषि विभाग के लोग बाटे उनका जानकारी भी हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात भाई।
0: अगर भैया हम कहीं तो देखा जोन अपन राज्य की कृषि बीज भंडार है, कृषि रक्षा इकाई है, वहाँ भैया देखा जानकार लोग बैठे थे, अपने ब्लॉक पे जाए के जोन है एक जानकारी ले लें और साथे साथे अपन खतौनी आधार मोबाइल ले आए कि भैया देखा अपन फार्मर आईडी जोन है किसान आईडी बनवा सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया, इनमें कोनो देर न करें, एक अच्छे तय और सही जगह पर जाए के अपन जोन फार्मर आईडी बनवा लें जो उन्हें उनका सुविधा मिल सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एक चीज़ और कहे गए कहे का याद दिलावे भी किसान भाई के भाई देखा खेती बाड़ी के बात तो होत रही ना भाई, तो भाई साथे साथे जौन पशुपालन के बात किया जात है ना, जौने से भैया दो पैसा नकदी रोज मिल सकत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ओह पे भी किसान भाइन के ध्यान देख बे, अच्छी नस्ल के हम कहते हैं जानवर अगर पालें ओकर अच्छे से परवरिश करें, ओका खियावें पियावें, ओका बांधे छोड़े की व्यवस्था सही रखें, ओकर स्वास्थ्य अच्छा रहे पे बराबर ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर जौने उद्देश्य के लिए ओका पलही तो भैया दो पैसा रोज उनका मिलत रहे।
0: बिल्कुल वो सही कह गया भैया, देखा कहीं के बने कि खेती और बारी, तो खेती के साथे साथे बारी भैया अगर खेती हो तो बता पशुपालन जरूरी बा।
1: हाँ,
0: कहें से कि जौन खेत से देखा चारा मिलत है वो पशुअन के बदे, और पशु से भैया देखा जौन गोबर हो तो उसे खाद तैयार हो, तो कहीं न कहीं जौन भैया वही दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
1: काहे ना काहे ना,
0: तो भैया खेती किसानी के साथे साथे अपन पशुपालन भी कह सकते हैं, बकरी पालन है, मत्स्य पालन है,
1: कही सकते भैया।
0: बिल्कुल भैया, ये सब जौन है देखा अपने खेती किसानी से जुड़ा है, और जौने से भैया देखा किसान भैया हरे अगर ये सब कई के जौन है लाभ उठा सकते हैं।
1: एक चीज और भैया कि भाई देखा आजकल तो भाई गांव देहात में भी भाई जगह जगह पर डेयरी खुल गई बाटी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पहले यही समस्या रही कि भाई दूध ज़्यादा पैदा कर लिए तो कब बेची कहाँ, भाई घरे घरे जाए के बेचे में थोड़ा सा अटपटा लागत रहा किसान भाई के।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन अब तो देखा जगह जगह भैया कि एकरे लिए क्रय केंद्र खुला बाटे, किसान भाई यहाँ तक यह सुविधा भैया कि जितना तू शुद्ध दूध ले जाबे, जितना उनमें भैया फैट की मात्रा रहे वही फैट की मात्रा के हिसाब से तुम्हें ओकर भाव मिले।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और पैसा भैया हफ्ता में चाहबे तो हफ्ता मिल जाए, जैसे चाहबे भैया जैसे तुम्हें जरूरत होए वही हिसाब से भैया अपन पैसा लेन देन कहके।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पशुओं के भी स्वास्थ्य के ध्यान दे के उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था करा, दो पैसा जमा और खर्च भैया खेती बाड़ी में लागत है वो उसी काम चल जाए।
0: बिल्कुल भैया देखा पशुपालन से भैया देखा लाभ है, लाभ बाहो जौन है दूध है भैया, दूध से दही भी बना सकत हैं, क्रीम है, मट्ठा है, घी है, तो भैया कहीं न कहीं अगर जे भी पशुपालन किसान भाई हरे करत हैं तो भैया उका अगर बढ़िया तरीके से बड़े पैमाने पे करत हैं तो उसे फायदा हो।
1: देखा हो कभो कभो न उधो भैया ये होते ना कि गांव में कुछ ऐसे लोग बाटे जे कि घी तैयार करते हैं घर में और वो प्रसिद्ध बाटे भैया दूर दूर तक।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो वो जितना उत्पादन कर लिए थे ना घी के उनकर एकदम समझा कि लोग लाइन लगाए रहे थे कि उनके यहाँ के चूंकि भैया वो फेमस बाटे।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: वो प्रसिद्ध हो चुका बाटे कि इनके यहाँ शुद्ध देसी घी मिल जाए, तो भाई ये काम करके भी अच्छा लाभ कमावा जा सकता है।
0: बिल्कुल भैया देखा बात बत कही तो होता रही मुला हम कहब आवा पंचायती में एक ठे अजय कुमार यादव और संघातीन के जोन है एक ठे और गौनई हुई है, फिर आगे बात बत कही होत रहे।
1: बिल्कुल भैया सुनावा
0: तो सुना।

0: गया, देखा अजय कुमार यादव संघातिक गाई गौनई तो हो गई। अब एक चीज भाई किसान बहन की कहे कि भाई देखा जेकरे पास भाई कौनो बाहर का आमदनी बाटे चला वो तो ठीक बाटे भाई, बीच बीच में उनका सहयोग मिल जाते खेती बाड़ी के मौसम में, लेकिन जे किसान बहन के पास केव कमैया ना बाटे भाई, उनके हाथ में दो पैसा हमेशा रहा, ओकरे बा ओकरे साथ से भाई एक चीज पे ध्यान दे पड़े जो नकदी फसल बाटी, विशेषकर जौन भाई तरह तरह के मौसम में सब्जियन के खेती होत न भाई, देखा सब्जियन के अगर खेती किसान भाई कई ले ही हम कहते हैं कि भाई अपनो खाएं उही में जौन बचे भाई वह बाजार में बेच दें, उसी दुई पैसा रोज आवत रहे तो उनकर उत्साह भी बढ़े भैया खेती बाड़ी करे में, उनकर जौन जरूरत होत है वह पूरी होत रहे, और लड़कियन के भाई पढ़ाई लिखाई काम या कोनो समय पे कोनो जरूरत पड़ी भैया वहू के काम उनकर चलत रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखा हो अब ये समय देखा जो ना अपन गर्मी बा और अब तो धीरे धीरे भाई देखा बरसात का भी समय है, मूला जौन है अगर पानी ना बरसत है तो भैया जौन अपन किसान भैया हरे जौन सब्जी की खेती कर रहे हैं, चाहे भैया भिंडी हो नेनुआ हो तोरई है भैया देखा कद्दू है, ये सब के भैया फसल के जौन है देखा समय समय पे सिंचाई जौन है जरूर करता है।
0: बिल्कुल भैया, पहले तो भाई पौध के अच्छे तरह से अच्छे प्रजात के पौध ले आवे, जौन भाई कहे ना कि भाई कुछ मान्यता प्राप्त बीज के भाई दुकान होती,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भाई वहाँ जौन कहीं वो जौन प्रजात के चाहिए वो प्रजात के बिया मिल जाए, तो पहले ओका लिया है कि भाई सही बिया के बुआई करें, कहे से होत का जब फल लागे लागत तब पता चलत भैया तो अच्छी प्रजात के ना बाटे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो भाई वही समय हाथ मलिश तो ना काम चले ना, तो पहले बिया के शुद्धता पे ध्यान दे के
1: बिल्कुल
0: कैसे वो बिया के तैयार करे पौध तैयार करके जो ने आगे चल के भैया उनका अच्छा उसी फल मिल पाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
0: एक चीज और कहब कि भाई देखा जौन समय समय पर भाई तरह तरह के किसान भाइन के भाई पंचायत घर के माध्यम से कृषि जगत के माध्यम से जानकारी दिवाई जात रहा थे, तो भाई वो जानकारी ओका लेत हैं, लेकिन और कुछ सुझाव अगर दे चाहते हो तो भाई एक नंबर बतावत बाटी, ये नंबर पर दे सकत हैं, तो नंबर बा 800-49-26-250, यही नंबर पे व्हाट्सएप नंबर आ भैया, यही नंबर पे अपन वो प्रतिक्रिया भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया भैया, देखा हो एक भैया किसान भैया रहे जौन भी अपन सुझाव देवे को हो ये नंबर पे जौन है भेज सकते हैं।
0: अब देखा धीरे धीरे चलो के समय हो गया, अब पंचन से विदा लिया जाए और चला जाए, अच्छा तो पंचो राम
1: राम राम, राम।

से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2026 की तीन दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।

0: भारत की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता हूँ।
1: अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय लिए, उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। श्री मोदी ने आज राजस्थान में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया।
2: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
1: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज महोबा में श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना है, वह अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई गड़बड़ी की है तो मेरा इतना ही कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को 2-2 पाली तथा आज 1 पाली में समाप्त हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत

0: प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आज जनभवन लखनऊ में मैंगो बायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए। इस अवसर पर उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
2: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच कर रही हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार होंगे हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
1: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में कानपुर और आज सुबह टूंडला में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 दिवसीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम, इसमें लीजिए सुनिए रवि भूषण पांडे की वार्ता, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवाद।
4: महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का सफर 1917 से 1936 तक का रहा। हमें उनके कहानी में उस दौर की करवट बदलती हुई राजनीति, समाज और संस्कृत सभी का यथार्थ परिचय देता है। उनकी कहानियां हालांकि इतिवृत्तात्मक, उपदेशात्मक एवं आदर्शवाद से युक्त है। अपनी लगभग 300 कहानियों में प्रेमचंद ने समकालीन उत्तर भारत का सजीव छवि का अंकन किया है। जैसे बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा या उपदेश कहानियां। प्रेम प्रसून कहानी संग्रह की भूमिका में स्वयं प्रेमचंद ने लिखा है कि हमने इन कहानियों में आदर्श को यथार्थ से मिलाने की चेष्टा की है। समय के साथ उनकी कहानियां भी विषय वस्तु, लेखक की

दृष्टि, भाषा एवं शिल्प निरंतर परिवर्तित होते देखे जा सकते हैं। यहाँ आकर कथानक का घटनाचक्र गौण हो जाता है, अपित कहानी की मूल संवेदना या थीम सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। नशा, पुष की रात और कफन जैसी कहानियाँ उनकी बदलती दृष्टि का ताकतवर उदाहरण है। इन कहानियों में प्रेमचंद का यथार्थवादी कलाकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ जान पड़ता है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और उनकी गणना विश्व के महानतम उपन्यासकारों में होती है, लेकिन सामाजिक यथार्थ और जन समस्याओं का चित्रण तथा गहरी जनसंपृक्त की दृष्टि से उनकी कहानियां भी बेजोड़ है और पूर्ण कलात्मकता लिए हुए है। यथार्थवाद की अभिव्यक्ति जैसे उपन्यास में हो सकती है, वैसे किसी दूसरी विधा में नहीं हो सकती, कहानी में भी नहीं। यथार्थवाद यथार्थ के चित्रण में जिस समग्रता की मांग करता है, उसे कहानी का सीमित कैनवास पूरा नहीं कर सकता। यही कारण है कि यथार्थवादी दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यास जितने महत्वपूर्ण हैं, कहानियां नहीं। प्रेमचंद ने 300 के लगभग कहानियां लिखी है जो मानसरोवर की 8 भागों में संकलित हैं। उनमें से प्रतिनिधि कहानियों की चर्चा ही यहाँ की जा सकती है। प्रेमचंद की कहानियों की विषय वस्तु लगभग वही है जो उनके उपन्यासों में थी। अपनी आरंभिक कहानियों में वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की रचना करते प्रतीत होते हैं, अर्थात यहाँ वे समस्याओं के यथार्थवादी चित्रण से रचना का आरंभ करते हैं और उसे आदर्शवादी समाधान तक ले जाते हैं। सामाजिक दायित्व को भावुकता से ज्यादा तवज्जो देने के कारण प्रेमचंद अंतर्द्वंद के चित्रण एवं मनोविश्लेषण में उतने सफल नहीं है। हालांकि उनकी कहानियां घटनाओं से अधिक चरित्र चित्रण पर ज्यादा जोर देती है, फिर भी उनकी कुछ कहानियों में वस्तु जगत एवं अंतर जगत के यथार्थ का अच्छा संयोग मिलता है। मनोवैज्ञानिक यथार्थ की दृष्टि से बूढ़ी काकी, बड़े भाई, नशा, मिस पद्मा, पिसनहारी का कुआं तथा कुसुम जैसी कहानियों का उल्लेख किया जा सकता है। बड़े भाई साहब तथा बूढ़ी काकी तो शुद्ध मनोविश्लेषण पर आधारित कहानियां हैं जो व्यक्तिगत कुंठा एवं मनोजगत का प्रकाशन करती है। प्रेमचंद के यथार्थ का असली प्रतिनिधित्व करने वाली कहानियां वे हैं जिनमें वे समस्याओं का यथार्थवादी चित्रण करते हैं तथा कोई हल या समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करते। उनकी अंतिम कहानी कफन उपन्यास गोदान की तरह यथार्थवादी धरातल का उच्चतम प्रतिमान है। डॉक्टर मानवर सिंह ने इसे घनघोर यथार्थवादी रचना की संज्ञा दी है। कफन के पात्र घीसु और माधव जैसे कामचोर, आलसी और निखट्टू हैं, जो एक दिन काम कर 3 दिन आराम करते हैं, मजदूरी के बदले चोरी करके पेट भरना समझते हैं। उनकी लापरवाही और आलस्य के चलते बुधिया प्रसव पीड़ा के दौरान ही दम तोड़ देती है। विडम्बना वहां अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाती है जब कफन के लिए उगाहे चंदे से दोनों शराब खाने में जाकर शराब पीते हैं और दावत उड़ाते हैं। यह कहानी यथार्थवादी व्यंग्य है, आर्थिक विषमता से युक्त उस समाज व्यवस्था पर जिसमें मेहनत कोई और करता है और श्रम फल ऊपर वाले लूट ले जाते हैं। घीसु और माधव की अकर्मण्यता, अमानवीयता के लिए कहानी लेखक सामाजिक आर्थिक विषमता को मूल कारण के रूप में देखता है और उस पर निर्मम व्यंग के साथ कहानी का समापन करता है। राजेंद्र यादव के अनुसार इन्हें यथार्थवाद के उस रूप की कहानियां भी कहा जा सकता है जहां आदमी वर्गहीन होने की प्रक्रिया में मानवता रहित होता जाता है। पूस की रात भी इस प्रवृत्ति की कहानी है जिसमें किसान की गरीबी पूरी तरह परिवेश के माध्यम से चित्रित की गई है। यह कहानी एक प्रकार का रेखा चित्र मालूम होती है। जब लेखक पूस की ठंडी रात में दुर्गंध से भरे जबरा कुत्ते को अपनी गोद में चिमटाए खेत की पहरेदारी करते किसान हल्कू का यथार्थ बिंब रचता है, लेकिन कहानी के अंत में जब हल्कू जमींदारी और मालगुजारी की चिंता न करते हुए गन्ने की फसल को जानबूझकर गायों को खाने देता है और सुबह उठकर खेत को जला हुआ देखकर रात

की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा कहकर खुश होता है तो वह किसान की यथार्थ वर्ग छवि से दूर चला जाता है। कहानी का अंत यहाँ भी किसान की नाउम्मीदी को ही दिखाता है जिसने उसकी मानवीय संवेदना को नष्ट कर दिया है। शतरंज के खिलाड़ी भी इस परंपरा की कहानी है जो वाजिद अली शाह के युग के लखनऊ के विलासी निष्क्रिय सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। मीर और मिर्जा इस जीवन के प्रतिनिधि पात्र हैं। डॉक्टर राम विलास शर्मा ने कहानी में निहित व्यंग को गहराई में जाकर पकड़ा है। वे लिखते हैं कि शतरंज के खिलाड़ी में वह कला के लिए खूब मजाक उड़ाते हैं। मिर्जा और मीर उन लोगों में हैं जिनके लिए अपना मनोरंजन ही सब कुछ है। देश भाड़ में जाए उन्हें इससे मतलब नहीं, इसलिए इस कहानी का व्यंग इतना तीखा है कि व्यंग के अतिरिक्त परिवेश का अंकन और उसके अनुकूल उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग यथार्थवादी प्रकृति में जान डालने वाले तत्व हैं। प्रेमचंद की कहानी सवा शेर गेहूं इस अर्थ में उल्लेखनीय है कि उसमें सामंतवाद से छुटकर पूंजीवादी जाल में फंसते ग्रामीण शंकर की कथा है जिसे सवा शेर गेहूं के बदले जीवन भर विप्र महाराज की गुलामी करनी पड़ती है। विप्र महाराज यहाँ पूंजीवाद का प्रतिनिधि चरित्र है जिसे देखकर बालजाक के पात्र पादरी से महाजन बनने वाले रिंगू तथा प्रेमचंद के पंडित दाता दीन का स्मरण हो आता है। प्रेम का उदय में जरायम पेशा कंजरों के भीतर मौजूद मानवता की अभिव्यक्ति, मृतक भोज में परंपरागत कुरीतियों का विरोध, अलगोझा में टूटते संयुक्त परिवारों का सच ठाकुर का कुआं तथा सदगति में दलितों की पीड़ा का चित्रण करने से ये कहानियां यथार्थवाद के दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रेमचंद का यथार्थवाद अपने वास्तविक रूप में उनके उपन्यासों में प्रकट हुआ है, तुलनात्मक रूप से कहानियों में उतना नहीं। प्रेमचंद यथार्थ के नाम पर अपनी दृष्टि को जीवन के अंधकार पक्ष पर ही केंद्रित करने के पक्ष में नहीं थे, अतः उन्होंने प्रारंभिक रचनाओं में यथार्थ को आदर्श से मिलाने की चेष्टा की। बाद में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है और वे जीवन की सच्चाइयों को उनके वास्तविक एवं वस्तुपरक रूप में देखने लगे। उपन्यासों में गोदान तथा कहानियों में कफन उनकी अंतिम रचना है जिनमें वे सबसे ज्यादा अनुभवी, परिपक्व, निर्भीक एवं यथार्थवादी नजर आते हैं। जहाँ कोई भाववादी हृदय परिवर्तन अथवा समस्या का समाधान देने का आग्रह प्रबल नहीं है, वे ही रचनाएं उनकी सफल चर्चित एवं प्रतिनिधि रचनाएं बन सकती। प्रेमचंद का यथार्थवाद उनकी रचनाओं में जिन माध्यम से प्रकट हुआ है उनमें हम भारतीय पराधीनता का यथार्थ, अंग्रेजी साम्राज्य की कटु आलोचना, जमींदारी तथा महाजनी सभ्यता का विरोध, किसान जीवन की समस्याओं का चित्रण, किसान दलित एवं स्त्री का प्रतिरोध तथा प्रतिनिधि परिस्थितियों के बीच प्रतिनिधि चरित्रों का सृजन जैसी विशेषताओं को ले सकते हैं। प्रेमचंद पहले ऐसे रचनाकार हैं जो मनुष्य को परिवेश के साथ नहीं अपित परिवेश में ही चित्रित करने की कोशिश करते हैं। प्रेमचंद जीवन के तटस्थ आलोचक नहीं है, सामाजिक दायित्व से जुड़े होने के कारण वे टालस्टाय की भांत जनता से गहरे जुड़े हुए रचनाकार हैं। उनके कथा साहित्य में युग के साथ चलने की अपूर्व क्षमता है क्योंकि उन्होंने भोगा हुआ सामाजिक यथार्थ लिखा है। गाँव का वर्ग संघर्ष अथवा नगरीय मध्य वर्ग के अंतर विरोध, आर्थिक विषमता को उनके मूल कारणों में देखकर उन्होंने युग की प्राथमिकी निर्धारक तथा महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाया है। यही सब उनके यथार्थवाद को आधारभूत विशेषताएं हैं जो उन्हें जनवादी कलाकार के रूप में स्थापित करती है। अंतर विरोधों का चित्रण करने वाले यथार्थवादी कलाकार खुद भी अंतर विरोधों से ग्रस्त हो सकता है। बालजाक एवं टालस्टाय उनके उदाहरण है। कुछ खूबियों के साथ प्रेमचंद का साहित्य भी कुछ खामियों का शिकार है। वे समस्याओं को जितना यथार्थवादी चित्रण करते हैं उनके समाधान में उतने ही आदर्शवादी भी हो जाते हैं, जबकि एक सच्चे कलाकार को हल या समाधान देने से यथासंभव परहेज करना चाहिए। दूसरी कमी उनमें वहाँ है जहाँ पर वे किसी भी रचना का अंत हृदय परिवर्तन अथवा काल्पनिक अंत से करते हैं।

0: बिना ठोस कारणों के भाववादी हृदय परिवर्तन यथार्थवाद में स्वीकार्य नहीं है। कहीं कहीं पर कथाकार, नरेटर अथवा उपदेशक, सूत्रधार के रूप में प्रेमचंद का अनावश्यक रूप से कथा के बीचों बीच टपक पड़ना रचना के यथार्थवाद को नुकसान पहुंचाता है। पात्रों के अंतर्द्वंद तथा मनोविश्लेषण में तथा समाज विकास की वैज्ञानिक समझ के क्षेत्र में प्रेमचंद उतने महारथी नहीं है जितना उनके जैसे कलाकार को होना चाहिए। साथ ही यह भी सच है कि उपरोक्त खामियां उनके परिवर्ती और प्रतिनिधि लेखन में जैसे कफन, निर्मला, गोदान आदि कहीं नजर नहीं आते। रचनाओं के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रेमचंद उस आलोचनात्मक यथार्थवाद के रचनाकार हैं जो आगे जाकर समाजवादी यथार्थवाद की ओर मुड़ जाता है। शायद इसलिए उनकी तुलना गोर्की से बहुत की जाती है। वस्तुतः हम प्रेमचंद को गोर्की की दिशा में बढ़ता हुआ बालजाक कह सकते हैं। प्रेमचंद का यथार्थवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका रचना का 1918 से 1936 तक का है, जो कविता में छायावादी काल माना जाता है। साहित्य के राजमार्ग से अलग हटकर उसे यथार्थवाद की ओर मोड़ने का साहस प्रेमचंद जैसा जनता कलाकार ही कर सकता है।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रवि भूषण पांडे की वार्ता मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवाद। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं नितिन कुमार श्रीवास्तव। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए मीराबाई की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नितिन कुमार श्रीवास्तव के स्वर में गीत और भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं फिल्म सैयारा के इस टाइटल सॉन्ग के साथ। आवाज है फहीम अब्दुल्ला की, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार तनिष्क बख्शी।

लीजिए आप सुनिए फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये गीत। आवाज है हेमलता की, गीतकार निदा फाजली, संगीतकार उषा खन्ना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म एक नज़र का ये गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। मजरूह सुल्तानपुरी का गीत था, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लीजिए अब सुनिए फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये नगमा। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत गुलजार का, संगीतकार कयाम।

इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सबरस। कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं वारसी ब्रदर्स की आवाज़ में इस सूफी कव्वाली के साथ।

इसी सूफी गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य

0: रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी

0: किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारण संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
2: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
4: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
2: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य

जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा।

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini-India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है।

0: overs. Ishan Kishan scored 49 off 40 balls, while Abhishek Sharma contributed 43 runs off 24 balls. Earlier, Vaibhav Suryavanshi created history by becoming the youngest player to make his international debut for India. Vaibhav made his debut at the age of 15 years and 99 days, surpassing the long-standing record held by Sachin Tendulkar, who made his India debut at the age of 16 years and 205 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 for host England in second T20 in Manchester, where Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई सामान की बरामदात 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है, कई दरिया तोगयानी पर हैं। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैन अल-अक्वामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूने मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निज़ाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कूरा प्लांट में मुतनव्वा अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वज़ीर आज़म ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निज़ाम से मसनूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
2: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी

0: भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते सवा दो सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
1: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मजकूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीयत मिलेगी। दिन भर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मगरबी एशिया की महाजराई से 21वीं सदी का तवानाई का सबसे बड़ा बहरान पैदा हो गया था, लेकिन भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मुहतात बंदोबस्त के जरिए इस चैलेंज पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: जनाब मोदी ने कहा कि बहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया।
0: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को ये कहते हुए उजागर किया कि मुल्क की दिफाई बरामदात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई हैं। नई दिल्ली

में 3 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अपना पहला बैन अलावामी मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजीएसएमई के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा। वैभव सूर्यवंशी बैन अलावामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर सायास ही याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
3: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज वृक्षनीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटा।

0: और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेशवाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार है। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे

0: धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है, सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
4: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद, कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
5: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चा

0: चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं, समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
0: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थी जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट के आया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं, तो ऐसी अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, और उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ शतरंज खिलाड़ी नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बूंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। ये रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग और अब स्थिति ये है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले

जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहां बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशरफी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहानी

0: नहीं दे सके। और फिर वो क्या लिखते हैं कि मैं कहीं से मुझे दो आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से दो आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ। वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन यह है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह

दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है, निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी जैसी काव्य कृति लिखी, और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसर स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है, और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी, और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे, जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50-60-70-80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्मत्त यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ

0: चशार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव।

0: कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं, जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the doyens of Kirana Gharana, has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Shri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Tumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
0: आज रात पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय के साथ संगत करेंगे तबले पर इमोन शौरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्यलय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न

होंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 20 overs. Jacob Bethel was declared player of the match. And that's the end of this news bulletin.
1: मीडियम व्यू 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।